मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के एक ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई सन 2026।

प्रातः के 5:56 और 55 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त तुलिका। आप सभी को हमारा नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजते हैं। अब समाचार दिल्ली से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: And then we can sell to further markets as well.
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिगरेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जाँच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल उसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं ये देशगान।

प्रतिभा बैनर्जी से अभी आप ये भक्ति गीत सुन रहे थे। वंदना में आइए, अब आपको सुनवाते हैं वेणुगोपाल स्वामी का गाया ये भक्ति गीत।

0: हरिओम शरण और साथियों के स्वर में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना। इसके साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन। विश्व जनसंख्या दिवस पर यह विशेष चिंतन हम आपको सुनवा रहे हैं। विचार डॉक्टर जेबी सिंह के हैं।
1: एक बार एक प्रसिद्ध उद्योगपति कई रोगों से ग्रस्त हो गया। उसे खांसी, दमा, उच्च रक्तचाप, कब्ज, अनिद्रा, अवसाद जैसी अनेक बीमारियों ने घेर रखा था। उसने एक एक कर सभी चिकित्सा पद्धतियों द्वारा अच्छे से अच्छा इलाज कराया, किंतु किसी भी व्याधि से छुटकारा नहीं मिला। हार कर वह एक प्राकृतिक चिकित्सक के पास गया और अपनी सारी व्यथा कथा कह सुनाई और उससे रोग मुक्त करने की प्रार्थना की। चिकित्सक ने उससे एक सप्ताह के बाद आने को कहा। उद्योगपति चला गया। इस बीच चिकित्सक ने उद्योगपति के आहार विहार और दिनचर्या का गुप्त रूप से गहन अध्ययन किया। एक सप्ताह के बाद रोगी के पुनः आने पर चिकित्सक ने कहा कि अभी तक तुम्हारी वास्तविक बीमारी की चिकित्सा ही नहीं की गई। जिन बीमारियों की तुमने चिकित्सा कराई है वे वस्तुतः बीमारी नहीं, बीमारी के लक्षण मात्र हैं और लाक्षणिक चिकित्सा से किसी रोग को दूर नहीं किया जा सकता है। तुम्हारी वास्तविक बीमारी तंबाकू का सेवन और अतिशय मदिरा पान है। इनका त्याग के बिना कोई दवा तुम्हें स्वास्थ्य लाभ नहीं करा सकती। जैसे पौधे की जड़ में पानी देने के बजाय केवल पत्तियों को सींचने मात्र से पौधा जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही मूल रोग पर प्रहार किए बिना रोग के लक्षणों को नहीं मिटाया जा सकता। आज विश्व मानव अनेकानेक समस्या एवं अभाव रूपी रोगों से ग्रस्त है। संसार की विभिन्न सरकारें उन समस्याओं के समाधान के लिए उपाय करती हैं, पंचवर्षीय या सप्तवर्षीय योजनाएं बनाकर तथा उनके क्रियान्वयन के लिए अधिकाधिक धन का प्रावधान करती हैं। प्रतिवर्ष बजट का आकार पूर्वापेक्षा बढ़ता जाता है, किंतु रोग बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की कहावत सभी प्रयासों में चरितार्थ होती है। विश्व के अधिसंख्य देशों विशेषकर अफ्रो एशियाई देशों में निर्धनता चरम पर है। परिणाम स्वरूप वहाँ कुपोषण, अशिक्षा, असुरक्षा, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, मिलावटखोरी, महंगाई, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं सुरसा के मुख के समान

0: उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं। नगरों और ग्रामों में शिक्षण संस्थाएं कुकुर मुत्तों के समान दिन दूनी रात चौगुनी खुलती जा रही हैं, फिर भी लगभग आधी आबादी निरक्षर है। अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है, किंतु बड़ी संख्या में रोगी चिकित्सा के लिए भर्ती नहीं हो पाते। आज से 50 वर्ष पूर्व जिन रेल मार्गों पर 2-4 रेलगाड़ियां चलती थीं, उनमें आज दर्जनों गाड़ियां दौड़ रही हैं, तथापि यात्रियों को उनमें बैठने की कौन कहे, खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती। शहरी आवासीय बस्तियों के फैलते जाने से कृषि योग्य भूमि का आकार सिकुड़ता जा रहा है। सड़कों के जाल बिछते जा रहे हैं, मार्ग चौड़े किए जा रहे हैं, फिर भी मार्गों पर घंटों जाम लगते रहते हैं। उचित आवास के अभाव में बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग मलिन बस्तियों में नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए सरकारों के सारे प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा सिद्ध हो रहे हैं। पूर्व वर्णित रोगी का दृष्टांत इस प्रसंग में भी सटीक बैठता है। ये सारी समस्याएं भी मूल समस्या के लक्षण मात्र हैं। मूल समस्या है विश्व में जनसंख्या विस्फोट। द्रुत गति से बढ़ती हुई जनसंख्या और उसी अनुपात में घटते हुए भौतिक संसाधन मानव मात्र के भविष्य के लिए खतरे की घंटी हैं। आज विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक हो गई है। सन 47 में अविभाजित भारत की जनसंख्या जहां केवल 43 करोड़ थी, आज अवशिष्ट भारत की जनसंख्या 125 करोड़ हो गई है। अतः रोग का निदान स्पष्ट है। जनसंख्या नियंत्रण के बिना किसी भी समस्या का समाधान न हुआ है न होगा। इसी तथ्य से जनसामान्य को अवगत कराने और समस्या के प्रति उसे जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या विस्फोट एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, जिसके समाधान के लिए देश, जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर हम सभी को अपना पूर्ण सहयोग देने का संकल्प करना चाहिए।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर जेबी सिंह के विचार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। एक बार सुंदर पर्वत नदी और वनों को देख नारद जी का भगवान के चरणों में असीम प्रेम जागृत हो गया। यहां तक कि दक्ष प्रजापति द्वारा नारद को दिए गए श्राप की गति भी रुक गई और नारद समाधि में लीन हो गए। नारद की समाधि से भयभीत होकर इंद्र ने कामदेव से प्रार्थना की।

कि वो किसी प्रकार नारद की समाधि को भंग करे। कामदेव ने नारद की समाधि को भंग करने के अनेक प्रयास किए पर असफल रहा। अंत में भयातुर कामदेव ने नारद के चरण पकड़कर उनकी स्तुति की। इस घटना के बाद नारद के मन में अभिमान जागृत हुआ कि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। वर्मी कंपोस्ट से भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एसएस चौधरी।
1: किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट जिसे हम केचुआ खाद भी कहते हैं, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि रासायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग से आज भूमि की भौतिक और रासायनिक दशा बिगड़ रही है, तो लगातार और अच्छे उत्पादन के लिए मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसके लिए रासायनिक खादों के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में हर साल हमें जैविक खादों का प्रयोग भी करते रहना चाहिए। जैविक खादों में मुख्य रूप से जो वर्मी कंपोस्ट है, जिसे हम केचुआ की खाद कहते हैं, इसका बहुत महत्व है। एक तो इस खाद में किसी तरह की कोई बदबू नहीं होती, मक्खी मच्छर भी इससे नहीं बढ़ते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ साथ इसमें 2-3% नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस भी 1-2% होता है और पोटास की मात्रा 1-2% तक इसमें रहती है। इस खाद को तैयार करने में मात्र 1.5 महीने का समय लगता है और प्रत्येक माह 1 टन खाद के लिए 100 वर्ग फुट आकार की नर्सरी बेड पर्याप्त होती है। केचुआ खाद की केवल 2 टन मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होती है। अब सवाल उठता है कि केचुआ खाद कैसे तैयार करें। अब इसको तैयार करने की विधि की हम चर्चा करते हैं। जिस कचरे से खाद तैयार की जानी है, उसमें से कांच पत्थर धातु के टुकड़े हम अलग कर लें। भूमि के ऊपर नर्सरी बेड तैयार करें। बेड को लकड़ी से हल्की सी पीट कर पक्का और समतल बना लें। इस तह पर 6-7 यानी 2-3 इंच मोटी बालू रेत या बजरी की तय बिछा दें। बालू रेत की इस तह पर 6 इंच मोटी दोमट मिट्टी की तय भी बिछाए। यदि दोमट मिट्टी ना हो तो फिर काली मिट्टी में रॉक पाउडर पत्थर की खदान का बारीक चूरा मिलाकर भी बिछा सकते। इस पर नारियल की बूछ, गन्ने

की पत्ती, ज्वार के डंठल डंठल इत्यादि की 2 इंच मोटी सतह बनाई जाए। इसके ऊपर 2-3 इंच पकी हुई गोबर खाद डाली जाए। 100 वर्ग फुट नर्सरी बेड के लिए 4 से 5 हजार केंचुओं की आवश्यकता होती है। केंचुओं को पकी हुई गोबर की खाद की सतह पर आप फैला दें। केंचुओं को डालने के बाद इसके ऊपर गोबर पत्ती इनकी 6 से 8 इंच की सतह बनाई जाए। अब इसे मोटी टाट पट्टी से हम ढक दें। झारे से टाट पट्टी पर आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन पानी छिड़कते रहें ताकि 45 से 50% इसमें नमी, जैसी कि इसकी आवश्यकता है, इसमें बनी रहे। अधिक नमी या गीलापन रहने से हवा रुक जाएगी और सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए ठीक से काम नहीं कर पाएंगे और केंचुए मर भी सकते हैं। तो ध्यान रखें कि नमी 50% से ज्यादा ना हो। नर्सरी बेड का तापमान भी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नर्सरी बेड में गोबर की खाद कड़क हो गई हो या ढेले बन गए हो तो इसे हाथ से तोड़ते भी रहना चाहिए। सप्ताह में एक बार नर्सरी बेड का कचरा ऊपर नीचे करें। 30 दिन बाद छोटे छोटे केंचुए दिखना शुरू हो जाएंगे। 31वें दिन इस बेड पर कूड़े कचरे की 2 इंच मोटी तह बिछाएं और उसे नम करें। इसके बाद हर सप्ताह 2 बार कूड़े कचरे की तह पर तह बिछाएं, पानी छिड़क कर नम करते रहें। 3-4 तह बिछाने के 2-3 दिन बाद उसे हल्के से ऊपर नीचे कर और नमी बनाए रखें। 42वें दिन बाद पानी छिड़कना बंद कर दें। इस पद्धति से 1.5 महीने में खाद तैयार हो जाता है। जब खाद तैयार हो जाएगा तो ये चाय के पाउडर जैसा दिखता है और इसमें मिट्टी के समान सौंधी गंध आती है। खाद निकालें और खाद के छोटे छोटे ढेर बना दें जिससे केंचुए खाद की निचली सतह में रह जाए। खाद हाथ से अलग करें। गैती, कुदाली, खुरपी आदि का प्रयोग बिल्कुल न करें क्योंकि केंचुए पर्याप्त बढ़ गए होंगे। आधे केंचुए से पुनः वही प्रक्रिया दोहराएं और बचे हुए जो केंचुए हैं उनसे पुनः नर्सरी बेड बनाकर खाद बनाएं। तो इस तरह से जो वर्मी कंपोस्ट है इसका खेती में यदि प्रयोग करें तो रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होगी और उत्पादन अच्छा मिलेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा में जानकारी वर्मी कंपोस्ट से भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाएं, जानकारी दे रहे थे एसएस चौधरी। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
1: ए भाई,
0: सड़क पर चलते समय अपने वाहन की गति नियंत्रित रखें, किसी भी प्रकार का स्टंट करने की कतई कोशिश न करें। हो सकता है आप कुशल चालक हों, लेकिन दुर्घटना सिर्फ हमारी गलती से नहीं होती, दूसरों की लापरवाही भी हादसों का कारण होती है। दाहिने या बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
1: ए भाई, दर्द

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल न करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियाँ कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को

प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: अभी आप सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम दर्पण, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से हम अनुभव प्रसारित करेंगे। संस्कृत समाचारों के ठीक बाद होंगे हिंदी में समाचार।
5: शिवानी संप्रति वार्ता श्रूयंता, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य ऑकलैंड नगरे न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां कुर्वन्नस्ति। उभौ नेतारौ व्यापार वाणिज्य रक्षा क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सम्बन्धानां सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां करिष्यतः। प्रधानमंत्री मोदी प्रमुखैः उद्योगपतिभिः, क्रीडाक्षेत्रस्य विशिष्टव्यक्तिभिश्च सह अपि संवादं करिष्यति। उभयदेशयोः मध्ये सुदृढजनसम्बन्धानां प्रतीकरूपेण असौ अद्य न्यूजीलैण्डदेशे विशालं प्रवासीभारतीयसम्मेलनमपि सम्बोधयिष्यति। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया देशयोः सफल यात्रानन्तरं स्वीय त्रिराष्ट्र यात्रायाः तृतीयम् अन्तिमं च चरणम् उपेत्य ह्यः ऑकलैंड नगरं सम्प्राप्तवान्। न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन विमानस्थानके प्रधानमंत्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्वागतं कृतवान्। भारतीय समुदायस्य बहवः सदस्याः अपि तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतवन्तः। प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड देशे स्थितान् प्रवासी भारतीयान् भारतस्य समृद्ध सांस्कृतिक रिक्थस्य निरन्तरं संरक्षणाय प्रशंसितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे असौ स्वागत समारोहे प्रस्तुतानां सांस्कृतिक कार्यक्रमाणामपि प्रशंसाम् अकरोत्। भारतीय नौसेना अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनम नगरे स्वीय षष्ठम प्रोजेक्ट 17A इत्यस्य अन्तर्गतं स्वदेशे निर्मितं युद्धपोतम INS महेन्द्रगिरिः F-38 इति पूर्वी नौसेना दले समावेशयिष्यति। अस्य समारोहस्य अध्यक्षतां रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः करिष्यति। अयं समारोहः भारतस्य रक्षाक्षेत्रे आत्मनिर्भरतायाः तथा स्वदेशी युद्धपोत निर्माणस्य दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। समावेशन समारोहस्य पूर्व संध्यायां विशाखापत्तनम नगरे आयोजिते बड़ाखाना इत्येतस्मिन् भोजक कार्यक्रमे नौ सैनिकान् संबोधयन् रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः हिंद महासागर क्षेत्रे शान्तेः स्थिरतायाः च प्रमुख संरक्षक रूप

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए।

स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 28वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। 7:20 पर सुनिए डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा से उनकी वार्ता आधुनिक युग और संस्कृत। 7:30 फिल्म संगीत सुना जा सकता है।

समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। 8:30 आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में पॉडकास्ट फोरेंसिक विज्ञान साक्ष्य से सच्चाई तक। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला एवं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ग्वालियर डॉक्टर विनोद ढींगरा से इस विषय पर बात करेंगी डॉक्टर विभूति सिंह। 9:00 सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

में गीतिका उमड़ेकर से आप सुनेंगे ख्याल गायन। 10 बजे जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगी और 10:05 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। क्यों होती है दांतों की समस्याएं, इस विषय पर डॉक्टर हरिराम पुरोहित से आभा गुप्ता की बातचीत सुनवाई जाएगी आपको। 10:50 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा और 11 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी 5 से। कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित होंगे, जिसके अंतर्गत 5 युववाणी कार्यक्रम होगा और 6 भजन संध्या। 7:20 पर हमारे केंद्र से चौपाल कार्यक्रम सुना जा सकता है। इसमें आज विश्व जनसंख्या दिवस पर बात होगी। इसके अलावा किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना विषय पर भी चर्चा होगी। ग्रामीण बच्चे चौपाल कार्यक्रम में ही सुनते हैं प्रत्येक शनिवार अपना कार्यक्रम फूल बगिया। बच्चों से चर्चा का विषय होगा एक पेड़ अवश्य लगाएं। इसके अलावा ज्योति शर्मा की वार्ता होगी आओ जाने अपनी मुद्रा। रात 8 से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता, 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में करेंगे माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देर रात उज्जैन में सिंहस्थ निर्माण कार्यों का लिया जायजा। और भाजपा ने दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को बनाया प्रत्याशी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े हैं। श्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद ये यात्रा दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और आपने एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। न्यूजीलैंड के लोगों के बीच आकर उनका भारत के प्रति जो स्नेह है, ये देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और मेरे मन को वो छूने वाला है और इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूँ।
0: उन्होंने बताया कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5,000 युवा हिस्सा लेंगे। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी। युवाओं द्वारा तैयार सुझावों से माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 दस्तावेज बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री इस अवसर पर 4 नई राज्य स्तरीय युवा पुरस्कार श्रेणियों की भी घोषणा करेंगे। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये प्रशिक्षण गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है। महानिदेशक जेल डॉ. वरुण कपूर ने कहा कि बंदियों का स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण में प्रदेश भर के जेलों से 30 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। प्रशिक्षित स्टाफ बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य की पहचान और परामर्श कर सकेंगे। विभाग आगे जेलों में साइको सोशल काउंसिलिंग सेंटर भी स्थापित करेगा। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत तीसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें 7,630 बच्चों को पसंदीदा निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश मिला। इस वर्ष अब तक 1,25,000 से अधिक बच्चों को प्रवेश आवंटन मिल चुका है। अभिभावक आरटीई पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चे 20 जुलाई तक आवंटित स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल सागर जिले के कई गांवों में करीब 80 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मंत्री राजपूत ने कहा कि जैसीनगर अब एक प्रमुख जंक्शन बन चुका है। 65 करोड़ रुपए की लागत से नया मार्ग जैसीनगर को तीनों दिशाओं से जोड़ चुका है। वहीं मसूराहाई रोड बनने से भोपाल जाने की दूरी 25 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश की प्रगति साझा की। ये बैठक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की तीसरी मिशन संचालन समूह बैठक थी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 5.86 करोड़ आभाईडी बनाई जा चुकी है। लगभग 20,000 स्वास्थ्य संस्थान और 18,000 स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं। बैठक में एबीडीएम की प्रगति और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधान सभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल देर रात दोपहिया वाहन से और पैदल चलकर उज्जैन शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सिंहस्थ महापर्व के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने फ्रीगंज ब्रिज और कोयला फाटक से कंठाल चौराहे तक चल रहे मार्ग चौड़ीकरण का भी अवलोकन किया। इससे पहले कल उन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में नागदा में उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन मार्ग का भूमि पूजन किया। लगभग 99 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5,017 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में फूड इंडस्ट्री पार्क बनने से किसानों को लाभ मिलेगा।
2: 1,250 करोड़ की लागत से उज्जैन में पेप्सी को कंपनी का फूड इंडस्ट्री पार्क का हमने भूमि पूजन किया। जब ये बन के तैयार होगा तो 32 जिलों में आने वाले समय में आलू के लिए भी अपनी खेती में आलू लगाना, उज्जैन में आपको वो भाव मिलेगा जो बंबई और आगे के बड़े नगरों में मिलता। जोरदार अभिनंदन करें, ये आय बढ़ाने के काम हमारी सरकार कर रही
0: है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भाजपा ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। टिकट की घोषणा होने के बाद डॉ. नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने ग्वालियर झांसी हाईवे पर लंबा जाम लगाया। नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को नामांकन फॉर्म भी खरीदा था, लेकिन पार्टी ने अंतिम समय में उनका टिकट काट दिया। प्रदेश सरकार ने सत्र 2026 से सभी शासकीय आईटीआई में महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क में 25% की छूट देने का फैसला किया है। इससे महिलाओं को प्रथम वर्ष के शुल्क में 1335 रुपए की बचत होगी। अब प्रथम वर्ष का कुल शुल्क 4755 रुपए होगा। राज्य मंत्री गौतम टिटवाल ने कहा कि निर्णय बेटियों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार

पर कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। मौजूदा सिस्टम कमजोर हो रहा है, जिससे 13 जुलाई तक प्रदेश में रिमझिम बारिश होगी। वहीं 14 जुलाई को कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में पहला महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहले दिन भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 83 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने भी अर्धशतक जड़े। इंग्लैंड की ओर से सोफी एलिक्सटोन ने 3 विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड ने पहले दिन के खेल तक 1 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। प्रदेश के धावक विनोद सिंह ने चीन के ओरदोस में हुई एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। खेल मंत्री ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश और देश के लिए गर्व का विषय है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ कलेक्टर ने 13 जुलाई को आयोजित होने वाली जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैतूल कलेक्टर ने कल उप तहसील बोरदेही में आयोजित खंड स्तरीय समीक्षा बैठक में ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की, साथ ही एक पेड़ मां के नाम के तहत आम का पौधा भी रोपित किया। डिंडौरी जिले के 50 मत्स्य पालकों ने राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के अवसर पर कल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता की। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत मंडला जिले के 196 वरिष्ठ नागरिक आज से 16 जुलाई तक कामाख्या शक्तिपीठ तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। पन्ना जिले में बरसात के मौसम में विभिन्न स्थानों पर झरना और जलप्रपात पर अत्यधिक समीप जाने, सेल्फी और फोटो लेने पर प्रतिबंध लगाया है। झाबुआ जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कल कलेक्टर कार्यालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। आगर मालवा कलेक्टर ने कृषि सहकारिता, पशुपालन, उद्यानिकी, जल संसाधन आदि विभागों की समीक्षा बैठक में किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया। खंडवा जिले में आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर आज से 18 जुलाई तक परिवार नियोजन और मातृ शिशु स्वास्थ्य को लेकर विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं वार्ता, आधुनिक युग और संस्कृत। वार्ताकार हैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा।
1: संस्कृत की गणना विश्व की प्राचीन भाषाओं में की जाती है, परंतु प्राचीन संस्कृत भाषा एवं इसके साहित्य में इस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं कि यह आधुनिक वैज्ञानिक युग के अनुरूप बन जाती है। भाषा वैज्ञानिक परीक्षणों एवं व्यावहारिक उपयोग के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित हो चुका है। यही कारण है कि वर्तमान समय में और विश्व स्तर पर संस्कृत के प्रति लोगों की जागरूकता एवं रुचि बढ़ी है। संस्कृत वर्तमान समय में किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष या समाज विशेष की भाषा नहीं रही है, अपितु यह संपूर्ण संसार में समान रूप से शोध एवं गवेषणा का विषय बन गई है। विश्व स्तर पर हो रहे नवीन शोध कार्यों से जो तथ्य प्रकाशित हो रहे हैं, उनमें से अनेक रहस्य संस्कृत ग्रंथों में विवेचित हैं। उदाहरणार्थ, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, शरीर रचना विज्ञान आदि क्षेत्रों में वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में व्यापक स्तर पर शोध कार्य हुए हैं और हो रहे हैं, जिनके निष्कर्षों का ज्ञान संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों को विदित था। वास्तव में वर्तमान युग या आधुनिक युग शोध एवं आविष्कार का युग कहा जाता है। यही विशेषता देखकर लोग आधुनिक समय को वैज्ञानिक युग भी कहते हैं, जिसमें प्रत्येक ज्ञान प्रयोग द्वारा सिद्ध होकर मान्य होता है। वस्तुतः प्रत्येक ज्ञान प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरने पर विज्ञान बन जाता है। इस प्रकार वह ज्ञान विशिष्ट ज्ञान या विज्ञान की श्रेणी में पहुंच जाता है। इस दृष्टि से संस्कृत का परिशीलन करने पर स्पष्ट होता है कि संस्कृत का संबंध दो तथ्यों से है, प्रथम ज्ञान और द्वितीय आचार। ज्ञान के संपूर्ण रूपों का प्रकाशन संस्कृत के ग्रंथों में प्राप्त होता है, जो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं आदि से संबद्ध है। इन सभी का परिशीलन

संस्कृत में किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियांत्रिकी, वास्तु एवं इसी प्रकार के अन्य वैज्ञानिक विषयों का संबंध भी संस्कृत से सदैव रहा है। इस संदर्भ में आधुनिक युग का एक चमत्कारी एवं परमोपयोगी आविष्कार कंप्यूटर यंत्र है। कंप्यूटर यंत्र के बिना आधुनिक विश्व की परिकल्पना भी संभव नहीं है। यह कंप्यूटर यंत्र जिन सिद्धांतों पर कार्य करता है उसका मूल हमें महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक रचना में प्राप्त होता है। यह अष्टाध्यायी ग्रंथ संस्कृत व्याकरण का मूल ग्रंथ है, जिसमें वही प्रविधि अपनाई गई है जो कंप्यूटर की कार्य प्रविधि है। उदाहरणार्थ, एक मूल विषय का क्षेत्र होता है जो व्यापक होता है, उसके अंतर्गत क्रमशः प्रवेश करके सूक्ष्म से सूक्ष्म तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। पाणिनीय अष्टाध्यायी की इस विश्लेषण पद्धति को कंप्यूटर में परिष्कृत रूप में ले लिया गया है। यही कारण है कि संस्कृत भाषा, इसकी ध्वनियाँ और लिपि, ये सभी कंप्यूटर के लिए सर्वथा स्वीकार्य हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली नामक संस्था कंप्यूटर एवं संस्कृत पर अनेक प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजनाओं का संचालन कर रही है, जिससे संस्कृत एवं कंप्यूटर के अन्योन्याश्रय संबंध पर पर्याप्त प्रकाश पड़ रहा है। इस दिशा में बेंगलोर में भी पर्याप्त काम चल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप संस्कृत में रोजगार के नए नए अवसरों की प्राप्ति हो रही है। संस्कृत का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष इसका आचार पक्ष है, जिसकी आधुनिक युग में महती उपयोगिता है। विज्ञान का मानव जाति के हित में उपयोग करने के लिए संस्कृत का आचार पक्ष बहुत उपयोगी है। संस्कृत के इसी आचार पक्ष ने महान सम्राट अशोक को युद्ध की विभीषिका तथा हिंसा से विरत किया था। संस्कृत के इसी आचार पक्ष ने सत्य, अहिंसा, दया, करुणा एवं परोपकार का भाव लोगों को सिखाया है, जिसके परिणामस्वरूप अंगुलिमाल जैसा आतताई या आतंकवादी भी एक सौम्य मनुष्य बन गया। संस्कृत की यही वह विशेषता है जिसके बल पर भारत विश्व में सम्मान भाजन है। संस्कृत के पंचशील के आधार पर भारत चीन मैत्री का विकास हुआ है। संस्कृत मनुष्य को त्याग एवं भोग में समन्वय स्थापित कर जीवन यापन करना सिखाती है। जैसा कि ईशावास्योपनिषद का मंत्र कहता है, ईशावास्यमिदं शर्वं यत् किंच जगत्त्यांग जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यचित् धनम्। अर्थात मनुष्य को पूर्णतया उपभोगवादी नहीं होना चाहिए, अपितु त्याग से अनुप्राणित उपभोग को अपनाना चाहिए। ऐसा जीवन होने पर विश्व में न तो भुखमरी की समस्या आएगी और न ही कोई व्यक्ति परिस्थितियों का दास होकर आतंकवाद जैसे कदाचरण को अपनाएगा। आज का विश्व उपभोगवाद को अपनाने के कारण न केवल आर्थिक संकट में फंस गया है, अपितु अन्य अनेक विषमताओं का शिकार हो गया है। आधुनिक युग में विकास करते हुए विनाश से बचने के लिए संस्कृत में निहित आचार का पालन करना श्रेयस्कर है। मानव जीवन को संयमित बनाकर विकास की दिशा में उन्मुख करने वाला संस्कृत का आचार पक्ष आधुनिक युग में मानव जाति को विनाश से बचाने में अत्यंत उपयोगी है। निश्चित रूप से विज्ञान की विविध शाखाओं का ज्ञानालोक देने वाली संस्कृत भाषा अपने आचार पक्ष से अनुशासन भी स्थापित करती है, अन्यथा अनुशासन के अभाव में विज्ञान के प्रयोग मानव जाति के लिए बड़े घातक हो सकते हैं। संस्कृत में पर्यावरणीय तत्वों जैसे जल, वायु, अग्नि, नदी, सरोवर, वन, वृक्ष एवं औषधियों का दैवीय स्वरूप में वर्णन किया गया है, जिससे इन प्राकृतिक तत्वों के प्रति जनमानस में जागरूकता उत्पन्न होती है और पर्यावरण का संरक्षण सहज ही हो जाता है। पर्यावरण के प्रति यह जागरूकता संस्कृत में वेदों से लेकर संपूर्ण साहित्य में विद्यमान दिखाई देती है। वेदों में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम एवं नदी आदि सूक्तों में पर्यावरणीय तत्वों के संरक्षण की गहरी संवेदना एवं जागरूकता दृष्टिगोचर होती है। यदि संस्कृत साहित्य में निर्दिष्ट पर्यावरण संरक्षण भावना को जीवन में मानव समाज उतार ले तो पर्यावरण प्रदूषण की विकराल समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। संस्कृत के वैदिक एवं लौकिक दोनों साहित्यों में पर्यावरण विज्ञान के विषयों का सुंदर विवरण और विवेचन प्राप्त होता है। महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रारंभ पर्यावरण चेतना से परिपूर्ण पद्य से करते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं जाहविर्याच होत्री येद्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। यहाँ महाकवि कालिदास ने जल, अग्नि, सूर्य, चंद्र, आकाश, वायु एवं पृथ्वी जैसे पर्यावरणीय तत्वों के

विज्ञान को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। यही नहीं, संस्कृत के ग्रंथों में राजधर्म, सामाजिक समरसता, आदर्श, परिवार की अवधारणा आदि रचनात्मक विचारों का सुंदर चित्रण किया गया है। राजधर्म का चित्रण करता हुआ संस्कृत का नाटककार राजा के आदर्श रूप को इस प्रकार प्रस्तुत करता है। स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्तिमेव व्यथा। अर्थात राजा या शासक को प्रजा के हित के लिए अपने निजी स्वार्थों का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार वर्तमान समय में बिखरते दाम्पत्य जीवन को सुदृढ़ बनाने में भवभूति का यह वचन प्रेरक हो सकता है। अद्वैतं सुख दुःखयोरनुगतं सर्वास्वस्थासुजत् विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्योरसः कालेनावरणात्ययात् परिणते यत् स्नेहसारे स्थितं भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येको हि तत् प्राप्यते। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानवीय जीवन मूल्यों के संरक्षण, सामाजिक समरसता, पारिवारिक संबंधों की पवित्रता एवं सुदृढ़ता, देशभक्ति एवं मातृभूमि प्रेम, पर्यावरण शुद्धता, भौतिकवादिता एवं अध्यात्म में समन्वय, त्याग एवं भोगवाद में संतुलन और राजधर्म के संरक्षण एवं संवर्धन में संस्कृत साहित्य की महती उपयोगिता है, जिसके परिणामस्वरूप यह साहित्य सदैव प्रासंगिक बना रहता है और अपनी सार्वभौमिकता, सार्वकालिकता तथा सार्वजनीनता सिद्ध करता है। यहाँ तक कि कंप्यूटर जैसे यंत्र के लिए भी यह भाषा अत्यंत उपयुक्त है, जो आधुनिक विश्व के लिए एक वरदान है। आधुनिक युग में संस्कृत की उपयोगिता के मूल में यही तथ्य सर्वमान्य है।

आधुनिक युग और संस्कृत। अभी आप डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा से उनकी ये वार्ता सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

आशा भोसले और किशोर कुमार को अभी आप फिल्म जोशीला में सुन रहे थे। गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। इंदिवर की लिखी गीत रचना राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में आइए सुनते हैं फिल्म कामचोर के लिए। इसे गाया है किशोर कुमार और अलका याग्निक ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म है आप आए बहार आई, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
2: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म बड़े दिलवाला का ये गीत। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार राहुल देव बर्मन, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8 बजते हैं, समाचार अब दिल्ली से होंगे।
1: तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
5: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।

0: यह हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
2: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
3: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इकोनॉमिक जोन है, हमारे आइलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जिस स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2,000 रहेंगे, 5,000 रहेंगे, 10,000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
4: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वीं मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज्य की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर एक विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में पॉडकास्ट फॉरेंसिक विज्ञान साक्ष्य से सच्चाई तक। इस विषय पर फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला एवं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ग्वालियर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर विनोद ढींगरा से बात कर रही हैं डॉक्टर विभूति सिंह।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का ये विशेष कार्यक्रम जहां पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं ग्वालियर के प्रसिद्ध सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर विनोद ढींगरा जी। अपराध की दुनिया में जहां एक छोटा सा सुराग भी बहुत बड़ी सच्चाई तक पहुंचा सकता है, वहीं फॉरेंसिक साइंस उस सुराग को भी एक मीनिंग देती है। डॉक्टर ढींगरा का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद, मैं सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ।
1: आकाशवाणी के साथ आपका जो एक रिश्ता कब बना, कैसा बना और किस तरह निर्वाह हुआ, उसके विषय में बताएं।
2: आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। आकाशवाणी तो जीवन गंगा है एक प्रकार की, और मैं बचपन से, जब से मेरी परवरिश हुई है, आकाशवाणी हमारे रग रग में बसा हुआ है। हम इनके कार्यक्रमों को दैनिक दैनंदिनी रूप से सुनते रहते थे और कई बार इसमें ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, मनोरंजक और अच्छे अच्छे जो प्रोग्राम हैं, चाहे वो बागवानी से हों, खेती से हों, ये हम लोग सुनते रहते थे। और जैसा आपको विदित होगा कि पूर्व में इतने ज़्यादा मनोरंजन के साधन भी नहीं थे, तो हमारी जीवन गंगा आकाशवाणी ही थी।
1: डॉक्टर ढींगरा, अब जो श्रोता आपको सुन रहे हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे अपने गेस्ट के बारे में, तो थोड़ा अपना परिचय दीजिए, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और करियर की जो जर्नी रही है उसके बारे में।
2: मैं आपको अपने बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं डॉक्टर विनोद ढींगरा, और मेरे द्वारा जो है रसायन शास्त्र के अंदर जीवाजी विश्वविद्यालय से MSc और PhD किया गया था। 1993 में मुझे PhD डिग्री अवार्ड हुई थी, और प्रारंभ में जो मेरा शोध का कार्य था वो दवाइयों पे था, लेकिन उसके साथ साथ मैं शिक्षण कार्य में भी संलग्न था। जब इस प्रकार का, उस समय फॉरेंसिक साइंस का ज़्यादा लोगों में प्रचलन नहीं था, तो मैं 1998 में लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा के माध्यम से इसमें वैज्ञानिक अधिकारी के पद पे भर्ती हुआ था। और वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर मैंने यहाँ कार्य करते हुए विगत 28 साल में बहुत कुछ सीखा और काफ़ी प्रकार के अपराधों को घटित होते हुए देखा अपने जीवन में, उनको किस प्रकार हल किया जाता है, किस प्रकार से भौतिक साक्ष्यों का संकलन से लेके उनका प्रोसेसिंग किस प्रकार किया गया। तो एक बहुत ही एक लंबी जर्नी रही, और मैं

0: इस मामले में काफ़ी खुश नसीब हूँ कि मैं अपने विषय का अपने इस कार्य में उपयोग कर पा रहा हूँ।
1: डॉक्टर, आप हमें बताइए, फॉरेंसिक साइंस एक ऐसा विषय है जिसे हम या जो लेमैन है वो टीवी और फिल्मों की नज़र से ही देख पाते हैं, और हकीकत में बहुत अलग होता होगा। भ्रम का निवारण करें आप हमारे कार्यक्रम में।
0: जी हाँ, आपका ये प्रश्न बड़ा सार्थक है, क्योंकि आपने देखा होगा विगत कई वर्षों से कई प्रोग्राम इस प्रकार दिखाए जाते थे, चाहे वो दूरदर्शन हो या कई प्राइवेट चैनल थे, लोगों को बड़ी रोचकता के साथ और मनोरंजक तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाता था, परंतु उसमें जो विषय वस्तु दिखाई जाती थी वो विषय वस्तु फॉरेंसिक साइंस से जुड़ी हुई तो थी, पर कई बार वो ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करते थे मनोरंजन की दृष्टि से जो कि वास्तव में संभव नहीं हो पाती हैं। परंतु उन्होंने एक अच्छा काम किया कि लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा की, अपराध के अंदर जो अनुसंधान होता है उसके बारे में उनको काफ़ी ज्ञान में बढ़ोतरी की गई।
1: फैंटेसाइज करके चीज़ों को
0: जी हाँ
1: प्रस्तुत किया
0: जी
1: जाता
0: हाँ
1: है।
0: जी हाँ,
1: हकीकत में ऐसा नहीं।
0: हकीकत में देखिए क्या होता है कि वो एक अलग प्रक्रिया होती है, उनमें एक प्रक्रिया का पालन होता है, क्योंकि अपराध अनुसंधान एक बड़ा ही संजीदा और संवेदनशील विषय वस्तु है, जहाँ पर लोगों के न्याय से संबंधित प्रक्रिया जुड़ी रहती है, तो इसको एक बड़ा सावधानीपूर्वक किया जाता है।
1: उसी सावधानी पर थोड़ी बात करते हैं कि किसी भी क्राइम सीन पर आप लोग जब जाते हैं तो ऐसी कौन सी छोटी छोटी सी डिटेल्स होती हैं जो आपको नज़र आती हैं और आम लोग जिन्हें बिल्कुल मामूली समझ लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअली उस इन्वेस्टिगेशन की दिशा को बदल सकती है।
0: देखिए, आपने बड़ा एक प्रासंगिक प्रश्न पूछा है। आपने नोटिस किया होगा कि जो जिस व्यवसाय में या प्रोफेशन में होता है उसकी नज़र अपने व्यवसाय की वस्तुओं पे पहले जाती है।
1: जी,
0: जैसे कोई दांत बनाने का कार्य करता है तो उसकी पहली नज़र दांत पे जाएगी, कोई आँख का डॉक्टर होगा तो आँख पे जाती है।
1: बिल्कुल।
0: इसी प्रकार से जो विधि विज्ञान है, फॉरेंसिक साइंस के जो विशेषज्ञ लोग होते हैं उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो किसी भी घटनास्थल पे जब जाएंगे तो उस विषय वस्तु को उस दृष्टिकोण से देखना पड़ता है, और उनके पास कई बार अनेकों वर्षों का अनुभव भी होता है, तो जो चीज़ एक सामान्य व्यक्ति नोट नहीं कर सकता वो आसानी से उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि जो फॉरेंसिक साइंस है या विधि विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, ये एक प्रकार का ऐसा विज्ञान है जिसमें समस्त विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनका समाहन किया जाता है, और ये समाहन इस प्रकार करते हैं कि हम लोग इसके द्वारा जो भी आहत या पीड़ित व्यक्ति है, इवन कोई निर्दोष व्यक्ति भी है, तो उसको समुचित न्याय मिलना चाहिए, इस प्रकार की प्रक्रिया वहाँ की जाती है। और इसमें मुख्यतः जो आपने पूछा है कि ऐसी क्या वस्तुएं हैं, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वहाँ भौतिक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। अधिकतर जो घटनास्थल होते हैं उनमें भौतिक साक्ष्यों की उपलब्धता होती है, ये भौतिक साक्ष्य कई प्रकार से वहाँ पर मौजूद रहते हैं। कुछ भौतिक साक्ष्य हमें आँखों से दिखाई देते हैं, कुछ सामान्य आँखों से न दिखते हुए विशेषज्ञता के आधार पर उनका आकलन किया जाता है, फिर उनको एक जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तरह उसका पालन करते हुए घटनास्थल से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उनको वहाँ से उठाया जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है, उसका पैकिंग किया जाता है और आगे की कार्रवाई के लिए भेजना पड़ता है, जिसमें उसका एक रिपोर्ट तैयार होता है। ये जो भौतिक साक्ष्य हैं, ये भौतिक साक्ष्य को एक विशेष प्रकार के आँख की ज़रूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं फॉरेंसिक आई, और वो धीरे धीरे आदमी जब विशेषज्ञ कार्य करता है तो उसके अनुभव में बढ़ोतरी होती चली जाती है।
1: लेकिन आज का जो दौर है, डिजिटल दौर जिसको कह सकते हैं, तो इस समय पर डिजिटल एविडेंस और ट्रेडिशनल फिजिकल जो एविडेंस जिसकी आप बात कर रहे थे, क्या ज़्यादा चैलेंजिंग है

0: देखिए, पहले जब हम लोग कार्य करते थे तब सामान्य घटना स्थलों पर जो भौतिक साक्ष्य हुआ करते थे उन भौतिक साक्ष्यों का मिलना बड़ा आसान होता था। लेकिन आधुनिक दौर के अंदर आपने देखा होगा कई प्रकार के कार्यक्रम जो के मीडिया में चलते हैं या दूरदर्शन पे या आपके प्राइवेट चैनल्स या OTT पर, ये जब वो दिखाते हैं अपराध से संबंधित कई कार्यक्रम, तो इसके दो पहलू होते हैं। एक तो लोगों को सतर्क करना कि इस प्रकार के अपराध से आप बचें, लेकिन इसमें जो अपराधी होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं एजुकेशन चल रहा होता है। तो जब वो उन वस्तुओं को देखते हैं तो वो ये प्रयास करते हैं कि घटनास्थल पे ये भौतिक साक्ष्य न मिले। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा जो भौतिक साक्ष्य संकलन का जो प्रक्रिया है उसको हम बदलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भौतिक साक्ष्य है, ये भौतिक साक्ष्य कई रूपों में रहता है। कुछ कम समय के लिए रहता है, कुछ ज़्यादा समय के लिए रहते हैं, पर भौतिक साक्ष्य हर एक घटनास्थल पर मिलने की संभावना होती है। इसमें आपने जो पूछा, एक भौतिक साक्ष्य वो होता है जो हमें घटनास्थल पे एक वस्तु या एक छाप या किसी द्रव्य के रूप में दिखाई देता है, इसको तो हम संकलित करते हैं। चूँकि अपराधी इतना शातिर होता है तो वो सोचता है कि मैं अपने किसी भी इस वस्तु को वहाँ न छोड़ूं। ऐसी अवस्था में हमारे पास फिर दूसरे रास्ते निकल के आते हैं। उन रास्तों में हम लोग डिजिटल एविडेंस जिसको हम बोलते हैं, उनका भी हम लोगों को हमारे अनुसंधान में उनको समाहित करना पड़ता है, और उसके आधार पर हम लोग जो है किसी भी विषय वस्तु की सत्यता का हम लोग परिकल्पना में जाके उसको हम लोग ये देखते हैं कि ये वस्तु किस प्रकार से या ये घटना किस प्रकार से पारित की गई होगी।
1: फॉरेंसिक साइंस के ज़रिए अपराध जांच जब की जाती है तो साइंस और इंट्यूशन, या जैसे फॉरेंसिक आय या कॉमन सेंस भी कह सकते हैं, इनका बैलेंस कितना ज़रूरी है? क्या पॉसिबल है सिर्फ टेक्नोलॉजी से सच्चाई तक पहुँच जाएँ?
0: मेरा इसमें आपको ये कहना है कि फॉरेंसिक साइंस जो है वो अपने आप में एक विज्ञान है जो कि विज्ञान के सर्व जो आधारित हमारे प्रचलित सिद्धांत हैं उसके आधार पर हम लोग कोई भी भौतिक साक्ष्य संकलन करके उसका प्रतिवेदन तैयार होता है, और इसको पूरे दुनिया में उसको माना जाता है। जहाँ तक आपने बोला कि इसमें एक हमारा इंट्यूटिव स्किल होती है या इंट्यूशन, हमें एक आभास होता है जिसको लोग सामान्य भाषा में कहते हैं कि मेरे को सिक्स सेंस है, क्या ये ऐसा कोई वस्तु वो नहीं है, परंतु जो लोग इसके अंदर कार्य करते रहते हैं, घटनास्थलों का मुआयना करते रहते हैं या जो इस प्रकार की प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, उनको एक प्रकार का भौतिक साक्ष्य का जो परिकल्पना है उनके मस्तिष्क में बहुत पूर्णतः स्पष्ट होती है। क्योंकि कितना भी शातिर अपराधी हो, यदि किन्हीं भौतिक साक्ष्यों को हटा देता है, परंतु बहुत से ऐसे भौतिक साक्ष्य हैं जिन्हें हटाया जाना वहाँ से संभव नहीं है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल फुटप्रिंट्स के अलावा और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, और इसमें रोज़ पूरे दुनिया में शोध और अनुसंधान किए जा रहे हैं। क्योंकि जब कानून में या हम लोग एक अपराध के हल करने में एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो अपराधी भी एक कदम चलता है, तो ये एक प्रकार की चूहा बिल्ली की दौड़ चलती रहती है। हम लोग दो कदम आगे चलते हैं और अंत में आप जानते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। उसका कारण ये है कि हम लोग एक टीम होती है, वो पूरी टीम मिलके काम करती है, तो अपराधी है वो अकेला है और हम लोग जो है पूरा टीम होते हैं, इसलिए उसको हम लोग जो है उसके अंजाम तक पहुंचाने में सक्षम हो जाते हैं।
1: एक व्यक्ति को धोखा दिया जा सकता है, पूरी टीम को धोखा देना
0: जी वो भी
1: इम्पॉसिबल,
0: वो भी विशेषज्ञों
1: की, एक्सपर्ट्स लोगों की टीम को। डॉक्टर, आपके अनुभव जो करियर में रहा है, कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक फॉरेंसिक एविडेंस ने या कोई एक ऐसा संकेत आपको मिला हो साइंटिफिक जिसने इन्वेस्टिगेशन की पूरी दिशा को

0: बदल दिया हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ कुछ अनुभव हमें बताएं।
1: जी हाँ, कई बार आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, यदि आप उसमें सजग रूप से कार्य कर रहे होते हैं

0: कि हमें जो है सत्य का अन्वेषण करना है। ऐसे एक प्रकरण के अंदर हमारे अनुसंधान अधिकारी ने जब घटनास्थल का वहाँ भ्रमण किया तो उनको एक पत्थर का सिलबट्टा मिला था। प्रारंभ में तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो केस जो है एक प्रकार का बीमारी का केस था, लेकिन वो जब हमारे पास जांच को आया तो हम लोगों ने उसमें देखा था कि उसके अंदर एक प्रकार का रसायन लगा हुआ था। उस प्रकरण में कुछ ऐसा हुआ था कि किसी एक पुरुष के द्वारा अपनी महिला पर चरित्र की शंका के चलते उसके खाने में उन्होंने कुछ हरे रंग का रसायन मिला दिया था, और वो हरे रंग का रसायन सामान्यतः उसको परीक्षण के दौरान उसको बताने में अत्यंत कठिनाई होती है, परंतु हमारे अनुसंधान अधिकारी ने उसमें बड़ा अच्छा काम किया और उस पत्थर के सिलबट्टे को जब हम लोगों ने देखा तो हमें वो केमिकल उसके अंदर मिला, उसके आधार पर ये ज्ञात हुआ कि वो व्यक्ति अपनी महिला को या उसकी जो पत्नी थी उसको वो बीमार दर्शा के और उससे छुटकारा पाना चाहता था। और वो केस बड़ा अच्छा रहा और उसमें सभी का सहयोग रहा और बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त हुए थे।
1: अपराधी को पकड़ा जा सके।
0: जी हाँ।
1: फॉरेंसिक साइंस में जो करियर बनाना चाहते हैं तो वो कैसे, कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सा कोर्स करें या कौन कौन सी थिंकिंग स्किल अपने डेवलप करें?
0: आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। मेरे हिसाब से समाज के हर एक व्यक्ति को इस बारे में शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि जब कहीं अपराध घटित होता है तो हम केवल सरकार पे ये सोचने लगते हैं कि सरकार इसमें आके या उनकी एजेंसियां काम करेंगी। हमारे भी कुछ दायित्व हैं, सामाजिक दायित्व, कि कहीं कोई घटना हो गई है तो हमें घटनास्थल को सुरक्षित रखना चाहिए। वहाँ भौतिक साक्ष्य रहते हैं, उनको डिस्टर्ब ना होने दें जब तक कि हमारी जो सहायक एजेंसियां हैं वहाँ पहुंचकर उसकी जांच ना करें। रही बात आजकल आपने देखा होगा नए कानून लागू किए हैं भारत सरकार ने, तो उसमें फॉरेंसिक जो है वो एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में सामने आ रहा है। जो इसमें छात्र ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं 12वीं के बाद, वो चाहें तो इसमें BSc फॉरेंसिक साइंस का विषय वस्तु लेकर उसमें अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उसके पश्चात वो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट तक कर सकते हैं। इसके लिए अब लगभग हर एक प्रदेश में भारत के और हर एक लगभग ज़िले में फॉरेंसिक के लिए इसका पढ़ाई का जो है वो एक करिकुलम बनाकर विश्वविद्यालयों द्वारा इस प्रकार की पढ़ाई कराई जा रही है, और अनेक इसमें विश्वविद्यालय, इसमें विशेषकर गांधीनगर गुजरात के नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, सागर, या आप जो है अन्य बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फॉरेंसिक साइंस को एक डिग्री के रूप में पढ़ाया जा रहा है, और इस समय इसमें रोज़गार के भी अच्छे अवसर हैं।
1: रोज़गार संभावनाएं बढ़ाने के कारण ही ये पाठ्यक्रम भी इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं।
0: जी हाँ, ये आपका कहना ठीक है। रोज़गार के अलावा इसमें एक आपको एक सामाजिक संतुष्टि भी मिलती है कि हम न्याय के लिए काम कर रहे हैं, सत्य का अन्वेषण कर रहे हैं, और भौतिक साक्ष्य हमेशा सत्य बोलता है। आप उसकी भाषा को पढ़ें, आप कभी भी जो है सत्य का आकलन कर सकते हैं उससे।
1: एक सजग नागरिक जो आपको सुन रहा है इस वक्त, हमारे श्रोता जो हैं, उनको एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के तौर पर अगर आपको कुछ संदेश देना हो तो क्या मैसेज देंगे?
0: देखिए, मेरा एक ही संदेश है कि हम लोग जो हैं, जिस प्रकार से अपराध घटित हो रहे हैं समाज के अंदर, उनका स्वरूप बदल रहा है, तो हमें इन अपराधों से बचने के लिए पूर्व से तैयारी करना चाहिए कि हमें किसी प्रकार के मोबाइल के अंदर कोई लुभावना ऑफर आ रहा है उसको पहले तस्दीक करें। किसी भी साइट पे जाने से पहले सेफ क्लिक सोचें कि हमें इस पे क्लिक करना है कि नहीं, क्योंकि कई प्रकार के अपराध घटित हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम स्वयं सुरक्षित रहें, उसके प्रोटोकॉल्स को पालन करें, और दूसरा, यदि कोई घटना हो गई है तो तुरंत उसकी सहयोग मांगें, उसको आप छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि सत्य अपने आप सामने आ जाएगा, उसका वैज्ञानिक अनुसंधान होगा, उससे आपको जो है सत्यता का पता चलेगा। तीसरी बात कि हमें किसी भी घटनास्थल

0: पे कोई भी पीड़ित आहत है तो उसके साथ सहानुभूति के साथ समानुभूति भी रखें। उसको यदि कोई आहत है तो सबसे पहले उसको चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराएं, उसका इलाज कराएं, चाहे कोई किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो कुछ हो उसमें डरे नहीं। भौतिक साक्ष्यों का जब आकलन होता है तो सच्चाई सामने आती है। आप पहले मानवीयता का धर्म देखना है और भौतिक साक्ष्यों को और घटना स्थल को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। हमें अपराध जो हो रहे हैं घटित उनके साथ संलिप्त नहीं होना है, और यदि कहीं अपराध हो रहा है तो इसकी सूचना हमें तुरंत अधिकारियों को प्रदाय करवाना चाहिए।
1: डॉक्टर धिंगरा, चलते चलते आप रसमन कोई फिल्मी गीत बताइए अपनी पसंद का जो हम आपकी ओर से अपने श्रोताओं को सुन।
0: जी हाँ, देखिए गीत तो बहुत अच्छे अच्छे हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, और इसमें मुझे ऐसे याद आता है कि बचपन में हम लोग कई बार गीत अच्छी धुनों के कारण हमारे कानों में बजते रहते थे, उसमें अच्छे स्वर होते थे। तो उसमें मैं दो तीन मेरे को गीत याद आ रहे हैं, आप एक पूछ रही हैं तो उसमें मुझे बताना पड़ेगा। एक फिल्म आंधी का एक गाना था, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा।
1: जी, बहुत सुंदर ये गीत है, सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: डॉक्टर धींगड़ा, आप हमारे स्टूडियो में आए, नहीं व्यस्त शेड्यूल में से बहुमूल्य समय हमको दिया और ऐसे गंभीर विषय पर इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी हमारे श्रोताओं तक दी, उनको सजग बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं का भी।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में ये पॉडकास्ट फोरेंसिक विज्ञान साक्ष्य से सच्चाई तक। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला एवं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ग्वालियर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर विनोद ढींगरा से बात कर रही थी डॉक्टर विभूति सिंह। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल उज्जैन शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सिंहस्थ महापर्व के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने फ्रीगंज ब्रिज और कोयला फाटक से कंठाल चौराहे तक चल रहे मार्ग चौड़ीकरण कार्य का अवलोकन भी किया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश की प्रगति साझा की। ये बैठक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की तीसरी मिशन संचालन समूह बैठक थी। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल सागर जिले के कई गांवों में करीब 80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मंत्री राजपूत ने कहा कि जैसी नगर अब एक प्रमुख जंक्शन बन चुका है। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये प्रशिक्षण गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है। प्रशिक्षण में प्रदेश भर की जेलों से 30 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। और प्रदेश के धावक विनोद सिंह ने चीन के ओरदोस में हुई एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, आज यानी 11 जुलाई आज है विश्व जनसंख्या दिवस। ये जनसंख्या दिवस मनाए जाने का कारण क्या है? हम हर दिवस मनाने से पहले यही सोच विचार करते हैं कि क्या कारण है जो हम ये दिवस मना रहे हैं। दरअसल जनसांख्यिकी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें होती हैं या बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिन्हें न सिर्फ सरकार को लागू करना होता है बल्कि समाज को भी लागू करना होता है। जनसंख्या से जुड़े बहुत से विषय हैं जैसे परिवार नियोजन, सतत विकास, इन सब चीज़ों से जुड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए जनसंख्या के ऊपर जागरूकता बेहद ज़रूरी है। दरअसल इस बार विश्व जनसंख्या दिवस की जो थीम है वो है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज के लिए और भविष्य के लिए, रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। यानी युवाओं को उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, अधिकारों और बेहतर भविष्य के लिए सशक्त बनाने पर ये दिवस जो है वो केंद्रित किया गया है 2026 का। यदि हम अपने आकाशवाणी के एक्स प्लेटफॉर्म को देखें तो वहाँ जो जानकारी साझा की गई है वो हम आप तक साझा करना चाहते हैं। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1979 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य था तेज़ी से बढ़ती आबादी और उससे जुड़ी समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना। लेकिन तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या को काबू करने के लिए बनाया जाने वाला ये विशेष दिन आज किसी और चुनौती से जूझ रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमने आपसे कहा था कि हमारे आकाशवाणी के एक्स हैंडल पर जो जानकारी साझा की गई है वो आप तक हम पहुँचाएँगे। तो अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण दुनिया में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और भुखमरी जैसी समस्याएं बढ़ी, जिसकी वजह से जनसंख्या आधारित योजनाएं जो हैं वो बनाई जानी ज़रूरी समझी जाने लगी। बढ़ती आबादी का सीधा असर पड़ा हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर, जैसे पानी, ज़मीन और जंगल। पर्यावरण को जो परेशानियां झेलनी पड़ी या जो दबाव झेलने पड़े वो भी इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि बेहतर भविष्य के लिए परिवार नियोजन कितना आवश्यक है। जनसंख्या पर नियंत्रण रखकर हम अपनी धरती को बचा सकते हैं, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, देश और समाज को सही दिशा दे सकते हैं। लेकिन आज की चुनौती क्या है? दरअसल 2026 का जो थीम है वो है रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। यानी युवाओं के अधिकारों और भविष्य पर जो ये थीम रखी गई है उसका कारण क्या है? दरअसल आज का युवा परिवार निर्माण करने से पहले बहुत कुछ सोचता है, अपनी आर्थिक सुरक्षा के बारे में, अपनी फिटनेस के बारे में। बेहतर स्वास्थ्य को वो ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा है, आर्थिक स्वतंत्रता को वो ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा है, परिवार उसके बाद आ रहा है। वो परिवार चाहता तो है लेकिन अनुकूल आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों में ही, और इसी कारण प्रजनन दर में लगातार गिरावट होती जा रही है और यही है हमारी भविष्य की चिंता का विषय। जो दिवस जनसंख्या के नियंत्रण के लिए बना था, बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए बना था, परिवार नियोजन की तमाम सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए बना था, ये अब परिवार नियोजन की दूसरी दिशा में सोचने को मजबूर हो गया है। यानी कि गिरती हुई जनसंख्या वृद्धि की दर को कैसे संभाला जाए, इस बात पर चिंता लगातार व्यक्त की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि दुनिया की 2/3 से अधिक आबादी ऐसे देशों में रहती है जहां प्रति महिला प्रजनन दर 2.1 से कम है। युवाओं में विवाह,
माता और पिता बनने की चाहत, पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और प्रजनन दर में गिरावट, ये चिंताजनक चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को देखकर हम बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि आज का युवा जिम्मेदारियों से बचना चाहता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, बल्कि बदलते हुए वक्त में व्यक्तिगत और आर्थिक चुनौतियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि युवा इस दिशा में सोचने पर मजबूर हो गया है। इसीलिए इस वर्ष 2026 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम रखी गई है, युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करना आज और भविष्य के लिए। तो उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो भविष्य में समय हमें चुनौतियां दे रहा है, उन चुनौतियों पर विचार करना होगा। युवाओं को ये भरोसा दिलाना होगा कि आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ परिवार भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि इसमें समाज की एक बहुत बड़ी भूमिका है। युवाओं की मनस्थिति को बदलने के लिए पूरे समाज को एक साथ एकजुट होकर इस दिशा में काम करना होगा। नहीं तो जो दिवस जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए चालू किया गया था, उसकी चुनौतियां कुछ और हो जाएंगी। खैर, हम आज के कार्यक्रम में और भी भिन्न भिन्न विषयों पर बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके सामने एक गीत प्रस्तुत है।

0: QR कोड स्कैन कर 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। तुलिका आपके साथ है। श्रोता साथियों, आपने बिग बैन का नाम सुना होगा। बिग बैन, जी हाँ वही। तू घंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। देखिए, इस गाने से आपको पता चल गया ना कि ये बिग बैन कहाँ है। लंदन में है। यानी बहुत सारी जगहों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें फिल्मी गाने बताते हैं। और आज जब मैं अखबार पलट रही थी तो मुझे ये पता चला कि आज ही के दिन लंदन में पहली बार गूंजी थी बिग बैन की घंटियाँ। मुझे लगा कि ये बात, ये जानकारी आपके साथ साझा की जानी चाहिए। ये बात है 1859 की। ब्रिटिश संसद भवन के बाहर लंदन में ये जो प्रसिद्ध घंटाघर है, उसमें बिग बैन की घंटियाँ पहली बार आधिकारिक रूप से गूंजी थीं। इस विशाल घंटी का वज़न है 13.5 टन और इस घंटी का नाम तत्कालीन लोक निर्माण आयुक्त सर बेंजामिन हॉल के नाम पर रखा गया था। और ये क्लॉक टावर, ये ब्रिटेन की पहचान है। यूके के वेस्टमिंस्टर पैलेस के उत्तरी छोर पर दुनिया की सबसे प्रसिद्ध घड़ियों में से ये एक है। बिग बैन दरअसल उस क्लॉक टावर के अंदर लगी घड़ी का नाम है जिसमें आवाज़ आती है। लेकिन अक्सर इस पूरे टावर को लोग बिग बैन टावर के नाम से जानने लगते हैं। 2012 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में आधिकारिक तौर पर इसे एलिजाबेथ टावर का नाम दिया गया था। ये टावर 96 मीटर ऊंचा है और हमने जैसा आपको बताया कि 1859 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। तो इतनी जानकारियां तो हमने आपको दे दी, लेकिन इस जानकारी के साथ जब तक वो गाना बजाया नहीं जाता तब तक ये जानकारी पूरी नहीं होगी। तो चलिए आज बिग बैन का जश्न मनाते हैं और आपको सुनवाते हैं यही गीत।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर का ये गीत अब तो चला गया, लेकिन अब कुछ और जानकारियाँ ऐसी हैं जो आप तक पहुँचनी बेहद ज़रूरी हैं। बारिश के मौसम का मज़ा आप ले रहे होंगे। यकीनन जब तपती गर्मी के बाद बारिश होती है तो हम सब थोड़े सुकून में तो आ ही जाते हैं, और विशेष तौर पर जैसे ही बादल घुमड़ते हैं हमारा मन करने लगता है कि हम चाय पकौड़े खाने लगें। चाय और पकौड़ों का मानसून के साथ ऐसा कनेक्शन हो गया है कि हम इन चाय पकौड़ों की वजह से अक्सर बदपरहेजी कर देते हैं। चाय पकौड़ों में सिर्फ चाय और पकौड़े ही नहीं होते, बल्कि बहुत सारी तली भुनी चीज़ें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। चटपटा खाने की इच्छा होने लगती है क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया होता है। गर्मियों में ये चटपटा खाने की हमारी क्रेविंग्स जो हैं वो कंट्रोल रहती हैं, शायद मौसम का असर हो। तो ये चटपटा खाने के लिए हम स्ट्रीट फूड्स भी खाने लगते हैं, ठेलों पर बिकने वाली चाट पकौड़ी या गोलगप्पे। आपको नहीं लगता कि बरसात के मौसम में जब वायरस और बैक्टीरिया अपने पूरे उफान पर रहते हैं, ये सब चीज़ें खाना पीना सेहत के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है, और इसी वजह से पेट से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं बरसात में पैदा हो जाती हैं। फूड पॉइजनिंग लगातार लोगों को बनी रहती है, या यूँ कहें कि अस्पतालों में डॉक्टर्स के पास फूड पॉइजनिंग के केसेस ज़्यादा पहुँचते हैं। ये फूड पॉइजनिंग सिर्फ बाहर का खाना खाने से नहीं होती, अक्सर हमारे घरों में जो पानी पाइपलाइनों के से आता है पानी भी दूषित हो जाता है, और उससे कंज्यूम करते ही हम बीमार पड़ सकते हैं। वातावरण की नमी भी इसका एक कारण है। इसके अलावा हमारे घर के अंदर जो खान पान हम करते हैं उसमें भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। घर में मक्खियां हो सकती हैं जिसकी वजह से ये फूड पॉइजनिंग या पेट की जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। जो प्रोबायोटिक्स हम हेल्दी समझते हैं वो ताज़ा है, पूरी तरह से दही जमा हुआ है कि नहीं, या खट्टा तो नहीं है। इन सब चीज़ों को यदि हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। फ्रूट्स खाना या सैलेड खाना हम हेल्दी समझते हैं, लेकिन बरसात में थोड़ी सी सावधानी इधर भी रखनी है। जो हम स्प्राउट्स खाते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा हेल्दी समझते हैं, स्प्राउट्स भी बरसात के मौसम में थोड़ा कंट्रोल्ड खाना चाहिए, या यूं कहें कि स्प्राउट्स इस समय ना ही खाएं तो बेहतर है। जो भी अनाज आप भिगो कर खाते हैं उनको यदि थोड़ा सा स्टीम कर लें, सब्जियां जो सैलेड के तौर पर खाते हैं उन्हें भी स्टीम कर लें तो आपके पेट को थोड़ा सा राहत मिल सकती है। यदि थोड़ा सा भी कोई समस्या आपको आपका पेट महसूस कर रहा है तो डॉक्टर के पास जाना ज़्यादा ज़रूरी है। समस्या को बढ़ाना किसी भी तौर पर सही नहीं है। जानते हैं हमारा पेट जो है वो हमारा मूड नियंत्रित करता है, यानी पेट यदि ख़राब होगा तो हमारा मूड भी ख़राब रहेगा। आपको पहले भी हमने शायद बताया होगा कि गट फीलिंग कहते हैं ना, पेट को हमारा मन और दिमाग दोनों ही माना जाता है, सेकंड ब्रेन होता है हमारा। बल्कि इसीलिए कहा जाता है कि किसी के दिल को जीतने का रास्ता हमारे पेट से जाता है। तो पेट यदि हमारा सही रहेगा तो हमारा मन और मस्तिष्क दोनों हमारे काबू में रहेगा, तनाव नहीं होगा। आखिर तनाव तो आजकल की ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी पहलू हो गया है। हमें ज़रा ज़रा सी बात का टेंशन हो जाता है, हमें अपने मोबाइल फ़ोन में हमारी कोई चाही गई जानकारी नहीं मिल रही है तो भी हम टेंशन में आ जाते हैं, आज हमारा मनपसंद खाना नहीं बना है

वो भी टेंशन में आ जाते हैं, कहीं जा रहे हैं और जाने में देरी हो रही है या हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, हम तुरंत स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस लेने की आदत हमने बना ली है, या ये कहें हमारा शौक हो गया है स्ट्रेस लेना। तो ये जो शौक हमने नया नया पाल रखा है, इसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और इसके लिए दोस्तों से मिलना, बातें करना, गाने सुनना और कविताएं पढ़ना, ये बहुत बड़ी थेरेपी हो सकता है। कविताएं पढ़ना एक थेरेपी है, हमारा स्ट्रेस बस्टर है, ये रिपोर्ट्स भी बताती हैं। तो यदि आपको थोड़ा भी स्ट्रेस हो रहा हो तो कविताएं पढ़िए, शायरी सुनिए, गज़लें सुनिए और फिर देखिए स्ट्रेस किस तरह भागता है।

पहेली ही है ये ज़िंदगी, इसे सुलझाते रहिए, ये उलझती रहेगी और इसी बीच में हमारी ज़िंदगी की राहें तय होती रहेंगी। लेकिन इन राहों को तय करते समय मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और फिलहाल विदा दीजिए अपनी दोस्त तुलिका को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतिका उमड़ेकर का ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं महेश कुमार विशोपिया। आइए सुनते हैं गीतिका उमड़ेकर का राग भैरव में ये ख्याल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गीतिका उमड़ेकर का गाया राग भैरव में ये ख्याल। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे महेश कुमार विशोपिया। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीजों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10 बजने को हैं। जिले की चिट्ठी थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के

0: भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है धार जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील सचान, वाचन स्वर दीपा सिंह। धार जिले में इन दिनों खेतों में खूब रौनक दिखाई दे रही है। किसान खरीफ की फसलों की बोनी में पूरी तरह जुटे हैं। इस साल जिले में 5,15,000 हेक्टेयर में बोनी का लक्ष्य रखा गया है। सबसे ज्यादा रकबे में सोयाबीन, कपास और मक्का बोया जा रहा है। अब तक करीब 90% काम पूरा हो चुका है। हालांकि निमाड़ के कुछ इलाकों में कम बारिश के कारण किसानों की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। खेतों के हलचल के बीच गांव में रोजगार की नई उम्मीद भी जागी है। तिरला में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में लोगों को 125 दिन की रोजगार गारंटी और डिजिटल भुगतान जैसी नई व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा साइबर ठगी से बचने के आसान उपाय भी बताए गए। दूसरी ओर किसानों को सहकारिता से जोड़ने के लिए कोशिश भी तेज हुई है। मध्य प्रदेश अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव धार पहुंचे और सहकारी बैंक के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और नए सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस मौके पर बैंक परिसर में पौधरोपण भी किया गया। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर जिले में प्रबुद्धजन संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार और समाज सेवा से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। सरकार की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। वक्ताओं ने विकसित भारत के निर्माण में हर नागरिक की भूमिका पर जोर दिया। अब चलते हैं पीथमपुर, जहां उद्योगों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीथमपुर में ल्यूकोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 272 करोड़ रुपए की नई विनिर्माण इकाई का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीथमपुर प्रदेश के औद्योगिक विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। पीथमपुर की एक और बड़ी तस्वीर भी सामने आई है। यहाँ बन रहे पीएम मित्रा पार्क का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव भी आ चुका है। अनुमान है कि इससे 46,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अधिकारियों ने विकास कार्यों का जायजा लिया और काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। अब बात सेहत की। धार जिले में पल्स पोलियो अभियान पूरे उत्साह के साथ चलाया गया। 5 साल तक के 3,40,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई गई। इसके लिए जिले भर में 2,500 से ज्यादा बूथ बनाए गए थे। हजारों स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर पहुंचकर अभियान को सफल बनाया। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भी अच्छी खबर आई। धार में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बड़ी कंपनियों ने युवाओं के इंटरव्यू लिए। 48 युवाओं को मौके पर ही नौकरी के ऑफर लेटर दिए गए। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत जिले के 471 हितग्राहियों के खातों में 10,31,00,000 रुपए से ज्यादा की राशि भेजी गई। ये सहायता सीधे बैंक खातों में पहुंचाई गई। सामान्य मृत्यु, दुर्घटना और दिव्यांगता से जुड़े मामलों में लोगों को ये मदद मिली है। प्रशासन का कहना है कि पात्र परिवारों को समय पर सहायता मिलना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। धार जिले में पशुपालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया गया है। प्रदेश भर के साथ धार जिले में भी 13 जुलाई से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। यह अभियान दुग्ध उत्पादन दोगुना करने के लक्ष्य से चलाया जा रहा है। 3-4 पशु रखने वाले पशुपालकों से विभागीय टीमें संपर्क करेंगी और पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य, नस्ल सुधार और पोषण की जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड पर्यटन क्विज 2026 का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना है। विद्यालयों के लिए ऑनलाइन पंजीयन 25 जुलाई तक किया जा सकता है। जिला स्तरीय क्विज का आयोजन 7 अगस्त को होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। पिछले वर्ष इस क्विज में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। विजेता टीमों को निःशुल्क पर्यटन भ्रमण का उपहार भी दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल बचाने की मुहिम भी रंग ला रही है। वन विभाग ने 7 वन परिक्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए करीब 590 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इसी बीच जमीन पर सागौन के पौधे लगाए जाएंगे। और आखिर में सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर। अब धार जिले में बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। प्रशासन ने नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू कर दिया है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे धार जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील सचान का था, वाचन स्वर दीपा सिंह का।

0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। क्यों होती है दांतों की समस्याएं? आज के इस कार्यक्रम में इस विषय पर डॉक्टर हरिराम पुरोहित से बात कर रही हैं आभा गुप्ता।
1: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ एक बार फिर से लेकर हम हाजिर हैं। मोती जैसे चमकदार और स्वस्थ दांत आपकी मुस्कान को ही चार चांद नहीं लगाते हैं श्रोताओं, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी आकर्षक बनाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि अधिकांश लोग दांतों से जुड़ी किसी न किसी समस्या से ग्रस्त रहते हैं। तो श्रोताओं, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कार्यक्रम का आज का विषय है, क्यों होती हैं दांतों की समस्याएं। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिमोहन पुरोहित। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू।
1: सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि दांतों की संरचना कैसी होती है, उसके बाद हम और सवाल आपसे करेंगे।
2: देखिए, दांत का दो भाग होते हैं
1: जी।
2: एक क्राउन कहलाता है पोर्शन, जो वो पार्ट है जो हमें मुंह के अंदर दिखता है, और दूसरा पोर्शन कहलाता है रूट
1: जी।
2: रूट का जो पोर्शन होता है, जिसको हम जड़ कह सकते हैं
1: जी,
2: ये हड्डी के अंदर रहती है। जड़ एक बहुत पतली झिल्ली के माध्यम से हड्डी के साथ में जुड़ी हुई रहती है, और इसके बीच में द्रव्य होता है जिससे सीधा सीधा जर्ग कभी हड्डी के ऊपर नहीं लगता है।
1: अच्छा, तो ये दांतों की संरचना के बारे में अभी डॉक्टर साहब ने बताया श्रोताओं कि इसकी जड़ होती है जो हमारे मसूड़ों के अंदर होती है। तो दांतों की सफाई के लिए पहले तो दातून इस्तेमाल किए जाते थे डॉक्टर साहब, आजकल ब्रश भी करते हैं और मंजन भी कुछ लोग करते हैं, तो सबसे बेहतर क्या है दांतों की सफाई के लिए?
2: देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि पहले समय में लोग दातून का उपयोग करते थे, और आज भी अगर वैज्ञानिक विधि से देखा जाए तो दातुन करने का जो सिद्धांत था वो ज़्यादा वैज्ञानिक था। समय के साथ साथ हमने ब्रश करना तो शुरू कर दिया है
1: जी,
2: पर ब्रश में लोग ब्रश का जो हैंडल होता है उसको पकड़ के आगे पीछे उसका मूवमेंट करते हैं
1: जी,
2: जबकि सही टेक्निक ये है कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ब्रिसल्स का मूवमेंट होना चाहिए। अब आप कल्पना करिए कि अगर एक नीम की दातुन है
1: जी,
2: तो उसमें ऊपर नीचे ही मूवमेंट होगा, साइड टू साइड उसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं था,
1: यानी उससे गलत आप कर ही नहीं सकते,
2: गलत टेक्निक आप उसमें अपना ही नहीं सकते थे। तो ये माना जाए कि उस समय लोग ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति से का उपयोग कर रहे थे। दूसरी बात ये थी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी नीम में हुआ करती थी, उस एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के कारण जो मुंह के अंदर बीमारियां होती थी उन बीमारियों की रोकथाम हो जाती थी। अब आज देखिए, जो पेस्ट मार्केट में आ रहे हैं या जो पाउडर मार्केट में आ रहे हैं, उसमें कई चीजें ऐसी आ रही हैं कि जिनमें जैसे जाइलोटॉल एक होता है
1: जी,
2: जाइलोटॉल के बारे में अभी रिसेंट ये रिसर्च आई है कि इसमें कैंसरोजेनिक प्रॉपर्टी होती है
1: जी।
2: तो ये इनके जो साइड इफेक्ट हैं और इनके जो नुकसान हैं वो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही हैं
1: जी। तो दांतों में ब्रश किस तरह से करना चाहिए ये भी एक दंत रोग विशेषज्ञ ही बता सकता है
2: जी, जी। वो ऊपर से नीचे ही किया जाना चाहिए,
1: नहीं तो दांतों की जो परत है उसको नुकसान पहुंचता है।
2: दूसरा एक चीज और मैं आपको बताऊँ, बहुत साधारण सा उदाहरण है, पहले कुओं के ऊपर बहुत बड़े पत्थर के पार्ट पड़े रहते थे
1: जी,
2: उस पर जब रस्सी घिसती थी तो धीरे धीरे उसमें एक गड्ढा बन जाता था,
1: निशान पड़ जाता था।
2: जब आप ब्रश की रॉन्ग टेक्निक यूज करते हैं तो दांत के ऊपर उस तरह का क्षरण होता है, और बाद में लोगों को ठंडा गर्म लगने की समस्या शुरू हो जाती
1: है। बिल्कुल, ये सेंसिटिविटी की समस्या जो आजकल आम हो गई है,
2: जो आम हो गई
1: जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले अक्सर लोगों के दांत मजबूत हुआ करते थे ऐसा कहा जाता है, कई बार दांत जो है 60 साल के बाद 80 साल तक भी बने रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दांत बहुत जल्दी ही टूटने लगते हैं या उनमें समस्या पैदा होने लगती है, तो इसकी वजह क्या होती है?
2: पहले लोग खाना खाते थे उसमें रेशे वाली चीजें ज्यादा खाई जाती थी, और रेशे वाली चीजों को चबाने के लिए आपको बहुत अच्छी सरफेस की जरूरत होती थी। दूसरा, उनके चबाने से जड़ के ऊपर खून का फ्लो बढ़ता था, खून का बहाव बढ़ता था। दूसरा, रेशे वाली चीज को जब आप बहुत देर तक चबाते थे तो उसमें एसिड जो खाने चबाने के कारण से बनता है, वो एसिड का एक्युमुलेशन दांत की सरफेस पर नहीं होता था
1: जी।
2: इस वजह से दांत में कैविटीज भी कम होती थी, मसूड़ों की बीमारियां भी कम होती थी और दांत की तकलीफ कम होती थी।
1: बिल्कुल।
2: पर जैसे जैसे हम मॉडर्न हुए हैं, हम लोग ये कहते हैं कि दांत की जो बीमारियां हैं दे आर द डिसीज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। और उसी का परिणाम ये हो रहा है, हमारे खान पान की हैबिट में परिवर्तन आया, ब्रश की टेक्निक गलत की है। आजकल अनेक ऐसे पदार्थ आ गए हैं मार्केट में, जैसे पाउच आ गए हैं, लोग दिन भर पाउच चमाते हैं, तंबाकू चमाते हैं, उसके कारण से दांतों की बीमारियां बढ़ी हैं।
1: बिल्कुल, तो पाउच जो लोग खाते हैं या जो तंबाकू चबाते हैं, धूम्रपान करते हैं, उसका दांतों पर क्या कुप्रभाव पड़ता है, इस बारे में भी हम आपसे बातचीत करेंगे आगे। लेकिन अब हम गीतों का सिलसिला भी शुरू करने जा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले कौन सा गीत आपकी पसंद का हम सुनवाएं?
2: देखिए, मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ और मैं भावुक भी हूँ। एक बहुत सुंदर गीत है लता मंगेशकर का, ए मेरे वतन के लोगो
1: जी।
2: आज जब भी मैं वो सुनता हूँ तो मैं रोमांचित हो जाता हूँ कि उस गीतकार ने जब ये गीत लिखा होगा
1: जी,
2: तो उसने पूरा अपना दिल निकाल के रख दिया होगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: कैसे भी व्यक्ति हो, जब वो गाना सुनता है ना, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते।
1: बिल्कुल सही बात है, और लता जी ने ये गीत गाया भी उसी जज्बे के साथ है। तो आइए श्रोताओं, इस गीत को सुनते हैं लता जी की आवाज में।

0: तो श्रोताओं, ये गीत आपने सुना। इस गीत के साथ हम भी शहीदों को शत शत नमन करते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हैं। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ, और आज का हमारा विषय है क्यों होती हैं दांतों की समस्याएं। और जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिमोहन पुरोहित। डॉक्टर साहब, जैसा कि इस गीत से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि तंबाकू के सेवन से या पाउच जो गुटखा जिसे कहते हैं उसके खाने से इनका दांतों पर क्या असर पड़ता है और इसको किस तरह से छोड़ा जा सकता है।
1: देखिए, तंबाकू दो तीन तरह से उपयोग की जाती है। एक उसके साथ में चूना मिला के खाते हैं, दूसरा उसको बीड़ी या सिगरेट के रूप में तंबाकू उपयोग की जाती है।
0: बिल्कुल।
1: जो वैज्ञानिक रिसर्च हुई है उसमें ये पाया गया है कि तंबाकू में 4000 तरह के केमिकल्स होते हैं और उसमें से लगभग 450 केमिकल्स ऐसे हैं जिनसे कैंसर की पूरी पूरी संभावना रहती है। तंबाकू से धीरे धीरे एक सबम्यूकस फाइब्रोसिस की बीमारी होती है।
0: अच्छा।
1: जिसमें लोगों का मुंह खुलना बंद हो जाता है,
0: बिल्कुल कम खुलता
1: है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ और मैं आज महसूस करता हूँ कि मेरी क्लिनिक पर हर रोज 2 से 3 नए लड़के 18 से 20 साल की उम्र के बच्चे आते हैं। एक उंगली वो मुंह के अंदर नहीं डाल पाते हैं, खाना खाने में उनको परेशानी होती है। और ये जो हमारी पाउच संस्कृति आई है ना,
0: बिल्कुल,
1: चूंकि कॉस्ट कम होती है, उपलब्धता इजी है, इस वजह से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन भर में 25 पाउच खाते हैं, 30 पाउच खाते हैं, और उसकी वजह से उनको ये सबम्यूकस फाइब्रोसिस की बीमारी होती है। तंबाकू के सेवन से कैंसर की बीमारी होती है, सिगरेट के सेवन से सिर्फ कैंसर की बात नहीं है। आज जो वैज्ञानिक रिसर्च हुई है उनमें ये पाया गया है कि इसमें फॉजीन गैस होती है, तंबाकू के जलने से पैदा होती है, निकोटीन होती है। निकोटीन वो पदार्थ है कि अगर कोई आधा मिलीग्राम निकोटीन किसी को डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसकी मौत हो जाती है।
0: और
1: तंबाकू में ये भरपूर होता है। दूसरा, अगर बैठ के बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो उसका जो धुआं है वहां जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब उसके फेफड़ों में जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो सोसाइटी में लोगों को समझना चाहिए और इन चीजों से बचना चाहिए।
0: जी, तंबाकू सेवन हो, धूम्रपान हो या गुटखा खाना हो, इससे हम अपने स्वास्थ्य से तो हाथ धोते ही हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि दांतों पर इनका सीधा सीधा क्या असर होता है। कई लोग तंबाकू खाने के पीछे वजह बताते हैं कि हमें पायरिया था या हमारे मसूड़ों से खून जा रहा था, इसलिए हमने तंबाकू खाना शुरू किया तो अब वो बंद हो गया। तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: देखिए, क्या होता है, तंबाकू जब आदमी खाता है तो एक तो इससे थोड़ी सी देर के लिए उसको एक फीलिंग ऑफ बेटर बीइंग की होती है, नशे की आदत होने के कारण से। पर तंबाकू जब आप हमेशा सेवन करते रहते हैं तो उससे एक तो गाल में नुकसान होता है, पैचेस बन जाते हैं,

0: दूसरा इनकी वजह से दांतों के ऊपर एक लेयर जमा होना शुरू हो जाती है जिसके कारण से लॉन्ग टर्म में जाके पायरिया बनता है। शुरुआत की स्थिति में मरीज को जरूर ये लगता है कि हमें तम्बाकू से फायदा हो रहा है, पर लॉन्ग टर्म में जाके जब वो कॉन्स्टेंट यूज करता रहता है तो उससे जाके उसको पायरिया की शिकायत होती है।
1: तो दांतों पर भी सीधा सीधा असर पड़ता है और देखने में भी बहुत बदसूरत दिखते हैं वो दांत डॉक्टर साहब, काले से हो जाते हैं और लाल से हो जाते हैं, तो वो देखने में भी खराब लगते हैं, दांतों की सफाई भी उतनी प्रॉपर हो नहीं पाती है तंबाकू खाने वाले लोगों की।
0: नहीं, उससे आप ये देखिए ना कि आदमी का जो व्यक्तित्व के ऊपर असर पड़ता है। आज कई बच्चों में हमने देखा है कि वो पीले दांत हैं तो जब वो बातचीत करते हैं तो मुंह के सामने अपनी चार उंगलियां रख लेते हैं, सोसाइटी में बात नहीं कर सकते हैं वो,
1: तो शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो शर्मिंदगी पैदा ना हो इस तरह की, इसके लिए बेहतर है कि यदि तंबाकू या गुटखा आपने शुरू भी किया है तो उसे विल पावर के साथ आपको छोड़ना होगा, उसकी जगह सौंफ या लौंग का उपयोग किया जा सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब की बात हमारे श्रोताओं ने ध्यान से सुनी होगी और यदि वो सेवन कर रहे हैं इन चीज़ों का तो तुरंत ही छोड़ देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और नशा यदि करना है तो श्रोताओं, संगीत का नशा बुरा नहीं है। तो आइए, हमारा इशारा हमारे श्रोता भी समझ रहे हैं डॉक्टर साहब कि अब हम एक और गीत आपकी पसंद का उनको सुनवाने वाले हैं। कार्यक्रम में हम आगे बढ़े हैं डॉक्टर साहब, उससे पहले आपकी पसंद का एक और गीत हम जानना चाहेंगे।
0: देखिए, शास्त्रीय संगीत पर आधारित कोहनूर फिल्म का एक गाना मधुबन में राधिका नाचे रही है, बहुत अच्छा लगता है मुझे गीत, और उस गीत को सुनने में एक आत्मीय आनंद मिलता है।
1: बिल्कुल, तो श्रोताओं आइए हम ये आत्मीय आनंद उठाते हैं और सुनते हैं फिल्म कोहिनूर का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना, निश्चित रूप से आप गीत में खो गए होंगे। आ जाइए अब विषय पर। हमारा आज के कार्यक्रम का विषय है कि क्यों होती हैं दांतों की समस्याएं, और जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर हरिमोहन पुरोहित। कार्यक्रम है सेहत की बात तरानों के साथ, और इसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। डॉक्टर साहब, पायरिया की बात हमने की, दरअसल ये पायरिया रोग होता क्या है? और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इससे ग्रस्त रहते हैं, इससे दांत समूल नष्ट हो जाते हैं, यानी टूट भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं, और कई बार शायद मुंह से दुर्गंध भी आती है। तो पायरिया रोग क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है?
1: देखिए, पायरिया में धीरे धीरे मसूड़ों में मवाद पड़ना शुरू होती है
0: जी।
1: जब वहाँ दांत और मसूड़े के बीच में
0: जी
1: तंबाकू सेवन से या दांत के ठीक से सफाई न करने के कारण से एक कैल्शियम की परत जमा होती है, जिसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में टार्टर कहते हैं।
0: अच्छा।
1: उस टार्टर के कारण से मसूड़ों में धीरे धीरे एक उत्तेजना होती है और मसूड़ों में सूजन आना शुरू हो जाती है। जब सूजन आती है तो वहाँ खाना भरता है, खाना भरने के कारण से मसूड़ों में धीरे धीरे मवाद पड़ना शुरू हो जाती है। ये पायरिया का प्रारंभिक लक्षण है कि जब कभी खून आता है और कभी बदबू आती है। पर सामान्य रूप से हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव कहें या लोगों को उतनी जल्दी ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं होता है, तो इस अवस्था में वो कभी कभी अपने हाउस होल्ड रेमेडीज हैं
0: जी,
1: घर की जो पद्धति है उसको उपयोग करके वो बीमारी से निजात पाने की कोशिश करता है
0: जी।
1: पर इस स्टेज के बाद भी अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये मसूड़ों में धीरे धीरे मवाद पड़ने की प्रक्रिया ये बढ़ती जाती है
0: जी।
1: और एक अवस्था वो आती है कि जब सामने खड़ा हुआ व्यक्ति ये कहता है कि आपके मुंह से दुर्गंध आती है, और तब व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि उससे पायरिया की बीमारी है
0: जी।
1: इसी स्थिति में दांत का हिलना शुरू हो जाता है। अगर प्राथमिक अवस्था में व्यक्ति ध्यान दे
0: जी
1: और उसको किसी अच्छे डेंटल सर्जन को दिखाए तो दांतों की सफाई कर दी जाती है, और सफाई करने से ये समस्या हल हो सकती है।
0: तो ये किसी भी उम्र में, बच्चों को भी क्या जम सकता है टार्टर दांतों पर?
1: बच्चों में भी जमा होता है और ओल्ड एज में भी जमा हो सकता है, इसका एज से कोई संबंध नहीं।
0: अच्छा। जो दांतों के ऊपर मसूड़ों के पास एक पीली सी जो परत होती है,
1: पर जमा
0: जी, होती है, उसे टार्टर कहते हैं। तो टार्टर यदि जमना शुरू हो श्रोताओं, तभी आपको सचेत हो जाना चाहिए। तो दंत रोग विशेषज्ञ के पास जाकर इसकी सफाई किस तरह से की जाती है?
1: ये आजकल अल्ट्रासोनिक स्केलर्स आ गए हैं
0: जी,
1: उनमें वाइब्रेशंस होते हैं और साथ में पानी का जेट निकलता है
0: जी,
1: बहुत पेनलेस प्रोसीजर है जिसमें दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है, और सफाई अगर ठीक से कर दी जाए तो दांत की जो पायरिया की बीमारी है लगभग 90% केस में ठीक हो जाती है।
0: अच्छा, यानी कि शुरुआत में से रोका जा सकता है, लेकिन यदि पायरिया साबित हो गया कि पायरिया है तो पूरी तरह जड़ से ठीक हो सकता है?
1: ऐसा हो तो सकता है, पर उसके लिए फिर प्रोसीजर ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, कुशल डेंटल सर्जन की आवश्यकता पड़ती है, और कई बार यह है कि अगर बीमारी लाइलाज स्टेज में पहुंच गई है तो दांत निकालना भी बीमारी का एक इलाज है।
0: ओहो, तो इस स्थिति तक श्रोताओं पहुंचा ही क्यों जाए, उससे पहले ही हमें सचेत हो जाना चाहिए, और यदि दांतों पर टार्टर दिखाई देता है तो तुरंत दंत रोग विशेषज्ञ के पास जाकर उसका निवारण करवाना चाहिए। अच्छा, कैविटी की एक समस्या बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब देखने में आती है दांतों में, हर एक दूसरा तीसरा व्यक्ति बताता है कि दांतों में कैविटी है, तो ये क्या चीज़ है और क्यों पैदा होती है?
1: देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं
0: जी
1: उसके पाचन की क्रिया में लैक्टिक एसिड बनता है।
0: बिल्कुल,
1: ये पाचन की सामान्य प्रक्रिया है। ये लैक्टिक एसिड दांत का जो सरफेस होता है, हम आप सब जानते हैं कि वो बिल्कुल चिकनी नहीं होती, उसमें कहीं गड्ढे होते हैं और कहीं उसमें उभार होते हैं, और ये इसलिए है कि जिससे खाना ठीक से कटे। उन गड्ढों में जब ये लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो धीरे धीरे धीरे धीरे इस लैक्टिक एसिड के कारण से दांत में छेद बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं कीड़ा लगना।
0: अच्छा।
1: अब लोग ये पूछ सकते हैं कि साहब उसमें क्या कीड़ा होता है? कई जगह लोग रास्ता चलते दिखाते हैं कि उन्होंने कान में एक दवाई डाली और मुंह से कीड़ा निकाल दिया। वैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो कीड़े जैसी कोई बात नहीं होती है। और एसिड का मैं और आपको एक उदाहरण दूं कि आज हमारे घर में कई लोग बैटरी यूज करते हैं
0: जी,
1: उस बैटरी में दो प्लेट होती है, उसमें एसिड होता है, तो वो प्लेट धीरे धीरे धीरे धीरे गल जाती है,
0: यानी एसिड तो गलाव पैदा करता है,
1: एसिड गलाव पैदा करता है। तो ये एसिड जो दांत में गलाव पैदा कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कीड़ा लगना।
0: वहाँ गड्ढा हो जाता तो
1: गड्ढा हो जाता, कीड़ा लगना इसलिए बोलते हैं कि हम लोग भी ये चाहते हैं कि आम आदमी की भाषा में उसे समझाया जाए जब हम बोलते हैं कीड़ा लगना तो वो आदमी समझ जाता है कि हमारे दांत में छेद है। आज हम उसको ये वैज्ञानिक पद्धति बताएं कि साहब इसमें एसिड से की वजह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कैल्सिफाइड सब्सटेंस हो रहा है तो समझ नहीं पाएगा
0: जी। तो इसका इलाज किस तरह से संभव होता है?
1: इसमें स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर दांत का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो इनेमल कहलाता है, अगर कैविटी इनेमल में है तो उसको साफ करके डेंटिन तक साफ किया जाता है, उसके बाद में उसमें फिलिंग कर दी जाती है। अगर डेंटिन तक कैविटी पहुंच गई है तो कुछ ऐसा केमिकल्स होते हैं कि उनको लगाने के बाद फिलिंग करते हैं। इसके बाद भी अगर पेशेंट ध्यान नहीं देता है तो कैविटी दांत की जो पल्प होती है वहां तक पहुंच जाती है।
0: अच्छा।
1: और उस स्टेज में आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रूट कैनाल ट्रीटमेंट वगैरह हम लोग करते हैं
0: जी। तो डॉक्टर साहब इसका उम्र से कोई वास्ता नहीं है, किसी भी उम्र में कैविटी हो सकती है?
1: कैविटी किसी भी उम्र में हो सकती है। लैक्टिक एसिड तो डाइजेशन की क्रिया में पैदा होगा, पर अगर हम खाना खाने के बाद में कुल्ला बहुत अच्छी तरीके से करें
0: जी।
1: दूसरा जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं खासतौर से जैसे टॉफी है बिस्किट है, अगर इन पदार्थों का हम सेवन करते हैं तो इनके बाद में हमें बच्चों को ये सलाह देना चाहिए कि वो ब्रश बहुत अच्छे तरीके से करें।
0: हाँ, ये कहा जाता है ना मीठा ज्यादा खाओगे तो दांतों में कीड़ा लग जाएगा,
1: इसीलिए कि उससे कार्बोहाइड्रेट से एसिड ज्यादा बनता है
0: जी। तो ये कीड़ा क्या है आज हमारे श्रोताओं ने इसे जाना और किस तरह से इसे बचा जा सकता है ये भी जाना। तो दांतों की सुरक्षा के लिए दांतों की जो है साफ सफाई का ध्यान रखना तो बेहद जरूरी है। तो डॉक्टर साहब और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातें दांतों के स्वास्थ्य से संबंधित आपसे जानेंगे, लेकिन अब समय आ गया है कि हम श्रोताओं का आपकी पसंद का एक और गीत सुनवाएं।
1: एक गाना मुझे राजा हिंदुस्तानी का बहुत पसंद आता है
0: जी,
1: कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके
0: जी। बिल्कुल,
1: मतलब इस गाने को जब सुनते हैं तो उसकी हर लाइन में ये है कि कहीं ना कहीं वो जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं
0: जी बिल्कुल। तो आइए श्रोताओं, फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: तो श्रोताओं, फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत आपने सुना और निश्चित रूप से हमारे इस कार्यक्रम में भी बाहर आ गई। आइए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सेहत की बात तरानों के साथ। आज का हमारा विषय है क्यों होती हैं दांतों की समस्याएं, और जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर हरिमोहन पुरोहित, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब ने बताया कि दांतों की कैविटी क्या होती है, पायरिया रोग क्या होता है, दांतों की सफाई कैसे रखी जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बात और मैं जानना चाहूँगी कि बच्चों के जो दांत होते हैं वो 6 या 7 साल के बाद टूटते हैं, इसे कहते हैं दूध के दांत होते हैं।
1: जी जी।
0: अच्छा, वो दांत बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कई बार बच्चों के दांत जब टूटते हैं उसके बाद जो दांत आते हैं वो एक पंक्ति में नहीं होते, उबड़ खाबड़ होते हैं, और कई बार वो साइज में भी बहुत बड़े होते हैं, दांत पर दांत भी आ जाता है, तो इसकी वजह क्या होती है?
1: जो बच्चों में दूध के दांत होते हैं वो परमानेंट टीथ के लिए एक स्पेस मेंटेनर की तरह काम करते हैं, उनके लिए वो जगह रिजर्व करके रखते हैं।
0: अच्छा।
1: अब दूध के दांत जब बच्चों में होते हैं, बच्चे के जबड़े का साइज छोटा होता है
0: जी,
1: और उन दांतों का बहुत ज़्यादा उपयोग इस हिसाब से नहीं होता है कि खाना चबाने में उनको बहुत हार्ड पदार्थ का उपयोग बच्चे नहीं करते
0: जी,
1: हैं। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दूध के दांत सामान्य रूप से 6 वर्ष की उम्र में गिरना शुरू होते हैं और ये 12 साल की उम्र तक गिरते रहते हैं। 6 वर्ष की उम्र में सामने के दांत गिरते हैं। अब 6 वर्ष की उम्र में जो दूध का दांत गिरना है उसकी जगह जो परमानेंट टीथ आएगा वो उसकी जिंदगी भर रहना है।
0: बिल्कुल।
1: और उस दांत का उपयोग उसकी जिंदगी में हर तरह की चीजों के लिए उसका उपयोग होना है
0: जी।
1: अब जबड़े का साइज भी उसका उम्र के साथ में बढ़ेगा, तो आप कल्पना करिए कि अगर दूध के दांत के बराबर ही परमानेंट टीथ आएगा तो 15 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में वो कैसा दिखेगा। तो ये प्रकृति ने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि जो परमानेंट टीथ है वो बड़ा आता है। अब उसका साइज जब हम देखते हैं 6 साल की उम्र में जब हम तुलना करते हैं तो हमें ये लगता है कि वो दांत बहुत ज्यादा बड़ा है, जबकि वो हर व्यक्ति की हाइट के अकॉर्डिंगली, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली प्रकृति वो दांत बनाती है।
0: अच्छा, अच्छा, इसमें कहीं आनुवंशिकता काम करती है क्या, दांतों की आकृति, दांतों के रंग या दांतों के आकार में?
1: इसमें देखिए 2-3 चीजें होती हैं कि आपका जो स्किन का कलर है, आपके जो बालों का कलर है
0: जी,
1: आपका चेहरे का जिस तरह के गोलकार चेहरा है या लंबा चेहरा है
0: जी,
1: उसके अनुसार सामने के दांत होते हैं
0: जी।
1: निर्भर इस पर करता है कि आपका हेयर कॉम्प्लेक्शन, स्किन कलर क्या है, उसके अनुसार दांतों का कलर प्रकृति के रूप से होता है।
0: और माता पिता का भी कुछ इसमें रोल रहता है?
1: माता पिता का रोल रहता है कि जो साइज आपका होता है, या कई ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिनके कारण से अगर माता पिता में बीमारी है तो उसका रिफ्लेक्शन दांतों में आता है।
0: अच्छा, तो इसमें भी आनुवंशिकता कुछ हद तक जिम्मेदार होती है। अच्छा, एक अक्लदाड़ जिसे कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, जो कहते हैं कि 17-18 साल की उम्र में निकलना शुरू होती है, उसके बाद अकल आती है। अकल आती है, ये तो नहीं पता
1: जी। प्रजातंत्र में भी आदमी को वोट देने का अधिकार 18 साल के बाद है
0: जी,
1: और अपना जो दर्शन है वो भी ये कहता है कि इस उम्र में लोगों में ज्ञान आ जाता है। दांत के डेवलपमेंट के साथ साथ ये जो दांत आता है ये 18 साल की एज के बाद आना शुरू होता है, इसलिए लोगों ने उसको अक्ल के साथ जोड़ दिया है।
0: लेकिन कई बार इसमें बहुत परेशानियां पैदा होती है, मतलब बार बार मसूड़ा सूझता है लेकिन दांत निकलता नहीं है, या कई बार पूरा भी ये नहीं निकलती, अक्लदाड़ 4 जो होती है नहीं निकलती है, या कई बार तिरछी निकलती है।
1: इसमें देखिए जो डार्विन का हमारा सिद्धांत है
0: जी,
1: कि धीरे धीरे धीरे धीरे तो मानव विकास हुआ, हमारे जो पूर्वज थे उनकी हाइट बहुत अच्छी थी,
0: सही बात,
1: पर समय के अनुसार हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारे रहन सहन का वो हुआ, उसके हिसाब से धीरे धीरे हमारी हाइट कम हुई है, खाने पीने के में भी परिवर्तन आया है, इस कारण से हमारे जो जबड़े का साइज है वो धीरे धीरे कम हुआ है। पर आज भी मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं, तो जबड़े का साइज छोटा होने की वजह से कई लोगों में ये दांत या तो तिरछा आता है या फंसा हुआ आता है, और जब वो अपने प्रॉपर पोजीशन में नहीं आता ना तो बार बार वो दिक्कत करता है।
0: तो उसके लिए भी दंत रोग विशेषज्ञ के पास तुरंत जाना चाहिए जी। तो डॉक्टर साहब, आपसे हम थोड़ी और चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में, अभी एक गीत आपकी पसंद का और हो जाए।
1: मैं चाहूंगा
0: जी
1: कि तीसरी कसम का एक गीत है कि सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, जो गाने फिल्मों में ऐसे लिखे गए हैं कि जो हमारे जीवन दर्शन को दिखाते हैं, वो गाने हमें समझे पसंद रहे हैं।
0: बहुत अच्छा गीत है, और इस गीत को आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, फिल्म तीसरी कसम का ये गीत आपने सुना मुकेश की आवाज़ में, और अब हम आ पहुँचे हैं कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर। और आज का हमारा विषय है क्यों होती हैं दांतों की समस्याएं। हमारे मेहमान हैं डॉक्टर हरिमोहन पुरोहित। चलते चलते डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि हर डॉक्टर जो भी हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान बनकर आता है, एक बात ज़रूर कहते हैं कि खान पान बेहतर होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, तभी किसी भी समस्या से बचा जा सकता है। तो दांत स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और जितनी हमारी उम्र है हमारा साथ दें, उसके लिए हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए?
1: एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है
0: जी
1: कि हमें ये आदत डालना चाहिए कि सुबह उठने के साथ और रात में सोने के पहले ब्रश हमें जरूर करना चाहिए,
0: यानी कि बैटी लेने की आदत छोड़ दें।
1: हाँ, ये बैटी लेने की आदत छोड़ दें और रात में सोने के पहले ब्रश करें। दूसरा, खान पान में हम ये देखें कि जो चिपचिपे पदार्थ हैं, इन पदार्थों का सेवन सीमित मात्रा में करें। आज ये मैं कहूँगा इन पदार्थों का उपयोग ना करें तो ये तो संभव नहीं है, उनका सीमित मात्रा में उपयोग करें। तम्बाकू पाउच या इस तरह की चीज़ों का सेवन हम ना करें
0: जी।
1: अगर ये दो तीन चीज़ों का हम ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे, और अगर कोई जरा भी समस्या होती है तो उससे हमें उचित डॉक्टर के पास में जाके उसका इलाज कराना चाहिए।
0: बिल्कुल। अच्छा, अपने खान पान में क्या शामिल करना चाहिए, खास तौर पर संतुलित आहार जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या खास पदार्थों को शामिल करना चाहिए ताकि दांतों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, चमकदार रहे?
1: उसमें रेशे वाली चीज़ों का उपयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: फलों में जैसे हमें संतरा, सेब, हमें गन्ना भी कभी कभी चूसना चाहिए, जो आजकल लोग धीरे धीरे जिससे अलग होते चले जा रहे हैं। खाने पीने में हमें जैसे मक्का है, मक्का हमें जरूर खाना चाहिए, मोटा अनाज हमें खाना चाहिए। इनको क्या होता है, चबाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ती है, दांतों के ऊपर प्रेशर आता है और उसकी वजह से जो मसूड़े हैं वो स्वस्थ रहते हैं। दूसरा, हम पाउडर लेते हैं तो महीन होना चाहिए। पेस्ट हम कोई भी लें, किसी भी कंपनी का लें, बस टेक्निक सही उपयोग करें
0: जी, यानी कि ब्रश प्रॉपर स्टाइल में करें ताकि दांतों का शरण ना हो बल्कि दांतों की सफाई हो
1: जी।
0: तो दोस्तों, आज आपने जाना कि किन किन बातों का हम ध्यान रख के अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू, थैंक यू।
0: और श्रोताओं, इसके साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। आज का विषय था क्यों होती हैं दांतों की समस्याएं, और जानकारी देने के लिए आज हमारे मेहमान थे वरिष्ठ दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर हरिमोहन पुरोहित। अब दीजिए मुझे आज्ञा, नमस्कार।

सेहत की बात तरानों के साथ इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानकारी क्यों होती है दांतों की समस्याएं। डॉक्टर हरिराम पुरोहित से इस विषय पर बात कर रही थी आभा गुप्ता। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV AIDS और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: लता मंगेशकर और बाबला मेहता को आइए सुनते हैं फिल्म चांदनी में।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी का दर्जा दिया। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय वस्तु और सेवा व्यापार को बढ़ाकर 35,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य भी तय किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित है। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत तीसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया सम्पन्न हुई। इसमें 7,630 बच्चों को पसंदीदा निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिला। प्रदेश सरकार ने सत्र 2026 से सभी शासकीय आईटीआई में महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क में 25% की छूट देने का फैसला लिया है। इससे महिलाओं को प्रथम वर्ष के शुल्क में 1,335 रुपए की बचत होगी। अब प्रथम वर्ष का कुल शुल्क 4,755 रुपए होगा। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में जनजाति चित्रकार की प्रदर्शनी जारी है। इसमें भील जनजाति चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की प्रदर्शनी का संयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी 30 जुलाई तक रहेगी और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 13 जुलाई तक रिमझिम बारिश होगी। 14 जुलाई को कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म से लिया है, जिसे गाया अरिजीत सिंह ने। मनोज मुंतशिर के बोल हैं, संगीत अमाल मलिक का।

अगला गीत बॉडीगार्ड फिल्म से लिया है, जिसे गाया राहत फ़तेह अली खान और श्रेया घोषाल ने। शब्बीर अहमद और नीलेश मिश्रा ने इस गीत को लिखा, संगीत हिमेश रेशमिया का।

अगला गीत हर्षदीप कौर ने गाया है, इनका साथ दिया अरिजीत सिंह ने। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और जैम का संगीत, फिल्म है रईस।

दम लगा के हईशा, इस फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है पद्मावत फिल्म से, जिसे आवाज़ें दी श्रेया घोषाल और स्वरूप खान ने। ए एम तुराज का गीत है, संगीत संजय लीला भंसाली का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में हम आपको सुनवा रहे हैं। शब्द रचना समीर की है, संगीत तैयार किया नदीम श्रवण ने, फिल्म का नाम धड़कन।

कार्यक्रम का अगला गीत तुम बिन फिल्म से है। निखिल विनय का संगीत है, फैज़ अनवर ने इस गीत को लिखा। आवाज़ें सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की।

0: राजनीति फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक 11 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी का दर्जा दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल भिंड जिले के लाहार का दौरा करेंगे। वे यहां आयोजित एक कार्यक्रम से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत तीसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें 7,630 बच्चों को पसंदीदा निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिला। राज्य सरकार ने सत्र 2026 से सभी शासकीय आईटीआई में महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क में 25% की छूट देने का फैसला लिया है। इससे महिलाओं को प्रथम वर्ष के शुल्क में 1,335 रुपए की बचत होगी। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये प्रशिक्षण गुजरात राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है। प्रशिक्षण में प्रदेश भर की जेलों से 30 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। और प्रदेश के धावक विनोद सिंह ने चीन के ओरदोस में हुई एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कटी पतंग फिल्म का गीत, जिसे गाया किशोर कुमार ने। संगीत आर डी बर्मन का है और आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा। सुनना चाहा छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। इसी गीत की फरमाइश भेजी सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुजताबा खान, राव भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने।

अगला गीत इन सभी श्रोताओं की पसंद का है। छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी, बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से ये पत्र आया। सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही पूजा छुटकी, शरद डोडवानी, श्रेया पूनम वाधवानी और समस्त माखीजा परिवार ने। इन श्रोताओं की पसंद है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया धरती फिल्म का गीत, जिसे लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, आनंद बख्शी की शब्द रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत दिया, फिल्म का नाम महबूब की मेहंदी। सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से ये पत्र आया, मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित और समस्त राजावत परिवार ने।
1: ये जो चिलमन है

कार्यक्रम का अगला गीत इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले। सपना संगीता रोड इंदौर से पतराया लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया का। इन श्रोताओं की पसंद है लता मंगेशकर का गाया आन मिलो सजना फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं हीर रांझा फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। कैफी आजमी ने इस गीत को लिखा है, संगीत तैयार किया मदन मोहन ने। सुनना चाहे कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदित्य शिवानी और मीनू राज श्रीमाली ने। घंटाघर चौक खंडवा से ये पत्र हम तक पहुंचाया संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने।
1: तो

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
2: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
1: मतलब?
2: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
3: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अब सुनिए धारावाहिक हंसना मना है की 10वीं कड़ी।

दोस्तों नमस्कार, आप सभी को आज की इस खास और बहुत खास महफिल में शामिल करते हुए मुझे यानी आपके दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी को बेहद खुशी हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मनमांगी मुराद मिल गई हो, मीठे मीठा रसगुल्ला मिल गया हो। यूं तो कहने को इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है हंसना मना है, मगर हमारी कोशिश आपको ज्यादा से ज्यादा हंसाने की होगी। एक थानेदार साहब थे, रिटायर्ड थानेदार, यानो सर्विस से फुर्सत हो गए थे और बड़ा मजा ले रहे थे घर में रिटायरमेंट का, बाल बच्चों के साथ बड़ा आनंद ले रहे थे। एक बड़ी बढ़िया सी बात यह है उन थानेदार में कि उनको संगीत का बड़ा शौक था, बड़े प्यारे गाना वाना सुनते थे, रोज आकाशवाणी सुने, दिन भर फिल्मी गाने सुने, गजलें सुने, लोक संगीत सुने, बड़े शौकीन संगीत के। उनको एक दिन कुछ ऐसा लगा कि एक नौकर रख लिया जाए घर में जो मेरी मदद करे, घर के दूसरे कामकाज भी करे। ठीक है साहब, पेपर में एक विज्ञापन निकलवा दिया गया कि एक कर्मचारी की आवश्यकता है, मिलिए। उन्होंने थानेदार साहब ने अपना पता उस पेपर में दे दिया। अब एक गोपाल नाम का व्यक्ति उस अखबार को, उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ के, विज्ञापन को पढ़ के उनके घर पहुंचा। जब घर तो पहुंचा, वार्तालाप शुरू हो गई। कहले कहिए। कहले थानेदार साहब नमस्कार, मेरा नाम गोपाल है और आपका विज्ञापन पढ़ के मैं आपकी सेवा में आ गया हूँ। कहले ठीक है, आप हमारे यहाँ काम करने आए हैं, बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हम थानेदार रहे हैं पहले, और उधम हमारे घर में उधम नहीं करिएगा, वो चोरी वगैरह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पुराना थानेदार हूँ। तो गोपाल बोलता है साहब हमने आज तक चोरी नहीं की, हमने तो झूठ भी नहीं बोला, चोरी भी नहीं की, आप चिंताओं से मुक्त रहें, आप हमको अपने घर में बस सर्विस में सेवा में ले लें बस। तो थानेदार साहब बोलते ठीक है आप आओ नौकरी में, कल से आ जाओ आप, लेकिन बात यह है कि हम हैं संगीत के शौकीन, वो बहुत ज्यादा संगीत के शौकीन हैं, बस हमको 24 घंटे एक ही नशा रहता है संगीत का। आकाशवाणी हम दिन भर सुनते हैं और जब जब समय मिलता है हम दूरदर्शन देखते हैं, उसमें भी गाने बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बड़े प्यारे प्यारे भजन आते हैं। हैं कहले ठीक है साहब, जो आप देखते वो हम भी देखेंगे। नहीं नहीं, तुमको तो काम करना होगा, देखने का समय सिर्फ हमारे पास है। हैं चलो ठीक है, तो शर्त ये रहेगी हमारे आपके बीच में मिस्टर गोपाल के, जैसे कोई आ रहा है हमारे घर में तो तुमसे हम बोलेंगे भाई कौन आया, जरा दरवाजे पे जाओ, तो तुम उसको देखना और हमको गाना गा के बताना कि वो कौन आया है। यानी समझाने थानेदार साहब, ओहो क्या उसमें समझाना, कोई आ रहा है हमको गाना गा के बताओ कि वो कौन आया है। अगर हमने कोई चीज तुमसे घर में बुलवाई है, ये ले आओ वो ले आओ, तो तुम सब गाना गा के गाना गाते गाते आओ, फिर हमको दो, समझ गए। तो गोपाल थोड़ा सा समझ गया, थोड़ा नहीं समझा, उसने हल्का सा झूठ बोल दिया, कहा अरे बिल्कुल साहब, अरे वाह वाह थानेदार साहब, बड़ा छोटा सा आपने छोटी सी बात कही है, गाना गा के बात करने की है ना, कोई आ रहा है गाना गा के बताओ, कोई जा रहा है गाना गा के बताओ, आप चिंताओं से मुक्त रहे थानेदार साहब। अरे हम तो संगीत जानते हैं, हमने 5 साल 7 साल शास्त्रीय संगीत सीखा है। अरे फिर तो गोपाल बहुत अच्छी बात है, कल से तुम्हारी सर्विस पक्की, 15 दिन महीने भर काम करो, उसके बाद तुम्हारी तनख्वाह के बारे में विचार किया जाएगा। ठीक है साहब। इस तरह से एक दिन तो निकल गया, दूसरे दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया तो थानेदार साहब ने गोपाल को बोला, अरे गोपाल, अरे जरा देखना भाई दरवाजे पे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जरा देखो भाई कौन आया है। जी थानेदार साहब जा रहा हूं, आ रहा हूं। उसने दरवाजा खोला, जो सज्जन थे उनको देखा, अब बता रहा है वो थानेदार को कौन गोपाल की कौन आया है, किस तरह से गाना गा के।

का, हम उसका पैसा दे देंगे, रुपया चार रुपया पांच रुपये कोई बात नहीं है। अभी उससे बोलो अभी जाए, अभी हम पेपर पढ़ रहे हैं, चाय कॉफी लेना, नाश्ता लेना। ठीक साहब, गाना गा के एक दिन तो निकल गया, दो दिन निकल गया, चार दिन निकल गया, अचानक माहौल होली का आया। होली के माहौल में थानेदार साहब कुछ उल्टा सीधा कुछ खा पी के कहीं से आ गए थे, तो उसी खाने पीने के चक्कर में वो रात को आके घर में सो गए, और न जाने कहाँ से कोई अंगार चिंगारी कोई कहीं से भड़की, कुछ क्या इत्तफाक हुआ, थानेदार साहब के मकान में लग गई आग। तो सबसे पहले जो धुआं था वो गोपाल की नाक में पहुंचा, उसके कमरे में पहुंचा, वो घबरा गया, समझ गया कि ये चारों तरफ लगता है आग लग गई है। और वो दौड़ता भागता थानेदार साहब के दरवाजे पे, यानी उनके कमरे के दरवाजे पे पहुंचता है और आवाज लगाता है, लेकिन घबरा भी यही जाता है कि कहीं अगर मैंने गाना गा के नहीं बताया तो मेरी नौकरी ना छूट जाए। तो पहले तो खैर सादे तरीके से चिल्ला रहा, किस तरह से, अरे थानेदार साहब दरवाजा खोलिए, थानेदार साहब दरवाजा खोलिए, अरे आपके घर में आग लग गई है थानेदार साहब। तो थानेदार साहब ने जैसे ही दरवाजा खोला, गोपाल सामने, थानेदार सामने, गोपाल घबरा गया। थानेदार ने बोला, अरे क्या बात है गोपाल, हम तो सो रहे थे भाई, मेरे को ओफो काय को जगा दिया गोपाल। तो गोपाल अपनी सर्विस के चक्कर में गाना गा के बता रहा आग लगने का किस तरह से।

छोटे छोटे कलाकार, एक सपना हमारे दिल दिमाग में हमेशा बैठा रहता है कि हम बड़े बड़े शहरों में जाएं, शहर में जाएं, शहर से बाहर जाएं, देश में जाएं, देश से बाहर जाएं, हमारे कार्यक्रम हों, लोग हमको सुने, रेडियो स्टेशन वाले हमें बुलाएं, हैं टेलीविज़न वाले हमें बुलाएं, ये तो खैर ठीक ठीक है, फिल्मी दुनिया में हमारे गाने हों, फिल्मों से के माध्यम से अब कोई हीरो एक्टिंग कर रहा है हीरोइन के साथ, उसके बैकग्राउंड में उसके प्लेबैक में हमारी आवाज़ हो, ऐसे सपने तो खैर सभी लोग देखते हैं, खास करके मैंने ज़रूर देखे, एक बार नहीं सैकड़ों बार, और उस सपने को पूरा करने के लिए पहुँच गया फिल्मी दुनिया में बॉम्बे। बॉम्बे जाने के बाद यानी मुंबई जाने के बाद मैंने कुछ पता लगाया कि भाई यहाँ किसको आवश्यकता है नए गायक कलाकार की। चलिए जब मालूम तो हो गया, एक डायरेक्टर साहब के घर पहुँचा, निवेदन प्रार्थना की कि साहब 10-5 मिनट का वक्त दे दीजिएगा, मैं बहुत अच्छा गायक कलाकार हूँ, अपने इलाके का बहुत बढ़िया गायक हूँ, सभी लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, जब भी मैंने अपने महल्ले में अपने इलाके में गाना गाया है किसी ने फूल माला पहनाई है, किसी ने चाय पिलाई है, किसी ने कॉफ़ी पिलाई है, किसी ने आशीर्वाद दिया है, बहुत सारे मेरे प्रोग्राम छोटे छोटे होते रहते हैं। डायरेक्टर ने बोला भाई ऐसा है, मैं फिल्मी शूटिंग में जा रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ, अब आप यहाँ कहाँ आ गए हैं, आप बाद में आइए तो 2-3-4 महीने के बाद। तो मैंने उससे बार बार कहा ऐसा मत करिए साहब, 3-4 महीने के बाद तो मेरे सपने अगर पूरे नहीं हुए तो मेरा तो प्राणांत हो जाएगा, बस 5-10 मिनट दे दीजिए। ठीक है अब तुम बोलते हो तो 5-10 मिनट दे देते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी गाना भाई, मुझे कहीं और जाना है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो हारमोनियम तबले वाले मिलेंगे? हाँ बुला देता हूँ, सब यहीं बैठे।

हैं। चलो भाई ढोलक नवाज, भाई तबला नवाज, भाई ऑर्गन वाले, भाई हारमोनियम वाले, भाई सब कलाकार बंधु आ जाओ सर, इसकी मदद कर दो, ये कोई बच्चा आया है नया गाने वाला, तो हाँ चलो शुरू करो। तो सर पुराना गाना सुनाओ। अरे कोई भी गाना सुनाओ यार, पुराना गाना सर, अफसाना वाला।

ये अफसाना में माँ माँ सब क्या है भाई साहब है? ये कितना अच्छा गाना, अपने जमाने का गाना है। इसमें दूसरा गाना तुमने कहाँ से जोड़ दिया है? अगर आपकी तैयारी नहीं तो आपको नहीं आ रहा था। नहीं सर, माफी चाहते हैं सर, क्या है कि मैं 250-300 गाने याद करके आया था सर, अपने जिस गांव में मैं रहता हूँ ना सर, वहाँ से 250 गाने याद करके आया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डायरी में खो गई सर, रेलवे ट्रेन में सर, वो बस में खो गई सर, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम दूसरा गाना को कोई गाओ जो तुमको पूरा आता हो। गाएंगे ना सर, बहुत अच्छा वाला गाना गाएंगे सर, वो चोर चोर वाला गाना गाएंगे। कौन सा चोर चोर वाला? अभी सुनाते सर, वो चोर चोर का शोर मचाकर। हाँ अच्छा सुना, पूरा गाना? नहीं पूरा गाएंगे सर, पूरा गाएंगे। हाँ

बंद करो, ये सब क्या हो रहा भाई है? हमने तुमको जब बोला तरीके से जो गाना पूरा आता हो वो गाओ भाई साहब, मेरा क्यों समय खराब कर रहे हो? मुझे फिल्म की शूटिंग में जाना, हीरो ने हीरोइन ने बहुत मुश्किल से डेट दी है, मेरा क्यों नुकसान करते हैं भाई साहब, मुझे क्यों परेशान करते? तो वो मेरे रोने की जगह वो रोने लगा। कौन रो रहा था? डायरेक्टर। मैंने फौरन बोला, नहीं साहब आप चिंता मत करिए, मैं बहुत अच्छा गाना गा रहा हूँ, पुराना वाला गाना गा रहा हूँ साहब, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ। अच्छा ठीक है गाओ, लेकिन पूरा आता है ना? बिल्कुल साहब पूरा आता है, मैं आपकी कसम, अरे मेरी कसम मत खाओ भाई साहब, मेरी कसम नहीं सर। अच्छा तो फिर मैं अपनी कसम खा लेता हूँ सर, मेरे को पूरा आता है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। तो ये फिल्मी गाना है तो सर, लेकिन भजन है सर, वो भजन का मैं बचपन से बहुत शौकीन रहा हूँ, ये गाना पूरा भजन आपको सुनाऊंगा, देखिए, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माता। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, पहले भजन सुनाना था, नहीं सर अब सुना, पूरा भजन। हाँ गाइए, हाँ सुनाओ सुनाओ, हाँ

गाना गा दो भैया, चाहे पाकिस्तान का गाना हो, चाहे हिंदुस्तान का गाना हो, चाहे इंग्लैंड का गाना हो, चाहे अमेरिका का गाना हो, जहाँ का गाना हो भाई साहब, भारत का गाना हो, आपके गांव का गाना हो, आपके शहर का गाना हो, लोकगीत हो, कुछ भी हो, लेकिन पूरा सुना दो, मुझको जाना है।

0: हंसना मना है,
1: हंसना मना है,
0: अरे हंसना मना है,
1: हंसना मना है।
0: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। एक बात तो आपसे हम खास तौर पे कहना चाहते थे जो भूल रहे हैं, अरे इस कार्यक्रम का नाम है
1: हंसना मना है।
0: राजेश मिश्रा आ रहे हैं कुछ सुनने सुनाने के लिए।
2: अब आइए हम ले चल रहे हैं आपको भिखारी के एक आइटम की ओर, कि जो गरीब भीख मांगते हैं तो उनमें भी हास्य मिल जाता है, वो भी अपना किस प्रकार से आनंद लेते रहते हैं, क्योंकि आनंद लेना हर किसी को ईश्वर ने दिया है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो वो भी भीख मांगते हुए कैसे आनंद ले रहे हैं, आइए। भिखारी ने एक घर में आवाज लगाई और वो हम और आपको, बाबू, ए बाबू, सुनता ही नहीं है बेवकूफ आदमी।
3: क्या बोला? कुछ नहीं बोला बाबू, बोला भगवान भला करेगा।
2: कहिए क्या बात है?
3: बाबू एक रोटी दे दो।
2: रोटी नहीं है,
3: फटे पुराने कपड़े दे दो। बाबू
2: फटे पुराने कपड़े भी नहीं है।
3: बाबू गेहूं के दाना दे दो। बाबू
2: गेहूं का दाना भी नहीं है।
3: पैसे दे दो। बाबू
2: पैसे भी नहीं है।
3: अच्छा साहब आपके पास कटोरा है?
2: क्यों
3: बाबू ऐसा है, अगर है क्या?
2: हाँ है,
3: तो फिर यहाँ काय को बैठे, हमारे साथ चलो।
2: एक व्यक्ति ने एक से मांगा, बाबू मिले? क्या है?
3: कुछ दे दो, भगवान भला करेगा।
2: उसने जेब से निकाला और 1000 का नोट उसको दे दिया, उसने रख लिया। जब 1000 का नोट उसने दे दिया और देने के बाद जब दान करने वाले व्यक्ति की तरफ देखा, बोला कि यार तुम्हारे चेहरे से तो बड़ा तेज नजर आता है, तुम लगते नहीं हो कि तुमको भीख मांगना चाहिए, तुम क्या करते थे इसके पहले?
3: कहले साहब जो आप कर रहे हैं वही हम करते थे।
0: संजय गायकवाड़, एक मौका फिर इन्हें दिया जाता है, हाँ आपको हंसाने के लिए। संजय हाजिर हो।
4: कितना बदल रहा है साहब जमाना, कितना बदल गया है। जो कल तक होता था वो आज नहीं हो रहा है, जो आज हो रहा है वो कल नहीं होगा। पहले के जमाने में लोग अपने अपने घर के बाहर लिख के रखा करते थे, आइए आपका स्वागत है। आजकल बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर लिख के रखा करते हैं, कुत्तों से

पहले के जमाने में होता साहब ये था कि बहुएं आंगन में खड़ी हुई हैं और दादाजी आते थे अदब के लिए खांसते थे तो बहुएं अपने अपने कमरों में चली जाया करती थी। आज जमाना इतना बदल गया साहब कि बहुएं आंगन में खड़ी हुई हैं, दादाजी आए और धोखे से बहू खांस दे, पता चला दादा बाहर। कितना समय बदल गया है, कितनी सारी बातें बदल गई हैं। अब मैं साहब संगीत के ऊपर आ रहा हूँ कि पहले के ज़माने में हीरो हीरोइन को गाने के माध्यम से बुलाता था तो हीरोइन पूरे काम छोड़कर भागी चली आती थी, हीरो हीरोइन को गाने के माध्यम से बुला रहा है।

इतना कहता था साहब हीरो पहले, तो हीरोइन पूरे काम छोड़कर भागी चली आती थी। आज भी हीरो हीरोइन को बुलाता है, देखिए साहब आज के ज़माने की लिरिक्स क्या लिखी जा रही है। आज के हीरो ने जैसे ही हीरोइन को देखा तुरंत अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाया, ए आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, पाप पाप, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम, बताइए चाय भले ही भर जाए। क्या जमाना था साहब, कि पहले के जमाने में हीरोइन चली जा रही है, हीरो तारीफ कर रहा है, तारीफ करने का अंदाज देखिए, तो ये मतवाली चाल।

चाल। आज भी हीरोइन जा रही है, आज का हीरो तारीफ कर रहा है हीरोइन की, चलने की तारीफ सुनिएगा। क्या अदा क्या जल बे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों, जान भी अब जाएगी आंख ना मारो। हैया अरे खा ले लैया, भैया गुड़ की लैया। ये जमाना बदल गया साहब है। पहले के जमाने में क्या बात हुआ करती थी कि शरीर से आंखों को ध्यान में रखते हुए क्या शानदार लिरिक्स लिखी गई। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। आज का हीरो आंखों के लिए क्या बोलता है, अखियों से गोली मारे भाज किया। अखियों से गोली मारे लड़की का माल की। अब बताइए साहब, अगर आंखों से गोलियां चलने लगे तो परमाणु परीक्षण करने की क्या आवश्यकता है? है, इतना समय बदल गया है। अभी क्या बात हुआ करती थी, पहले भी हीरोइन अपने हीरो से प्यार करती थी, लेकिन अपनी भावनाओं को गीतों के माध्यम से किस तरीके से व्यक्त करती थी।

0: और आज की हीरोइन क्या बोलती है, दैया दैया दैया रे, दैया दैया दैया रे, तू तो मेरा आशिक मैंने प्यार किया रे दैया भाई।
1: और दोस्तों हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आपने सुनी धारावाहिक हंसना मना है की दसवीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इंदौर में आज माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5000 युवा हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भिंड जिले के लाहर का दौरा करेंगे। वह यहां आयोजित एक कार्यक्रम से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। भाजपा ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। टिकट की घोषणा होने के बाद डॉक्टर नरोत्तम के समर्थकों ने ग्वालियर झांसी हाईवे पर लंबा जाम लगाया। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुरू किया है। यह प्रशिक्षण गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है। प्रशिक्षण में प्रदेश भर की जेलों से 30 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में जनजातीय चित्रकार की प्रदर्शनी जारी है। इसमें भील जनजातीय चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की प्रदर्शनी का संयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी 30 जुलाई तक रहेगी। और प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब महिलाओं के लिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए मेहनत जरूरी है। इस सुविचार के साथ महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को कल्पना शुक्ला का नमस्कार। बहनों, वर्तमान समय विज्ञान और तकनीक का युग है। आज मानव का जीवन लगभग आधुनिक तकनीकों से प्रभावित हो चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग, उद्योग, संचार, परिवहन तथा सरकारी सेवाओं में डिजिटल तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का तेजी से उपयोग पड़ रहा है। AI ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से कंप्यूटर और मशीनें मनुष्य की तरह सोचने, सीखने, विश्लेषण करने तथा निर्णय लेने के कार्य कर सकती हैं। भारत सरकार भी इस आधुनिक तकनीक को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। इसी दिशा में यशोदा AI एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य महिलाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक बनाना है तथा उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त करना है। बहनों, यशोदा AI एक राष्ट्रीय पहल है जिसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW तथा फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को AI की जानकारी देना, डिजिटल कौशल विकसित करना तथा उन्हें नई तकनीकों का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग करना सिखाना है। यह कार्यक्रम ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को डिजिटल की दुनिया में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करता है। आज लगभग हर क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है। बैंकिंग, ऑनलाइन शिक्षा, सरकारी सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और व्यवसाय सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। यदि महिलाओं को इन तकनीकों की जानकारी नहीं होगी तो वे विकास की मुख्य धारा से पीछे रह जाएंगी। इसलिए यशोदा AI महिलाओं को तकनीक रूप से सक्षम बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक महिलाएं आज भी डिजिटल संस्थानों का सही उपयोग नहीं कर पाती और साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा गलत जानकारी का शिकार हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में यशोदा AI महिलाओं को तकनीक शिक्षा प्रदान कर उन्हें डिजिटल दुनिया में सुरक्षित, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। बहनों, यशोदा AI के कुछ प्रमुख उद्देश्य भी हैं, जैसे कि महिलाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मूलभूत जानकारी देना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, महिलाओं को आधुनिक तकनीक का उपयोग करके रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। बहनों, यशोदा AI की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम, सरल भाषा में AI और डिजिटल तकनीकों की जानकारी, साइबर सुरक्षा पर विशेष प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनाने का प्रयास, तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन। बहनों, यशोदा AI केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं बल्कि महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। जब महिलाएं तकनीक रूप से सक्षम होंगी तभी भारत वास्तविक अर्थों में डिजिटल और विकसित राष्ट्र बन सकेगा। इसलिए प्रत्येक महिला और छात्रा को यशोदा AI जैसे पहलों से जुड़कर नई तकनीकों को सीखना चाहिए। बहनों, जीवन हमें हर दिन कुछ नया सीखने, आगे बढ़ने और मुस्कुराकर हर चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। जब हम सकारात्मक सोच के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है। इसी सुंदर भावना को व्यक्त करता है फिल्म डियर जिंदगी का बेहद लोकप्रिय और प्रेरणादायक गीत लव यू जिंदगी, जिसे गाया है जैस्लीन रॉयल ने।

0: बहनों, अभी हमने सुना गीत लव यू जिंदगी, जिसे फिल्म डियर जिंदगी से लिया गया था और इस गाने को जैस्लीन रॉयल ने गाया था। बहनों, आज हमारे साथ हैं साहिल दुबे, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं और एआई रोबोटिक्स में इंजीनियर हैं। तो साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: मैम, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: साहिल जी, आपके अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन लाए?
1: मैम, एआई ने मैम महिलाओं के जीवन को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और अवसरों से भरपूर बनाया है। इससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यवसाय के नए रास्ते भी खुले हैं। अब मैम महिलाएं घर बैठे भी सीख सकती हैं, काम कर सकती हैं और वो अपना व्यवसाय बढ़ा भी सकती।
2: अच्छा सर, ये मतलब रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में एआई ने महिलाओं के लिए किस प्रकार लाभदायक सिद्ध हो रही है?
1: इसमें मैम मैं यही कहना चाहूंगा कि एआई महिलाओं को मैम नए रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। जैसे कि इसमें वे ऑनलाइन व्यवसाय हो गया या कंटेंट का निर्माण करना, डिजिटल सेवाएं हो गई, फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स जैसे अन्य क्षेत्रों में हम कार्य कर रही हैं। एआई उनके काम को तेज, सरल और अधिक प्रभावी बनाती है। काम करना वो आसानी से कर सकती हैं, स्मार्ट होम के उपकरण का प्रयोग करना, समय प्रबंधन और बच्चों की पढ़ाई जैसी गतिविधियों पे आसानी से वो नजर रख पा रही हैं। उदाहरण के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि वॉइस असिस्टेंट और स्मार्टफोन एप्स कई मैम ऐसे दैनिक कार्य हैं जिनको सरल बना देते हैं वो।
2: अच्छा, ये स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में एआई महिलाओं को किस प्रकार सहायता कर रही है?
1: स्वास्थ्य संबंधित मैम जैसे जानकारी, समय पर जांच और डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श लेना हो जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। बाकी सुरक्षा के लिए कई सारे मोबाइल ऐप आ गए हैं जो कि आपके आपातकालीन स्थिति में परिवार या पुलिस को तुरंत सूचना भेजने में मदद करते हैं। आजकल सभी स्मार्टफोन में पहले से ही गवर्नमेंट की तरफ से ये रहता है कि हम इमरजेंसी ऐसा कुछ बनाएं कि जिसमें तुरंत एक या दो सिर्फ क्लिक से आप तुरंत आप अपने घर पे स्वास्थ्य संबंधित किसी भी चीज का आप वहाँ पे लाभ उठा सकते हैं।
2: अच्छा सर, क्या आपको लगता है कि एआई के बढ़ते उपयोग से महिलाओं के रोजगार पर कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है?
1: जी हाँ मैम, एआई के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। जहाँ नई तकनीक से नए रोजगार पैदा होंगे, वहीं कुछ पारंपरिक कार्य कम हो सकते हैं। इसलिए महिलाओं को नई तकनीकों और डिजिटल कौशल को सीखते रहना चाहिए हर दिन, ताकि वो बदलते समय के साथ आगे बढ़ सकें और सतर्क रहें हमेशा।
2: ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं तक एआई की सुविधाएं पहुंचाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?
1: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मैम जैसे कि डिजिटल शिक्षा हो गई, इंटरनेट की सुविधा, जो उनके ग्रामीण की स्थानीय भाषा है उसके बारे में प्रशिक्षण लेना, तकनीकी जागरूकता अभियान हो जैसे हो सकता है और सरकारी सहायता को बढ़ावा देना चाहिए इन सब चीजों को। इससे क्या होता है, महिलाएं अधिक से अधिक एआई का लाभ उठा सकेंगी।
2: अच्छा सर, जैसे कि एआई का उपयोग करते समय महिलाओं को किन चुनौतियां या सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
1: सबसे पहले तो महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखनी चाहिए। उन्हें अपनी जानकारी किसी से भी साझा करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी जानकारी की सत्यता की जांच पूरी करनी चाहिए मैम, और ऑनलाइन धोखाधड़ी से सतर्क हमेशा रहना चाहिए। किसी के भी बहकावे में या किसी भी ऐसे पोस्टर या बैनर को जो आप बताते हैं कि इससे आपको लाभ होगा, इससे आपको ये लाभ होगा, इन सब पे वो ना जाएं, किसी भी शॉर्टकट का वो इस्तेमाल ना करें। एआई का उपयोग मैम सोच समझ कर और एक जिम्मेदारी के साथ करना बहुत ही आवश्यक है।
2: सर, महिलाओं को एआई से जुड़ी नई तकनीकों और कौशलों को सीखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए?
1: मैम इसमें यही कहेंगे कि महिलाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण दोनों कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा व्यस्त दिनचर्या है उनकी तो वो ऑनलाइन अपना सीख सकती हैं, बाकी अगर हो सके तो वो ऑफलाइन भी जा सकती हैं। डिजिटल कौशल विकसित करना चाहिए उनको हर दिन, नई तकनीकों के बारे में नियमित रूप से सीखना चाहिए हर समय, और व्यवहारिक अभ्यास भी करते रहना चाहिए साथ साथ में। इससे क्या होता है, उनके खुद का भी विकास होता है।
2: सर, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में एआई और महिलाओं की भूमिका को आप किस प्रकार से देखते हैं?
1: मैम, विकसित भारत 2047 के निर्माण में एआई और महिलाओं की भूमिका मैम अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। यदि मैम महिलाएं एआई का प्रभावी और जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग करेंगी तो वे शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि विज्ञान और भी जैसे अन्य क्षेत्रों में वो अपना योगदान देंगे, जरूर देंगे। इससे क्या होगा मैम, देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक और तकनीकी प्रगति को मैम एक नई गति मिलेगी तथा भारत एक मैम सशक्त और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में और आगे बढ़ेगा।
2: बहुत अच्छा सर, आपसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगा, और हमारी श्रोताएं जो सुन रही हैं हमारे कार्यक्रम को उनको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहनों, भारत आज विकास के एक नए युग की ओर अग्रसर है। देश वर्ष 1947 तक अर्थात स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि ऐसा भारत है जो सामाजिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाएं समाज की आधी आबादी होती हैं और उनके बिना किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं है। इसलिए विकसित भारत 2047 का निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। बहनों, महिलाएं परिवार और समाज की आधारशिला होती हैं। एक शिक्षित और सशक्त महिला न केवल स्वयं को आगे बढ़ाती है, बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रगति की राह दिखाती है। आज भारत की महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, खेल प्रशासन, सेना और उद्यमिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। विकसित भारत के निर्माण में उनका योगदान अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। बहनों, किसी भी देश की प्रगति उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। आज महिलाएं उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, कृषि सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप और स्वरोजगार में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। स्वयं सहायता समूहों, छोटे उद्योगों, हस्तशिल्प, ऑनलाइन व्यवसाय और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। बहनों, आज विज्ञान और तकनीक का युग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल तकनीक भविष्य के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। बहनों, विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब महिलाएं इस विकास यात्रा की सहभागी ही नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता भी बनेंगी। शिक्षित, आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सशक्त महिलाएं ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं। बहनों, जीवन एक निरंतर यात्रा है। इस यात्रा

हमें अनेक चुनौतियाँ मिलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति बिना रुके बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है वही सफलता प्राप्त करता है। तो इसी सकारात्मक सोच और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है जो हमें सिखाता है परिस्थितियाँ कैसी भी हो हमें अपने सपनों और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आइए सुनते हैं फिल्म स्वदेश की प्रेरणादायक गीत यूं ही चला चल, और इस गीत को उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर ने गाया है।

बहनों, अभी हमने सुना गीत यूं ही चला चल, जिसे फिल्म स्वदेश से लिया गया था और इस फिल्म को उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर ने गाया था। बहनों, बरसात का मौसम सभी को पसंद होता है। इस मौसम में वातावरण ठंडा और सुहावना हो जाता है तथा प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है, लेकिन बारिश के कारण हवा में नमी बढ़ने से त्वचा विशेषकर चेहरे पर कई प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं, जैसे तैली त्वचा, मुहासे से एलर्जी, खुजली और संक्रमण जैसी समस्याएं आम हो जाती है। इसलिए इस मौसम में चेहरे का विशेष देखभाल करना चाहिए। बरसात के मौसम में दिन में 2 से 3 बार हल्के फेस वॉश से चेहरा साफ करना चाहिए। इससे धूल, पसीना और अतिरिक्त तेल हट जाता है तथा त्वचा साफ और ताजा रहती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बरसात में मॉइस्चराइजर की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं है। त्वचा को मुलायम और स्वस्थ रखने के लिए हल्के पानी आधारित मॉइस्चराइजर का उपयोग करना चाहिए। बहनों, बरसात के दिनों में भी सूर्य की हानिकारक किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए घर से बाहर निकलते समय सनस्क्रीन लगाना लाभदायक होता है। चेहरे की सुंदरता केवल बाहरी देखभाल से ही नहीं बल्कि अच्छे खान पान से भी बनी रहती है। हरी सब्जियां, मौसमी फल और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखता है। नियमित सफाई, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, उचित त्वचा देखभाल और स्वच्छता अपनाकर हम अपने चेहरे को स्वस्थ, सुंदर और चमकदार बनाए रख सकते हैं। स्वस्थ त्वचा ही हमारे आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को निखारती है। बहनों, इसी के साथ समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्वीकारें कल्पना शुक्ला का नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, ये हमारे आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आप

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का। लीजिए सुनिए एक सूचना। पुलिस आयुक्त नगरी पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जाति अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड न करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी एडमिन की होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रामाणिक एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर भी विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति सौहार्द बनाए रखने तथा जिम्मेदारी नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। कार्यक्रम की शुरुआत विकास गीत से। आज के कलाकार हैं कन्हैया लाल शुक्ला। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं कन्हैया लाल शुक्ला के गाए कुछ लोकगीत। पेश है वर्षा गीत, आवाज कन्हैया लाल शुक्ला।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं कन्हैयालाल शुक्ला के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए कहरवा गीत, आवाज कन्हैयालाल शुक्ला की।
1: बने रघु राई हो।

इस गीत कहरवा गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए भजन।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, क्षमा कीजिए, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गायक कुछ भजन।

अभी आपने सुनी सूरदास की रचना, आवाज थी ज्योति तिवारी की। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। ये कार्यक्रम, आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए एक सूचना। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 12/7/2026 को शाम 7:30 से रात 8:08 तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं सामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 तक आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर 2660902 और 2660903 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुने। दिनांक 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से रात 8 के मध्य फोन नंबर 2660902 या 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।

स्वदेश, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। उदित नारायण, मास्टर विग्नेश, बेबी पूजा की आवाज में, शब्द रचना थी जावेद अख्तर की और संगीत यार रहमान का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कार्यक्रम है फिल्म संगीत। अब सुनिए परदेश फिल्म का गीत, सोनू निगम, हेमा सरदेसाई, शंकर महादेवन की आवाज में, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत नदीम श्रवण का है।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में मेरा युवा मेरा गौरव सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य भर से लगभग 5,000 युवा हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य राज्य के विकास और नीति निर्माण प्रक्रिया में युवाओं को शामिल करना है। इंदौर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज आयोजित होने वाला माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव युवाओं के लिए नए अवसरों पर संभावनाओं के द्वार खोलेगा।
1: 2025 को रोजगार और उद्योग वर्ष बनाकर प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाना है। गरीब, युवा, महिला, किसान सभी वर्ग के कल्याण के लिए काम करने की आवश्यकता है। उसी सिलसिले में युवा और खास करके यूथ कॉन्क्लेव का आज का आयोजन है। ये हमारे भविष्य के मध्यप्रदेश के साथ आज का मध्यप्रदेश भी मजबूत बने, युवाओं को सब प्रकार का रोजगार मिले, उनके सपनों को पंख लगे, सरकार की योजनाओं के साथ उनको जोड़ें और अब एक क्षेत्र सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने का और बड़े पैमाने पर काम जारी है।
0: आज विश्व जनसंख्या

0: दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। इस अवसर पर प्रदेश में जन जागरूकता रथ और रैली के साथ विश्व जनसंख्या सप्ताह की शुरुआत हुई। इस दौरान 18 जुलाई तक विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में फिलहाल तेज बारिश से कुछ राहत मिलने वाली है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। आज राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर सहित प्रदेश के सभी 55 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने बताया कि 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज साउथ एम्पटन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भिंड जिले के मुकेश सिंह भदौरिया ने योगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश भर में जिले का नाम रोशन किया। मत्स्याखेट पर लगे प्रतिबंध के बीच मत्स्य पालन विभाग ने नर्मदापुरम जिले के डोंगरवाड़ा और सुहागपुर में कार्रवाई कर 2000 किलो से अधिक मछली जब्त की है। शिवपुरी जिले में पसारा एक्ट 2005 के अंतर्गत सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिला रोजगार कार्यालय में भर्ती शिविर का आयोजन किया गया। आगरमालवा कलेक्टर ने कल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जिले के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन और अपार आईडी बनाने के कार्य की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
2: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े

0: 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
1: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
1: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
1: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड

0: टी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
3: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में शामिल सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
1: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य।

0: व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कलाकार फिल्म के गीत से, जिसे स्वर दिया है किशोर कुमार ने, शब्द रचना इंदिवर की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं, ग्राम महसवाड़ी, तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय खिरोटकर, मनीष, मृत्युंजय, शिखा, पूनम देवास से इसी गीत को पसंद कर रहे हैं। शिवाजी चौक राजीम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद कर रहे हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लंबी श्रीवास्तव। इसी गीत के फरमाइश करता है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। तो आइए आप सबकी पसंद का गीत सुनते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म कलाकार से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म अजनबी से। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत आरडी बर्मन का। पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं कोटवा नारायणपुर बापापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं मेहर नगर उमरखेड़।

महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर आई, सरिता गवांडकर, सिद्धांत गवांडकर, प्रिंस एकांश गवांडकर, सुखी। विश्वकर्मा नगर नागपुर से इसे पसंद किया है शैलेश गवांडकर, वैशाली गवांडकर, श्वेता, सुमित गवांडकर, कुमारी ध्वनि गवांडकर, परी। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का गीत अजनबी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद करने करके भेजने वाले श्रोताओं के नाम है, पसंद अपनी पसंद भेजने वाले श्रोताओं के नाम है, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदित्य, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। औरंगाबाद से इस गीत को की फरमाइश मिली है राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और

काशी राजेश की। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से इस गीत को सुनना चाहते हैं एमएम राजावत, राज मधु राजावत, राशि राज रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं उनका समस्त परिवार। आप सब ने फरमाइश भेजी है जिस गीत की, बता दें आपको खुदगर्ज फिल्म का गीत आप लोग सुनना चाहते हैं नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज़ में। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत राजेश रोशन का। तो आइए आप सबकी पसंद का ये गीत सुनते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म खुदगर्ज से। आवाज़ें नितिन मुकेश और साधना सरगम की।

खुद गर्ज़, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज़ में, शब्द रचना तीन दीवर की और संगीत राजेश रोशन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम भेज रहे हैं, हम सुनवा रहे हैं, जिससे जिसकी फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम है दत्तरंगी छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मणिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगापुर से सालिक पुजारी, भोपाल से कुसुम ज्योति, अर्जुन वर्मा, परी वर्मा, मिष्टी लक्ष्मी, भूपेंद्र वर्मा। करूलाबाद मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान, सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा छत्तीसगढ़ की। आप सब सुनना चाहते हैं जब जब फूल खिले फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, इसे एक बार फिर सुन लीजिए, जब जब फूल खिले फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी की आवाज़ में, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म जब जब फूल खिले का ये गीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र दिनेश कुमार। कार्यक्रम के की अंतिम फरमाइश हमने ली है, जिसे भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, रिदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान पोत्रा, मुज्तबा खान, राव भाई, शाहिद भाई, गांधीनगर अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये, गौतमनगर जिला नांदेड़ से इसी गीत को पसंद कर रहे हैं प्रभाकर जुंदले, आरती जुंदले। आप सबकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म महबूब की मेहंदी से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व जनसंख्या दिवस पर सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूती नींव है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5,000 युवा हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल भिंड जिले के लहार से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में भील जनजाति चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की प्रदर्शनी 30 जुलाई तक रहेगी और प्रदेश में अगले दिन तीन दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सांतकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। सांतकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर और रात 8:15 पर। पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम होगा शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण समय है 7:45। रात 8:00 सुनिए सुर्खियों में। 9:30 पर आप सुनेंगे संस्कार भारती और रात 10:00 संगीत के अखिल भारती कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर आर माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच की ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:01 और 56 सेकंड हुए हैं। हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है। अब सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं कन्हैया लाल शुक्ला के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कबीर की रचना से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं कन्हैया लाल शुक्ला के गाए कुछ गीत। अभी आपने सुना विकास गीत, अब सुनिए वर्षा गीत, आवाज कन्हैया लाल शर्मा शुक्ला की, और प्रसारण आकाशवाणी भोपाल का।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है लोक संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं कन्हैया लाल शुक्ला के गाए कुछ गीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत है कहरवा गीत, आवाज़ कन्हैया लाल शुक्ला की।

इस कहरवा गीत के साथ ही आप कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। पेशे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए भजन। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं कबीर की रचना से, आवाज ज्योति तिवारी की।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है लोक संगीत सुगम संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए कुछ भजन। अभी आपने सुनी कबीर की रचना, अब सुनिए ज्योति तिवारी की आवाज़ में सूरदास की रचना।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं, आकाशवाणी भोपाल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए भजन। कार्यक्रम की अब पेश है कार्यक्रम की अंतिम रचना, शब्द रचना है शेष आलोक की और आवाज ज्योति तिवारी।

ज्योति तिवारी के गाए इस भजन के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लगान फिल्म के गीत से, जिसे स्वर दिया है उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, किशोरी गोवरीकर और साथियों ने। शब्द रचना है जावेद अख्तर की और संगीत ए आर रहमान का।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। अभी आपने सुना लगान फिल्म का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है 1942 ए लव स्टोरी से। आवाज़ कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति की, शब्द रचना जावेद अख्तर की और संगीत आर डी बर्मन का।

1942 ए लव स्टोरी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। शब्द रचना थी जावेद अख्तर की और संगीत आर डी बर्मन का। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है सत्ते पे सत्ता फिल्म से। आवाज़ आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की है। शब्द रचना गुलशन बावरा की और संगीत आर डी बर्मन की।

सावन को आने दो। इस फिल्म का गीत अब सुनिए जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाज़ में। गीत लिखा है गौहर कानपुरी ने और संगीत राजकमल का है।

सावन को आने दो। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाज़ में। शब्द रचना थी गौहर कानपुरी की और संगीत राज कमल का। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं काली घटा फिल्म से, जिसे हमने लिया है। आवाज़ लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए ताल फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत ए आर रहमान का।

ताल फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। पेश है इस घंटे की खास।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5,000 युवा हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र

0: के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक में कहा कि परिवहन क्षेत्र को अधिक सुदृढ़, टिकाऊ और आपस में बेहतर रूप से जोड़ने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच नवीनतम तकनीकों और नवाचारों को साझा किया जा रहा है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल भिंड जिले के लहार से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह करते हुए कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज साउथैम्पटन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है, इनसे मिलिए। कार्यक्रम के अंतर्गत अब सुनिए देश के प्रख्यात और बहुचर्चित कवि और गीतकार आलोक श्रीवास्तव से शुभम तिवारी की बातचीत।
2: श्रोताओं, बड़े हर्ष की बात है और हमारा सौभाग्य है कि आज आकाशवाणी भोपाल के स्टूडियोज में देश के यशस्वी और बहुचर्चित कवि और गीतकार श्री आलोक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आप कविताओं को ना केवल लिखते हैं, ना केवल उसे प्रस्तुत करते हैं, बल्कि उन्हें जीते भी हैं। आपकी कविताओं में हमें कई तरह की अर्थ छवियाँ देखने को मिलती हैं और ये छवियाँ ही हैं जो बरसों से हम पाठकों के, हम श्रोताओं के भाव जगत को सजाती संवारती रही हैं। तो आज अपनी यशस्वी कलम के साथ आलोक जी हमारे साथ हैं। हमारे राम जो गीत है, जो बड़ा चर्चित रहा पिछले कुछ वर्षों में, वो आपकी लेखनी से ही आया है। साथ ही शिव तांडव स्तोत्रम भी आपकी लेखनी से आया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं उन पर जाऊंगा तो ये पूरा साक्षात्कार ही ऐसा निकल जाएगा। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी भोपाल का विशेष तौर से। और मेरे लिए ये बहुत ही जज्बाती क्षण है कि अपनी रचना यात्रा का आरंभ
2: जी
3: आज से 35 साल पहले मुझे रोमांचित करता था। मुझे याद है कि मैं विदिशा से आकाशवाणी भोपाल आता था और यहाँ के कविता पाठ में, यहाँ की गोष्ठियों में, कवियों की उसमें शामिल होता था। तो आज जब जैसे ही मैं इस भवन में आया, एक बहुत चिरपरिचित गंध ने मुझको रोमांचित किया। और एक कहते ना कि जैसे बहुत सारी स्मृतियाँ, बहुत सारे चेहरे आपके सामने से गुजरने लगे। हाँ, ये शायद इसलिए और अधिक है, ये भावना, ये जज्बात इसलिए और अधिक है कि जब आप कुछ बन जाते हैं तो दुनिया आपके साथ होती है
2: जी,
3: लेकिन जब आप कुछ नहीं होते, उस वक्त जो लोग आपके साथ होते हैं उनमें से एक आकाशवाणी भोपाल भी है।
2: क्या बात है।
3: तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि देखिए, टीयर्स इन माई आइज, कि इतने सम्मान से, इतने स्नेह से आपने मुझे याद किया और इस कारण मैं इन लम्हात को, इन जज्बात को जी सका जो लगभग जिसको 30 वर्ष से अधिक हो गए।
2: बिल्कुल, आपकी जो भावनाएं हैं हम उनकी कद्र करते हैं और हमारे श्रोता भी आपकी भावनाओं से भाव विभोर हो गए होंगे आपकी ही तरह। आकाशवाणी भोपाल से जुड़े आपके विशेष संस्मरण रहे हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले जब माइक ऑन नहीं था तब आप चर्चा कर रहे थे आपकी लेखनी की, जो आकाशवाणी भोपाल उसमें कहीं ना कहीं माध्यम बना है, थोड़ा सा उस बारे में बताएं।
3: मेरा बचपन विदिशा में गुजरा है
2: जी।
3: उस समय जो सशक्त माध्यम होते थे उनमें आकाशवाणी महत्वपूर्ण किरदार अदा करता था। आकाशवाणी पर आना, अपनी आवाज़ को सुनना, ये था कि जब हम लौट के विदिशा जाते थे तो हमें याद है कि अखबार में खबर तक छपती थी कि आज आकाशवाणी से प्रसारित होगा नगर के युवा कवि आलोक श्रीवास्तव का काव्य पाठ। तो
2: एक बड़ा रोमांचकारी।
3: हाँ, तो

0: मैंने बताया ना कि वो एक बड़ा जज्बाती लम्हा होता है आपके लिए, और जो सचमुच अपने अंदर तक अपनी जड़ों को महसूस करते हैं वो जब ऐसी जगहों पर आते हैं तो भावुक होते हैं। और चूंकि मैं अपने बड़े भाई जो हमारे प्रदेश के हमारे सूबे के ख्यात गीतकार थे आनंद श्रीवास्तव सर,
1: जी
0: उनके साथ भी आया करता था, तो वो स्मृतियाँ भी ताज़ा हो रही हैं। मधुब जी की स्मृतियाँ ताज़ा हो रही हैं जो हमको यहाँ बुलाया करते थे। ये बिल्कुल वैसा है कि यात्रा पर निकला हुआ कोई बालक एक लंबे अरसे के बाद अपनी माँ की गोद में आकर बैठे,
1: बिल्कुल
0: तो यात्रा की सारी थकान दूर होती लगती है।
1: बिल्कुल। अब जो संवेदनशीलता मुझे आपकी आंखों में दिखाई दे रही है वो एक कवि की संवेदनशीलता को चरितार्थ कर रही है।
0: जी
1: आपके रचनाक्रम पर थोड़ा सा आते हैं। आलोक जी, आपका नाम ही आलोक है, और ऐसा कहा जाता है कि जो कवि होता है वो ताउम्र प्रकाश की ही साधना करता है।
0: क्या बात है।
1: तो जो आपकी रचनाएं होती हैं, क्या उसमें भी जो केंद्रीय विषय होता है वो ये उजाले और अंधेरे के बीच में एक जो द्वंद्व होता है, क्या यही केंद्रीय विषय आप जनरली रखा करते हैं?
0: अगर आप इसको उजाले को संवेदना से जोड़ दें तो और बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कारण ऐसा है कि मैं पेशे से तो पत्रकार हूँ और पैशन से पोएट हूँ। एक सवाल जो मेरे सामने हमेशा आता है कि जैसे आपने अभी द्वंद्व की बात की, तो एक द्वंद्व होता है, एक सवाल आता है सामने कि आप पत्रकार हैं और आप कवि भी हैं, तो इन दोनों में द्वंद्व नहीं होता। तो मैं इसका उत्तर ऐसे देता हूँ कि द्वंद्व जो है वो ऐसी चीज़ों में होता है, ऐसे पेशों में होता है जो प्रतिस्पर्धा रखते हो। मुझे लगता है कि एक कवि और एक पत्रकार दोनों रूप से अगर आप बहुत अच्छी दृष्टि नहीं रखते हैं, आप बेदारी नहीं रखते अपने आसपास के समय समाज की, तो आप ना तो बहुत अच्छे पत्रकार हो सकते हैं ना बहुत अच्छे रचनाकार हो सकते हैं। रही बात जो आपने उजाले अंधेरे की बात की, उसमें मैं समझता हूँ कि संवेदना जो है ना वो किसी भी कलाकार के लिए उसके सृजन का पहला और अंतिम प्राण तत्व है। अगर वो संवेदनात्मक दृष्टि नहीं रखता होगा तो वो कहीं ना कहीं चूकेगा, क्योंकि जिस संवेदना से आप समाज को समय को देखते हैं वही तो आपको विवेक दिया है ना।
1: जी
0: सृष्टि ने आपको रचनाकार बनाया, रचनाकार बनाया, रचनाकार हम परमपिता परमात्मा के लिए कहते हैं, तो इतना बड़ा डेजिग्नेशन जब परमात्मा ने आपको दिया है रचनाकार का, तो आपके अंदर संवेदना भी होनी चाहिए। और एक बात जो मैं यहाँ कोट करूँगा, मेरी माँ हमेशा कहती थी, वो ये कहती थी कि अपने अंदर का जो बालक है उसे कभी नहीं मरने देना। समझदार हो अच्छी बात है, पर वो जो बालक से उनका आशय था, तो मैं बहुत बाद में समझा कि वो ऐसा क्यों कहती थी, क्योंकि जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, वो बहुत संवेदनशील होता है, तो उनका अर्थ बालक से संवेदनशीलता को जोड़ते हुए था
1: बिल्कुल
0: कि अपने अंदर का जो बच्चा है वो मत मरने देना वरना तुम्हारी दृष्टि
1: बिल्कुल
0: वो
1: क्षीण
0: हो
1: हो
0: जाएगी,
1: जाएगी।
0: क्षीण हो
1: जी
0: जाएगी। तो मुझे द्वंद्व से कहीं अधिक ये लगता है कि मेरे अंदर वो सेंसिटिविटी हो जो संवेदना मेरे समय और मेरे समाज को देखने की दृष्टि संपन्न करती है। तो मुझे द्वंद्व नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि समाज में जितना भी अंधेरा है उसे मैं अपनी रचनाओं के आलोक से पाट दूं, इसीलिए मैं हर क्षण को जीता हूं। आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही मैं इस कमरे में आया तो मेरे भाव
1: भावुक
0: परिवर्तित
1: हो
0: हो
1: गए
0: रहा।
1: जी।
0: तो ये जो जीने की जो वो है ना, अगर मैं उस लम्हे को नहीं जीता तो शायद मैं भावुक नहीं होता।
1: बिल्कुल
0: तो इसीलिए एक रचनाकार के तौर पे मैं संवेदनाओं को ओढ़ता बिछाता हूँ, और मेरा ऐसा अखंड विश्वास है कि जो संवेदनशील व्यक्ति होता है उसके अंदर चीज़ों को जल्दी समझ के और सुधारने की
1: क्षमता होती है।
0: क्षमता होती है,
1: जी
0: ऐसा मेरा मानना है।
1: आलोक जी, हर कवि का अपना एक आदर्श होता है, और उस आदर्श का वो अनुगमन करके, उसका अनुकरण करके धीरे धीरे अपने स्वधर्म को पहचानता है, अपनी मौलिकता को पहचानता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके आदर्श कौन रहे हैं जिससे जो धीरे धीरे आपको पहचान मिली है वो आगे बढ़ती गई है।
0: देखिए, मेरे साथ सबसे अच्छा जो जैसा मैं समझता हूँ और मुझे लगता है कि ये भोपाल, विदिशा और इस अंचल से।

0: जुड़े हुए हर रचनाकार की विशेषता है। इस अंचल की एक बहुत ही बड़ी खूबसूरती है और वो है हिंदी उर्दू का मिला जुला परिवेश, जिसको उर्दू में हम मुश्तरका तहजीब कहते हैं या गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। आप देखिए यहाँ के लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका एक्सेंट देखिए, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट जो दूसरे प्रांतों में जिस तरह बोला जाता है, कोई ना कोई उसमें आरोह अवरोह होता है, हमारे मध्य प्रदेश में जो उच्चारण है, जो बोलने की शैली है, वो कितनी साफ सुथरी है। हाँ, मालवा के कोई व्यक्ति मिलेंगे आप तो आप कह देंगे कि आप इंदौर उज्जैन के हैं क्या, भोपाल का जो टिपिकल भोपाल का एक्सेंट है उससे भी आप पकड़ लेते हैं, पर अगर आप मोटा मोटी देखें एक मानक के तौर पर तो हमारे यहाँ हिंदी और उर्दू बहुत साफ बोली जाती है
1: जी।
0: तो जब मेरा, जिसको मैं कहूँगा कि मेरी बुनावट हो रही थी, जब मैं बन रहा था अपने अंदर, मेरे अंदर कवि जन्म ले रहा था, ये मेरी खुशकिस्मती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे ऐसे लोगों को पढ़ने का मौका मिला कि जिनको बचपन में मैंने जब पढ़ा
1: जी,
0: और जब मैं बड़ा हुआ और कवि बना तो फिर उनके साथ पढ़ा, फिर चाहे वो डॉक्टर बशीर बद्र साहब हों, निदा फाजली साहब हों, जावेद अख्तर साहब हों, गुलजार साहब हों, तो ये ऐसे नाम थे हिंदी बेल्ट के, नीरज जी हों,
1: दुष्यंत जी,
0: दुष्यंत तो बहुत, दुष्यंत जी के तो को तो मैं बहुत ही प्रणम्य भाव से निवेदन करता हूँ, दुष्यंत जी की पुण्यतिथि और मेरा जन्मदिन एक ही दिन है, 30 दिसंबर को, तो इसे भी मैं अपना लगता है कि कोई हिंदी गज़ल का कोई लिंक जुड़ा हुआ है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ये जो हिंदी उर्दू के बड़े शिखर पुरुष रहे, जो मेरे, मैं जब पोएट्री के तौर से या कवि के तौर से जब मैं आंखें खोल रहा था तो जो मुझे लेजेंड्स दिखते थे, कोई 10 या 15 बरस बाद मैं फिर उनके साथ बैठा हुआ देख रहा था खुद को, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे अच्छे बड़े लोगों की सोहबत का, शहद चखने का मौका मिला, जिससे मेरी ज़बान और मेरा डिक्शन मीठा हुआ। तो मेरा शेर भी है कि असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है।
1: क्या बात है। बात को आगे बढ़ाते हैं आलोक जी, और जानना चाहेंगे, थोड़ी सी बात करना चाहेंगे जो नवोदित पाठक हैं या नवोदित लेखक हैं उनके बारे में। हम यहाँ पर एक तरीके से दो वर्ग देखते हैं। एक वर्ग तो ऐसा है जो बहुत अच्छा पढ़ रहा है और पुस्तक मेलों में हमें भीड़ दिख रही है कि पुस्तक की जो पठनीयता है वो बढ़ रही है, लेकिन एक दूसरा वर्ग है जहाँ पर हम देखते हैं कि पठनीयता का संकट थोड़ा सा गहराता जा रहा है और बिना पढ़े या बहुत कम पढ़ लिख कर लोग लिखने में आ जाते हैं और फिर उसी लेखन को, वो जो थोड़ा बहुत उन्होंने लिखा है, उसी को सर्वमान्य करना चाहते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं और क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों से?
0: देखिए, शास्त्रीय संगीत हमारे भारत की जो कला परंपरा है उसका प्राण तत्व है। शास्त्रीय संगीत एक कठोर साधना मांगता है। आप बहैसियत गायक पहचाने जाएं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप बहैसियत प्रतिष्ठित गायक पहचाने जाएं या प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायक पहचाने जाएं, इसके लिए आपको रियाज की ज़रूरत है। मैं साहित्य को, चाहे वो हिंदी हो या उर्दू हो, मैं शास्त्रीय संगीत की तरह मानता हूँ। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छा गढ़ेंगे। और मुझसे बहुत पहले डॉक्टर बशीरबद्र साहब ने एक बात कही थी कि 95% पढ़ो और 5% गढ़ो।
1: क्या बात है?
0: अब हो उल्टा रहा है, ठीक है,
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, दूसरी बात, ये जो दूसरी कौम आई है अभी जो रील लाइफ से आई है, तो देखिए क्या है, जो रील लाइफ है वो कितने ही मिलियंस में तकसीम हो जाए वो रियल लाइफ का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि रियल लाइफ जो है वो मानवीय संवेदनाओं, अनुभवों से जुड़ी हुई है। आप रियल लाइफ में मिलियंस और बिलियंस की रीच तो पा लेंगे, लेकिन जो दिलों को छू के बैठ जाने का जो एक आर्ट है ना, उसे आप अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए तो आपको, जैसा मैंने पहले अर्ज किया
1: जी,
0: पहले बताया आपको कि आपके अंदर एक अच्छी दृष्टि होनी चाहिए, आपका, आपके समय में क्या लिखा जा रहा है, ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। राइटिंग एक पैशन है,
1: बिल्कुल,
0: वो आप उसको सतही छू के नहीं गुजर सकते। यहाँ चलो जा रहे न्यू मार्केट चाय पीने, तो थोड़ा सा यहाँ भी टहल लेते हैं रविंद्र भवन में क्या हो रहा है। नहीं, रविंद्र भवन में अगर कोई शास्त्रीय संगीत या कोई बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसको आपको अलग से बैठ के देखना सुनना पड़ेगा। पुस्तक और अध्ययन और साहित्य वही है कि अगर आप अच्छा पढ़ेंगे नहीं
1: जी
0: तो अच्छा गढ़ेंगे नहीं। फिर आप वैसे ही गढ़ेंगे कि आएंगे एक रील बनाएंगे, वायरल हो जाएगी, आप जैसे ही कुछ लोग होंगे जो आपको प्रसिद्धि दे देंगे, आप आत्ममुग्ध होकर निकल जाएंगे।
1: ये जो आत्ममुग्धता की आपने बात की, इससे एक कदम आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक समस्या और देखने को मिलती है नवोदित लेखकों में। अभी पिछले दिनों आकाशवाणी स्टूडियोज़ में ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी आए हुए थे और श्रीलाल शुक्ल जी पर हम उनके साथ एक भेंट वार्ता कर रहे थे। तो जब उनसे हमने निवेदन किया कि श्रीलाल जी के संस्मरणों को साझा करें, तो उन्होंने एक बात कही जो श्रीलाल जी इनको बता रहे थे शिक्षा स्वरूप। और श्रीलाल जी ये कह रहे थे कि मैंने अपने 10 साल जो हैं वो राग दरबारी के नशे में ख़राब कर दिए, उसके सुरूर में ख़राब कर दिए कि मैं इतना उससे बंधा रहता था कि उससे बाहर ही नहीं निकल पाया। और 10 साल बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने अपना रचना धर्मिता का समय ख़राब कर दिया। यही स्थिति आपको भी देखने को मिलती होगी आपके आसपास के ऐसे लेखकों में जो जिन्होंने नई नई सफलता का स्वाद चखा है, उनके बारे में क्या कहेंगे?
0: नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपने अनुभव बताऊँगा कि एक तो मैं सबसे पहले तो श्रीलाल शुक्ल जी ने जो ज्ञान जी से कहा बिल्कुल सही कहा। हमने चर्चा के शुरू में रचनाकार शब्द इस्तेमाल किया था, ठीक है। रचनाकार क्या करता है? उसका कार्य है सतत क्रिएट करते रहना। परमात्मा अगर अपना सृजन रोक देगा तो सृष्टि का चलना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत आस्थावान हूँ इन मामलों में, मैं एक डिवाइन रूल को फॉलो करता हूँ, मानता हूँ। रचनाकार अगर अपनी एक रचना पर अड़के रह जाएगा
1: जी,
0: टिक के रहे, मैंने तो साहब ये शिव तांडव स्तोत्र जो है इसका भावानुवाद ऐसा कर दिया है कि बस नहीं, अभी रुद्राष्टकम रखा हुआ है, करो ठीक है, उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्रम रखा हुआ, करो। उसके बाद दूसरे मंत्र हैं जो बहुत सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, तो युवाओं को समझ आएंगे और उनको उसका अर्थ पता चलेगा, तो वो शायद और गहरे जुड़ जाएंगे
1: जी।
0: तो मुझे लगता है कि जो क्रिएटिव व्यक्ति जो होता है वो सतत प्रवाहमान होता है। और दूसरी बात कि अगर आप क्रिएटिव हैं, आपको क्रिएशन का भूत सवार है, तो आप कैसे टिक सकते हैं? बिल्कुल, वो हमारे क्लासिक हैं, हमारे अग्रज हैं, वो सही कह रहे हैं, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ। आप ये सोचो कि आपने जो आज क्रिएट किया है उससे बेटर आप क्या कर सकते हो।
1: बिल्कुल,
0: अपने ही रूल्स तोड़ो। मैं आपको बताऊं, मेरी माताश्री जो थी वो मेरे कवित्व की बहुत बड़ी प्रेरणा थी। प्रेरणा क्या थी? उन्हीं के कारण मैं कवि बना। जब उनकी मृत्यु हुई 1997 में, मैं डिप्रेशन में आ गया।
1: अच्छा।
0: और लगभग इसी भोपाल में रहता था, तो 3 साल तक मैंने कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा मैंने। तो मेरे एक संगीतकार मित्र हैं, मैं हमेशा कोट करता हूँ उनको, मिलिंद जोशी।
1: अच्छा।
0: मराठी सिनेमा के बहुत बड़ा हस्ताक्षर हैं
1: जी,
0: और बहुत प्रतिष्ठित नाम है। उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुमसे कुछ क्रिएट ना हो तो तुम रिक्रिएट करो, जो तुमने क्रिएट कर रखा है उसी को देखो।
1: क्या बात है।
0: उसकी आलोचना करो खुद, उसकी विवेचना करो, उसकी समीक्षा करो, और फिर उसे नया करो। तो आप मेरी किताबें जो हैं, आमीन है या आसान है या आफरीन है, इन किताबों को या मेरी रचनाओं को देखेंगे तो जो रचना मेरी 1997 में प्रकाशित है वो आपको अब वैसी नहीं मिलेगी। उसमें एक दो शेर कोई नया जुड़ा होगा, कोई पुराने शेर की रिपेयरिंग हो चुकी होगी, क्योंकि मनुष्य अपने आप में भी परिष्कृत होता है ना।
1: बिल्कुल।
0: आयु बढ़ती है तो आपका वेट भी बढ़ता है, वेट घटता भी है, चेहरा भी बदलता है।
1: नदी हर क्षण बदलती है।
0: नदी हर क्षण बदलती है। क्या होता है कि बदलाव जो आपके अंदर है, जब वो आपके अंदर शारीरिक रूप से आ रहा है तो वो मानसिक रूप से भी आएगा।
1: बिल्कुल।
0: वो संवेदनात्मक रूप से, कल मुझे इस शीशे के उस तरफ देखने की मेरी दृष्टि अलग थी, आज मैं 25 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहा हूँ, प्रतिष्ठित चैनल में रह चुका हूँ, तो अब मेरी दृष्टि है, कंसोल है, वो बैठे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये है। तो वो जो अनुभव है जीवन का, जिसको हम जीवन अनुभव

0: कहते हैं, वो रचना में भी जुड़ता है, तो वो परिष्कृत करता रहता है आपको। रुकना तो नियति है ही नहीं ना, मतलब आप रुकने का कर्म तो आपको करना नहीं है। मनुष्य नहीं रुकता, हम ही चलते रहते हैं, उम्र बढ़ती रहती है। गुलजार साहब का बड़ा अच्छा शेर है इस पर
1: जी।
0: वो उम्र कम कर रहा था मेरी, वो उम्र कम कर रहा था मेरी, मैं साल अपने बढ़ा रहा था।
1: क्या बात है, क्या बात है। श्रीलाल जी ने भी कहा है ना कि आदमी को समय के साथ बड़ा होना चाहिए, बूढ़ा नहीं।
0: हाँ बिल्कुल।
1: आपके रचना कर्म पर एक बार फिर लौटते हैं और एक
0: तो अभी तक क्या कर रहे थे,
1: एक अभी तक हम नवोदित लेखकों के बारे में जानना चाह रहे थे, थोड़ा सा आपकी कविताओं में थोड़ी सी बारीकियों पर बात करना चाह रहे हैं। कुछ कविताएं जो हैं वो जो रची जाती हैं उसमें एक रसिक हृदय होता है, और कुछ कविताएं जो हैं वो तात्कालिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रची जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी रचा जाता है या जो भी कवि रचनाकर्म करता है उसके अपने कुछ उपकरण होते हैं। आपकी कविता में आप किस प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं?
0: मैं विषय को पहले देखता हूँ, और सबसे पहले तो ये कि मैं दो तरह की रचनाएं करता हूँ। देखिए, मेरा पेशा जो है वो फिल्म राइटिंग भी है ना, मैं लिरिसिस्ट भी हूँ और एक मैं पोएट भी हूँ। तो अब उपकरण मेरे लिए क्या है कि अगर मुझे कोई गज़ल कहनी है अपने लिए, और या फिर मुझे कोई ऐसा गीत या ऐसी नज़्म कहनी है जिसका कोई असाइनमेंट नहीं है, तो उसमें तो फिर वो मैं उस जॉनर में जाऊं, सोचूं, कोई चीज़ मुझे मुतासर करे, प्रभावित करे, आपसे मिलना मुझे अच्छा लगा, हो सकता है एक आध शेर मैं आपके लिए कह लूं, इस पर तो मेरा अधिकार है
1: जी।
0: ये तो मैं इसको आने देता हूं, इसको मैं बहुत फोर्स नहीं करता। तो आप ये कहिए कि इसमें मेरा जो उपकरण है वो संवेदना है, आपने मुझे कितने अच्छे से छुआ, कितने अच्छे से प्रभावित किया, मुझे कितना अच्छा लगा आपके साथ, आपका ऑरा कैसा है
1: जी,
0: मेरा बात करने का मूड है या नहीं है। हो सकता है कि मैं घड़ी देखूं कहूं नहीं मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद बंद करते हैं, ठीक है। और एक ये है कि मैं आपसे बात करने के लिए स्टूडियो में दाखिल हुआ कि बस 10 मिनट में निकलूंगा, और आपका ऑरा इतना अच्छा लगा, आपकी बातें इतनी अच्छी लगी कि हम पता चला आधा घंटा एक घंटे बात करते रहे। तो ये ही रचना के साथ भी होता है कि मुझे किस चीज़ ने छुआ, और उसकी कोई उसका कोई उपकरण नहीं होता। मैं आपको एक बहुत जिसको कहते हैं ना साहित्य में राजनीति के दौर से गुजर रहा था, कोविड के आसपास हुआ ये कि सुबह 5 बजे कुछ शेर आने शुरू हुए। मैं एक दो शेर सुना भी देता हूँ कि है ज़माना किस कदर मेरे खिलाफ, है ज़माना किस कदर मेरे खिलाफ, और उस पर तू इधर मेरे खिलाफ।
1: क्या बात है?
0: हो गए दीवारों दर मेरे खिलाफ, हो गए दीवारों दर मेरे खिलाफ, मैं हूँ घर में और घर मेरे खिलाफ।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: मैं भी मैं हूँ, कौन सा मर जाऊँगा, होने दो सब हैं अगर मेरे खिलाफ।
1: बहुत बढ़िया।
0: और हर खबर से बेखबर हूँ आजकल, उड़ रही है ये खबर मेरे खिलाफ।
1: क्या बात।
0: अब ये जैसे वर्षा होती है ऐसे उतरे सुबह 4:30-5 बजे। मैंने अपनी पत्नी को उठाया और उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये बड़ी जल्दी हो गई ये गज़ल, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं करीब 1-1.5 महीने परेशान रहा, क्योंकि इतनी रफ्तार से आए थे शेर और बिल्कुल बग़ैर का के कूकी के। तो मैंने अपने बहुत सारे जो मेरे जिनके साथ में मुशायरे वगैरह में और अदबी सफ़र करता हूँ, मैंने उनको फ़ोन लगाया और उन्हें शेर सुनाया ये वाले कि भाई देखना कहीं किसी की है तो नहीं ये गज़ल मैंने सुन रखी हो
1: जी, जी,
0: मेरे आहंग में, मेरे सबकॉन्शियस में पड़ी हो,
1: अचेतन
0: में पड़ी हो और वो निकल आई हो। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि देश के मूर्धन्य साहित्यकार जिनमें मैं नाम ले रहा हूँ, मंसूर उस्मानी साहब, अकील नुमानी साहब, वसीम बरेलवी साहब, इनको सबको मैंने फ़ोन लगा दिए कि साहब ये 15-20 मिनट में 5-7 शेर हो गए,
1: जनरली ऐसा होता नहीं,
0: जनरली ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई वो तुम जिस दौर से गुजर रहे हो उस दौर ने तुम्हारे यहाँ
1: अतिक्रमण
0: कर लिया, आमद हो गई।
1: बिल्कुल।
0: अब ये उसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है कि वो आ गया
1: तात्कालिक परिस्थितियों की।
0: हाँ, तो आ गई, ये हो गए मेरे इमोशंस। अब आइए कि मान लीजिए महाकुंभ का गीत आ गया जो बड़ा वायरल हुआ।
1: बिल्कुल।
0: अब बतौर गीतकार मेरे पास एक असाइनमेंट आया कि साहब 144 वर्षों बाद ऐसा सुयोग बनाया कि जो इलाहाबाद प्रयागराज है वहाँ महाकुंभ होने जा रहा है, और इसका जो एंथम है, इसका जो शीर्षक गीत है वो आपको लिखना है, जब आप लिख लेंगे तो

0: फिर देखेंगे कि किससे गवाना है। बाद में उसे कैलाश खेर जी ने गाया। अब वो असाइनमेंट है। अब उस असाइनमेंट में आपको ऐसे दाखिल होना होता है जैसे आपसे बात करने के लिए मैं इस कमरे में दाखिल हुआ, तो फिर मुझे उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है कि आखिर महाकुंभ की विशेषताएं क्या क्या हैं। छोटा सा गीत है, 3 मिनट का, 3.5 मिनट का, उसमें आपको वो कूचे में सागर समेटना, वो है असाइनमेंट। तो वहाँ उपकरण क्या लगा, वहाँ उपकरण ये लगा कि इधर आप देखिए, फिर कितना कितनी खूबसूरत बातचीत है कि आपने एक प्रश्न किया था मुझसे नए जनरेशन के पोएट्स का, अब यहाँ वो एक्सपीरियंस काम आता है। कौन सा? जो आपने पढ़ के आए हो आप, जो आपको गुरु ने कहा कि 95% पढ़ो, 5% गढ़ो।
1: बिल्कुल।
0: तो यहाँ जब आपको ये असाइनमेंट मिला कि जहाँ आपको एक डिमांडिंग सॉन्ग लिखना है, तो वहाँ ये वाली जो स्टडी है, जो रियाज है, वो यहाँ काम आएगा। ये किए बिना आप ये नहीं कर सकते, है ना?
1: निश्चित।
0: जैसे अभी स्टूडियो के बाहर एक बालक था, वो पूछ रहा था कि मुझे लिरिकल नहीं आता, तो वो लिरिकल नहीं आएगा उसके पास तब तक जब तक वो लिरिक्स पढ़ेगा नहीं। उसको सुनना भी पड़ेगा, उसको पढ़ना भी पड़ेगा, तब आएगा। इसीलिए आप देखिए हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा संगीत के गानों के जितने सुपरहिट गीत हैं वो आपको क्यों जबानी याद? आज सोचा तो आंसू भराए, कैफी साहब, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, याद इतना भी कोई ना आए। रीज़न, ये लोग इतना पढ़ चुके थे कि कविता का जो छंद है और वो जो संगीत के जो सुर हैं वो सब गड्ढमड्ढ हो गए थे, घुल मिल गए थे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को तो साहिर
1: जी,
0: इस लोक को तो अपना ना सके, उस लोक में भी दुख पाओगे, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे।
1: बहुत बढ़िया,
0: है ना? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजर नहीं पाती तो शादाब हो भी सकती थी।
1: बिल्कुल।
0: तो ये इसमें उस कवि का, उस रचनाकार का यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है पढ़ने का,
1: वो काम आता है। बिल्कुल। हम लोग बहुत समृद्ध हुए आपने जो इतना विश्लेषण किया और एक इनसाइट्स हमारे श्रोताओं को और हमें भी दी,
0: बहुत शुक्रिया।
1: हम जानना चाहेंगे आपसे कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आगे के प्रोजेक्ट्स में आप क्या क्या करने वाले हैं?
0: देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ एक NDA होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट।
1: अच्छा,
0: ठीक है। तो हमारी चीज़ें जब तक नहीं आ जाती
1: जी,
0: और अक्सर ऐसा होता है कि चीज़ें आ गई और फिर वो उस तरह का आकार नहीं लिया, तो हाँ, लेकिन ये है कि इसी प्रदेश में और देश में दो बड़े गीत आ रहे हैं जो बहुत जल्द आपको सुनने के लिए मिलेंगे, तो उसको आने दीजिए
1: जी। अंत में हम निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि आपकी कोई प्रतिनिधि रचना जो है उसका पाठ हमारे श्रोताओं के।
0: मैं जब यहाँ आता था आकाशवाणी में
1: जी,
0: जब निरंतर आता रहता था, तो एक रचना मैंने यहाँ सुनाई थी जो मेरी माँ पर थी, अम्मा। तो आज लगभग 30 साल बाद मैं आया हूँ, तो मैं अब जब आया हूँ तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना इन्हीं माइक्स पर,
1: जरूर
0: ये माइक जो है उनका रचनाओं को पहचानते होंगे
1: जी। जरूर।
0: तो धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि हम पंच तत्व से बने हैं, उसने खुद को खोकर मुझमें एक नया आकार लिया है, उसने खुद को खोकर मुझमें एक नया आकार लिया है, धरती अंबर आग हवा जल जैसी ही सच्चाई अम्मा, सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे, ऑल रिलेशंस, सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे, झरना दरिया झील समंदर भीनी सी पुरवाई अम्मा। और चूंकि मैं संयुक्त परिवार में पला बड़ा हूँ विदिशा भोपाल में, तो उसकी एक कथा व्यथा है यह कि घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा।
1: क्या बात।
0: और बाबूजी गुजरे आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई, तब बंटवारा हो गया, बाबूजी गुजरे आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई, तब मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई।

0: क्या बात, क्या बात है आलोक श्रीवास्तव जी, जो आपसे इतनी देर बात हुई और जो आपकी रचना को हमने सुना, हमारे श्रोताओं ने सुना, उसके बाद यही कहा जा सकता है कि जो आपका रचना कर्म है वो कर्म नहीं है, वो धर्म भी है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी कर्म धर्म से मिल जाता है तो वह अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचता है।
1: हाँ, कर्म धर्म से मिल तो जाए, पर कर्म धर्म से मिले मर्म के साथ,
0: क्या बात,
1: तब वो लंबी यात्रा करता है। तो मैंने कोशिश हमेशा यही की कि मेरा जो कर्म है वो धर्म से जुड़े लेकिन मर्म के साथ।
0: आपसे निवेदन करेंगे कि आप इसी तरह हम सभी का, सभी पाठकों का, सभी श्रोताओं का मार्गदर्शन करते रहें। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। पूरे आकाशवाणी भोपाल परिवार की तरफ से आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर कि आपने अपनी अपनी जड़ों से जुड़ने का मुझे एक मौका और दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे इनसे मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत देश के प्रख्यात कवि और गीतकार आलोक श्रीवास्तव से भेंटवार्ता। बातचीत कर रहे थे शुभम तिवारी। ये आकाशवाणी भोपाल है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। अब सुनिए संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है की 10वीं कड़ी।

दोस्तों नमस्कार, आप सभी को आज की इस खास और बहुत खास महफिल में शामिल करते हुए मुझे यानी आपके दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी को बेहद खुशी हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मनमांगी मुराद मिल गई हो, मीठे मीठा रसगुल्ला मिल गया हो। यूं तो कहने को इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है हंसना मना है, मगर हमारी कोशिश आपको ज्यादा से ज्यादा हंसाने की होगी। एक थानेदार साहब थे, रिटायर्ड थानेदार, यानो सर्विस से फुर्सत हो गए थे और बड़ा मजा ले रहे थे घर में रिटायरमेंट का, बाल बच्चों के साथ बड़ा आनंद ले रहे थे। एक बड़ी बढ़िया सी बात यह है उन थानेदार में कि उनको संगीत का बड़ा शौक था, बड़े प्यारे गाना वाना सुनते थे, रोज आकाशवाणी सुने, दिन भर फिल्मी गाने सुने, गजलें सुने, लोक संगीत सुने, बड़े शौकीन संगीत के। उनको एक दिन कुछ ऐसा लगा कि एक नौकर रख लिया जाए घर में जो मेरी मदद करे, घर के दूसरे कामकाज भी करे। ठीक है साहब, पेपर में एक विज्ञापन निकलवा दिया गया कि एक कर्मचारी की आवश्यकता है, मिलिए। उन्होंने थानेदार साहब ने अपना पता उस पेपर में दे दिया। अब एक गोपाल नाम का व्यक्ति उस अखबार को, उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ के, विज्ञापन को पढ़ के उनके घर पहुंचा। जब घर तो पहुंचा, वार्तालाप शुरू हो गई। कहले कहिए। कहले थानेदार साहब नमस्कार, मेरा नाम गोपाल है और आपका विज्ञापन पढ़ के मैं आपकी सेवा में आ गया हूँ। कहले ठीक है, आप हमारे यहाँ काम करने आए हैं, बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हम थानेदार रहे हैं पहले, और उधम हमारे घर में उधम नहीं करिएगा, और चोरी वगैरह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पुराना थानेदार हूँ। तो गोपाल बोलता साहब हमने आज तक चोरी नहीं की, हमने तो झूठ भी नहीं बोला, चोरी भी नहीं की, आप चिंताओं से मुक्त रहें, आप हमको अपने घर में बस सर्विस में सेवा में ले लें बस। तो थानेदार साहब बोलते ठीक है आप आओ नौकरी में, कल से आ जाओ आप। लेकिन बात यह है कि हम हैं संगीत के शौकीन, वो बहुत ज्यादा संगीत के शौकीन हैं, बस हमको 24 घंटे एक ही नशा रहता है संगीत का। आकाशवाणी हम दिन भर सुनते हैं और जब जब समय मिलता है हम दूरदर्शन देखते हैं, उसमें भी गाने बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बड़े प्यारे प्यारे भजन आते हैं। है कहले ठीक है साहब, जो आप देखते वो हम भी देखेंगे। नहीं नहीं, तुमको तो काम करना होगा, देखने का समय सिर्फ हमारे पास है। है चलो ठीक है, तो शर्त यह रहेगी हमारे आपके बीच में मिस्टर गोपाल के जैसे कोई आ रहा है हमारे घर में तो तुमसे हम बोलेंगे भाई कौन आया, जरा दरवाजे पे जाओ, तो तुम उसको देखना और हमको गाना गा के बताना कि वो कौन आया है। यानी समझा नहीं थाने।

ओहो क्या उसमें समझाना, कोई आ रहा है हमको गाना गा के बताओ कि वो कौन आया है। अगर हमने कोई चीज तुमसे घर में बुलवाई है, ये ले आओ वो ले आओ, तो तुम सब गाना गा के गाना गाते गाते आओ, फिर हमको दो, समझ गए? तो गोपाल थोड़ा सा समझ गया, थोड़ा नहीं समझा, उसने हल्का सा झूठ बोल दिया, कहा अरे बिल्कुल साहब, अरे वाह वाह थानेदार साहब, बड़ा छोटा सा आपने छोटी सी बात कही है, गाना गा के बात करने की है ना, कोई आ रहा है गाना गा के बताओ, कोई जा रहा है गाना गा के बताओ, आप चिंताओं से मुक्त रहे थानेदार साहब। अरे हम तो संगीत जानते हैं, हमने 5 साल 7 साल 7 साल शास्त्रीय संगीत सीखा है। अरे फिर तो गोपाल बहुत अच्छी बात है, कल से तुम्हारी सर्विस पक्की, 1-15 दिन महीने भर काम करो, उसके बाद तुम्हारी तनख्वाह के बारे में विचार किया जाएगा। ठीक है साहब। इस तरह से एक दिन तो निकल गया, दूसरे दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया तो थानेदार साहब ने गोपाल को बोला, अरे गोपाल, अरे जरा देखना भाई, दरवाजे पे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जरा देखो भाई कौन आया है। जी थानेदार साहब, जा रहा हूं आ रहा हूं। उसने दरवाजा खोला, जो सज्जन थे उनको देखा, अब बता रहा है वो थानेदार को कौन गोपाल की कौन आया है, किस तरह से गाना गा के।

उसको बोलो गोपाल कि वो बाद में आएगा, अभी कुछ मूड नहीं है पैसे वैसे का देने का, हम उसका पैसा दे देंगे, रुपया चार रुपया पाँच रुपये की कोई बात नहीं है, अभी उससे बोलो अभी जाए, अभी हम पेपर पढ़ रहे हैं, चाय कॉफ़ी लेना, नाश्ता लेना, ठीक साहब। गाना गा के एक दिन तो निकल गया, दो दिन निकल गया, चार दिन निकल गया, अचानक माहौल होली का आया। होली के माहौल में थानेदार साहब कुछ उल्टा सीधा कुछ खा पी के कहीं से आ गए थे, तो उसी खाने पीने के चक्कर में वो रात को आके घर में सो गए, और न जाने कहाँ से कोई अंगार चिंगारी कोई कहीं से भड़की, कुछ क्या इत्तफाक हुआ, थानेदार साहब के मकान में लग गई आग। तो सबसे पहले जो धुआं था वो गोपाल की नाक में पहुंचा, उसके कमरे में पहुंचा, वो घबरा गया, समझ गया कि ये चारों तरफ लगता है आग लग गई है, और वो दौड़ता भागता थानेदार साहब के दरवाजे पे, यानी उनके कमरे के दरवाजे पे पहुंचता है और आवाज लगाता है, लेकिन घबरा भी ये जाता है कि कहीं अगर मैंने गाना गा के नहीं बताया तो मेरी नौकरी ना छूट जाए। तो पहले तो खैर सादे तरीके से चिल्ला रहा, किस तरह से, अरे थानेदार साहब दरवाजा खोलिए, थानेदार साहब दरवाजा खोलिए, अरे आपके घर में आग लग गई है थानेदार साहब। तो थानेदार साहब ने जैसे ही दरवाजा खोला, गोपाल सामने, थानेदार सामने, गोपाल घबरा गया। थानेदार ने बोला, अरे क्या बात है गोपाल, हम तो सो रहे थे भाई, मेरे को ओफो काय को जगा दिया गोपाल। तो गोपाल अपनी सर्विस के चक्कर में गाना गा के बता रहा है आग लगने का, किस तरह से,

लोग छोटे छोटे कलाकार, एक सपना हमारे दिल दिमाग में हमेशा बैठा रहता है कि हम बड़े बड़े शहरों में जाएं, शहर में जाएं, शहर से बाहर जाएं, देश में जाएं, देश से बाहर जाएं, हमारे कार्यक्रम हों, लोग हमको सुने, रेडियो स्टेशन वाले हमें बुलाएं, हैं टेलीविज़न वाले हमें बुलाएं। ये तो खैर ठीक ठीक है, फिल्मी दुनिया में हमारे गाने हों, फिल्मों से के माध्यम से अब कोई हीरो एक्टिंग कर रहा है हीरोइन के साथ, उसके बैकग्राउंड में उसके प्लेबैक में हमारी आवाज़ हो, ऐसे सपने तो खैर सभी लोग देखते हैं, ख़ास करके मैंने ज़रूर देखे, एक बार नहीं सैकड़ों बार। और उस सपने को पूरा करने के लिए पहुँच गया फिल्मी दुनिया में बॉम्बे। बॉम्बे जाने के बाद यानी मुंबई जाने के बाद मैंने कुछ पता लगाया कि भाई यहाँ किसको आवश्यकता है नए गायक कलाकार की। चलिए जब मालूम तो हो गया, एक डायरेक्टर साहब के घर पहुँचा, निवेदन प्रार्थना की कि साहब 10-5 मिनट का वक्त दे दीजिएगा, मैं बहुत अच्छा गायक कलाकार हूँ, अपने इलाके का बहुत बढ़िया गायक हूँ, सभी लोग मेरी तारीफ करते हैं, जब भी मैंने अपने महल्ले में अपने इलाके में गाना गाया है किसी ने फूल माला पहनाई है, किसी ने चाय पिलाई है, किसी ने कॉफ़ी पिलाई है, किसी ने आशीर्वाद दिया है, बहुत सारे मेरे प्रोग्राम छोटे छोटे होते रहते हैं। डायरेक्टर ने बोला भाई ऐसा है, मैं फिल्मी शूटिंग में जा रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ, अब आप यहाँ कहाँ आ गए हैं, आप बाद में आइए तो 2-3-4 महीने के बाद। तो मैंने उससे बार बार ऐसा मत करिए साहब, 3-4 महीने के बाद तो मेरे सपने अगर पूरे नहीं हुए तो मेरा तो प्राणांत हो जाएगा, बस 5-10 मिनट दे दीजिए। ठीक है अब तुम बोलते हो तो 5-10 मिनट दे देते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी गाना भाई, मुझे कहीं और जाना है। ठीक है सर, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो हारमोनियम तबले वाले मिलेंगे? हाँ बुला देता हूँ, सब यहीं बैठे हुए। चलो भाई ढोलक नवाज, भाई तबला नवाज, भाई ऑर्गन वाले, भाई हारमोनियम वाले, भाई सब कलाकार बंधु आ जाओ सर, इसकी मदद कर दो, ये कोई बच्चा आया है नया गाने वाला, तो हाँ चलो शुरू करो। तो सर पुराना गाना सुनाओ। अरे कोई भी गाना सुनाओ यार, पुराना गाना सर, अफसाना वाला।

ये अफसाना में माँ माँ सब क्या है भाई साहब, ये कितना अच्छा गाना अपने जमाने का गाना, इसमें दूसरा गाना तुमने कहाँ से जोड़ दिया है? अगर आपकी तैयारी नहीं तो आपको नहीं आना था। नहीं सर, माफी चाहते सर, क्या है कि मैं 250-300 गाने याद करके आया था सर, अपने जिस गांव में मैं रहता हूँ ना सर, वहाँ से 250 गाने याद करके आया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डायरी में खो गई सर, रेलवे ट्रेन में सर, वो बस में खो गई सर, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम दूसरा गाना को

कोई गाओ जो तुमको पूरा आता हो। गाएंगे ना सर, बहुत अच्छा वाला गाना गाएंगे सर, वो चोर चोर वाला गाना गाएंगे। कौन सा चोर चोर वाला? अभी सुनाते सर, वो चोर चोर का शोर मचाकर। हाँ अच्छा सुना, पूरा गाना? नहीं पूरा गाएंगे सर, पूरा गाएंगे। हाँ

0: अरे बंद करो भाई,
1: बंद करो बंद करो बंद करो, ये सब क्या हो रहा भाई है? हमने तुमको जब बोला तरीके से जो गाना पूरा आता हो वो गाओ भाई साहब, मेरा क्यों समय खराब कर रहे हो? मुझे फिल्म की शूटिंग में जाना, हीरो ने हीरोइन ने बहुत मुश्किल से डेट दी है, मेरा क्यों नुकसान करते हैं भाई साहब, मुझे क्यों परेशान करते? तो वो मेरे रोने की जगह वो रोने लगा। कौन रो रहा था? डायरेक्टर। मैंने फौरन बोला, नहीं साहब आप चिंता मत करिए, मैं बहुत अच्छा गाना गा रहा हूँ, पुराना वाला गाना गा रहा हूँ साहब, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ। अच्छा ठीक है गाओ, लेकिन पूरा आता है ना? बिल्कुल साहब पूरा आता है, मैं आपकी कसम, अरे मेरी कसम मत खाओ भाई साहब, मेरी कसम नहीं सर। अच्छा तो फिर मैं अपनी कसम खा लेता हूँ सर, मेरे को पूरा आता है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। तो ये फिल्मी गाना है तो सर, लेकिन भजन है सर, वो भजन का मैं बचपन से बहुत शौकीन रहा हूँ, ये गाना पूरा भजन आपको सुनाऊंगा, देखिए, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माता। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, पहले भजन सुनाना था, नहीं सर अब सुना था, पूरा भजन हाँ गाइए, हाँ सुनाओ सुनाओ, हाँ

गाना गा रहा है भैया, कैसा गाना गा रहा है यार, ये ना भजन है ना फिल्मी गाना है, ना कव्वाली गाई आपने ना गजल गाई, ये ना लोकगीत, था क्या भाई साहब, ये था क्या? नहीं सर गलती हो गई सर, मैं माफी चाहता हूँ सर। वो क्या 250 गाने याद करके, वो कह मेरे को मालूम है 250 गाने याद करके आए थे और आपकी डायरी खो गई है, बम्बई में खो गई थी ना। हाँ सर आपको कैसे मालूम, अभी आप ही ने बताया था ना मेरे को है। हाँ अच्छा, अब एक काम करो मेरे पिताजी, आखिरी में एक बहुत बढ़िया सा गाना गा दो भैया, चाहे पाकिस्तान का गाना हो, चाहे हिंदुस्तान का गाना हो, चाहे इंग्लैंड का गाना हो, चाहे अमेरिका का गाना हो, जहाँ का गाना हो भाई साहब, भारत का गाना हो, आपके गांव का गाना हो, आपके शहर का गाना हो, लोकगीत हो, कुछ भी हो, लेकिन पूरा सुना दो, मुझको जाना है।

0: अरे हंसना मना है,
1: हंसना मना है,
0: कोशिश कोई लाख करे कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात तो आपसे हम खास तौर पे कहना चाहते थे जो भूल रहे हैं, अरे इस कार्यक्रम का नाम है हंसना मना है। राजेश मिश्रा आ रहे हैं कुछ सुनने सुनाने के लिए।
2: अब आइए हम ले चल रहे हैं आपको भिखारी के एक आइटम की ओर, कि जो गरीब भीख मांगते हैं तो उनमें भी हास्य मिल जाता है, वो भी अपना किस प्रकार से आनंद लेते रहते हैं, क्योंकि आनंद लेना हर किसी को ईश्वर ने दिया है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो वो भी भीख मांगते हुए कैसे आनंद ले रहे हैं, आइए। भिखारी ने एक घर में आवाज लगाई और वो हम और आपको, बाबू ए बाबू, सुनता ही नहीं है बेवकूफ आदमी, क्या बोला? कुछ नहीं बोला बाबू, बोला भगवान भला करेगा। कहिए क्या बात है? बाबू एक रोटी दे दो। रोटी नहीं है, फटे पुराने कपड़े दे दो बाबू। फटे पुराने कपड़े भी नहीं है बाबू। गेहूं के दाना दे दो बाबू। गेहूं का दाना भी नहीं है। पैसे दे दो बाबू। पैसे भी नहीं है। अच्छा साहब, आपके पास कटोरा है?
3: क्यों
2: बाबू, ऐसा है अगर है क्या? हाँ है, तो फिर यहाँ काय को बैठे, हमारे साथ चलो।
3: एक व्यक्ति ने एक से मांगा, बाबू मिले?
2: क्या है? कुछ दे दो भगवान भला करेगा।
3: उसने जेब से निकाला और 1000 का नोट उसको दे दिया, उसने रख लिया। जब 1000 का नोट उसने दे दिया और देने के बाद जब दान करने वाले व्यक्ति की तरफ देखा, बोला कि यार तुम्हारे चेहरे से तो बड़ा तेज नजर आता है, तुम लगते नहीं हो कि तुमको भीख मांगना चाहिए, तुम क्या करते थे इसके पहले? कहले साहब, जो आप कर रहे वही हम करते थे।
0: संजय गायकवाड़, एक मौका फिर इन्हें दिया जाता है, हाँ आपको हंसाने के लिए। संजय हाजिर हो।
4: कितना बदल रहा है साहब जमाना, कितना बदल गया है। जो कल तक होता था वो आज नहीं हो रहा है, जो आज हो रहा है वो कल नहीं होगा। पहले के जमाने में लोग अपने अपने घर के बाहर लिख के रखा करते थे, आइए आपका स्वागत है। आजकल बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर लिख के रखा करते हैं, कुत्तों से सावधान। पहले के जमाने में होता साहब ये था कि बहुएं आंगन में खड़ी हुई हैं और दादाजी आते थे, अदब के लिए खांसते थे, तो बहुएं अपने अपने कमरों में चली जाया करती थी। आज जमाना इतना बदल गया साहब कि बहुएं आंगन में खड़ी हुई हैं, दादाजी आए और धोखे से बहू खांस दे, पता चला दादा बाहर। कितना समय बदल गया है, कितनी सारी बातें बदल गई हैं। अब मैं साहब संगीत के ऊपर आ रहा हूँ कि पहले के ज़माने में हीरो हीरोइन को गाने के माध्यम से बुलाता था तो हीरोइन पूरे काम छोड़कर भागी चली आती थी, हीरो हीरोइन को गाने के माध्यम से बुला रहा है।

इतना कहता था साहब हीरो पहले, तो हीरो पूरे काम छोड़कर भागी चली आती थी। आज भी हीरो हीरोइन को बुलाता है, देखे साहब आज के जमाने की लिरिक्स क्या लिखी जा रही है। आज के हीरो ने जैसे ही हीरोइन को देखा तुरंत अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाया, ए आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, पाप पाप, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम, बताइए चाय भले ही भर जाए। क्या जमाना था साहब, कि पहले के जमाने में हीरोइन चली जा रही है, हीरो तारीफ कर रहा है, तारीफ करने का अंदाज देखिए, तो मतवाली चाय।

भी हीरोइन जा रही है, आज का हीरो तारीफ कर रहा है हीरोइन की। चलने की तारीफ सुनिएगा। क्या अदा क्या जल बे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों, जान भी अब जाएगी आंख ना मारो, हैया अरे खा ले लैया भैया गुड़ की लैया। ये जमाना बदल गया साहब। पहले के जमाने में क्या बात हुआ करती थी कि शरीर से आंखों को ध्यान में रखते हुए क्या शानदार लिरिक्स लिखी गई।

आज का हीरो आंखों के लिए क्या बोलता है? अखियों से गोली मारे भाजकिया, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल की। अब बताइए साहब, अगर आंखों से गोलियां चलने लगे तो परमाणु परीक्षण करने की क्या आवश्यकता है? है, इतना समय बदल गया है। अभी क्या बात हुआ करती थी, पहले भी हीरोइन अपने हीरो से प्यार करती थी, लेकिन अपनी भावनाओं को गीतों के माध्यम से किस तरीके से व्यक्त करती थी,

0: आज की हीरोइन क्या बोलती है, दैया दैया दैया रे, दैया दैया दैया रे, तू तो मेरा आशिक मैंने प्यार किया रे दैया भाई।
1: और दोस्तों हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक हंसना मना है कि दसवीं कड़ी, DTH के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरें, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
0: DTH के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन और वेव्स OTT ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भिंड जिले के लहार से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज हैदराबाद में कहा कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5000 युवा हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 युवा कल्याण का वर्ष होगा। युवाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़कर प्रदेश के विकास और उज्जवल भविष्य के निर्माण में उनकी भागीदारी को सशक्त बनाया जाएगा। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज साउथ एम्पटन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युवाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

दोस्तों शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी की, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे महान उपन्यासकार भीष्म साहनी के विषय में। साथ ही आज हम बात करेंगे ज्ञान भारतम मिशन के बारे में, होंगी कुछ अन्य जानकारियाँ और सुनवाएंगे कुछ गीत भी। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे महान साहित्यकार के विषय में जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से भारत विभाजन की त्रासदियों, सांप्रदायिक राजनीति की भयावहता और आम आदमी के संघर्षों का अत्यंत सजीव और सरल भाषा में चित्रण किया है। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ महान उपन्यासकार भीष्म साहनी के विषय में। मुंशी प्रेमचंद्र की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। उन्हें एक सशक्त उपन्यासकार के रूप में विश्व स्तरीय ख्याति प्राप्त है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं तमस, झरोखे, बसंती, कुड़िया, कुंतो, जिसमें तमस उनका सबसे प्रसिद्ध और कालजयी उपन्यास है। ये भारत के 1947 के विभाजन के समय हुए भीषण सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस उपन्यास में धार्मिक कट्टरता और राजनीति की भयावहता को उजागर किया गया है। उपन्यास झरोखे में मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं, रूढ़वादिता और सामाजिक संघर्षों का यथार्थ चित्रण है। उपन्यास बसंती में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक मेहनतकश और संघर्षशील लड़की की कहानी है। वहीं कुछ उपन्यासों में मानवीय संबंधों की जटिलताओं, वैज्ञानिक पहलुओं और बदलते सामाजिक मूल्यों का चित्रण किया गया है। दोस्तों एक उपन्यासकार होने के साथ साथ भीष्म साहनी ने 100 से ज्यादा कहानियां भी लिखी। उनकी कहानियों में सामाजिक सरोकार और मानवीय संवेदना गहराई तक दिखाई देती है। प्रमुख कहानियां हैं चीफ की दावत, अमृतसर आ गया है, वागनचू, पाली और पटरियां। उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रहों में भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख और निशाचर शामिल हैं। प्रमुख नाटक हिंदी रंगमंच और नाटक की दुनिया में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके नाटक अपनी वैचारिक गहराई और शिल्प के लिए जाने जाते हैं। उनकी कुछ और भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे हानुष। ये एक ऐसे कलाकार की कहानी है जो अपनी कला के प्रति समर्पित हैं और उसे संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है। वहीं नाटक कबीरा खड़ा बाजार में कबीर के दर्शन और उनके सामाजिक सुधारों पर आधारित है। दोस्तों साहनी जी एक उत्कृष्ट अनुवादक भी थे। उन्होंने अपने बड़े भाई और प्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी की जीवनी बलराज माय ब्रदर अंग्रेजी में लिखी। उन्होंने रूसी भाषा से कई कृतियों का अनुवाद हिंदी में किया, जिसमें टॉल्स्टॉय का उपन्यास पुनरुत्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भीष्म साहनी जी को साहित्य के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए कई सर्वोच्च सम्मानों से भी नवाजा गया। उनके उपन्यास तमस के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1998 में पद्म भूषण, 2002 में साहित्य अकादमी फेलोशिप। इसके अलावा 1983 में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और 1981 में एफ्रो एशियाई लेखकों का लोटस पुरस्कार भी मिला। दोस्तों 11 जुलाई को महान हिंदी लेखक, नाटककार और अभिनेता भीष्म साहनी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उन्हें सत सत नमन। दोस्तों अब हम सुनते हैं ये गीत राहत फतेह अली खान की आवाज में, आजा नचले फिल्म से।

दोस्तों, अब हम बात करेंगे ज्ञान भारतम मिशन के विषय में, जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य भारत की सदियों पुरानी और बिखरी हुई पांडुलिपियों को खोजना, उनका दस्तावेजीकरण करना और आधुनिक तकनीक व डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से उन्हें संरक्षित करना। इस मिशन का लक्ष्य भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा जैसे दर्शन विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और कला को सहेजना और दुनिया भर के शोधकर्ताओं व आम जनता के लिए सुलभ बनाना है। इसके तहत पूरे देश की बिखरी हुई पांडुलिपियों की जानकारी एकत्र करने के लिए ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण चलाया जा रहा है। ताड़ के पत्तों और भोजपत्र जैसे प्राचीन दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए रासायनिक उपचार के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और जटिल संग्रह यानी कृत संपदा रिपोजिटरी का उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, संस्थान या परिवार जिसके पास प्राचीन पांडुलिपियां हैं, वो ज्ञान भारतम ऐप के माध्यम से सीधे तौर पर इस सर्वेक्षण में शामिल होकर जानकारी साझा कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम सुनते हैं ये गीत उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की आवाज में, स्वदेश फिल्म से।

0: दोस्तों, हम स्कूल की पढ़ाई के साथ दूसरे कोर्स की भी तैयारी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।
1: दोस्तों, आज मेरे साथ हैं शुभी द्विवेदी और आज हम बताएंगे कि आप कैसे अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ दूसरे कोर्सेज की तैयारी भी कर सकते हैं। मेरे साथ शुभी हैं और शुभी नीट की तैयारी कर रही हैं अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ।
2: नमस्कार, मेरा नाम शुभी द्विवेदी है। मैं जिला रीवा से हूँ और मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ और मैं स्कूल के साथ साथ नीट की भी तैयारी कर रही हूँ।
0: तो शुभी, आप ये बताइए, आप स्कूल के साथ साथ नीट की तैयारी कैसे कर पा रही हैं? आप टाइम मैनेज कैसे कर पा रही हैं? कैसे आप स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ नीट की परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए समय निकाल पा रही हैं?
2: जी, पहले तो मैं सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ, फिर मैं 3 से 6 बजे तक थोड़ा रिवीजन करती हूँ, फिर 6 से 8 बजे तक मैं थोड़ा सुबह का रूटीन और स्कूल के लिए रेडी होना।
0: अच्छा,
2: फिर 8 बजे के बाद मैं खाना वगैरह खा करके स्कूल चली जाती हूँ, फिर 10 से 4 का मेरा स्कूल है, 4 से 8 तक का मेरा ट्यूशन है नीट का। अच्छा, ऑनलाइन है,
0: ऑनलाइन कोर्स लिया आपने?
2: हाँ,
0: नीट के लिए।
2: हाँ।
0: अच्छा।
2: फिर 8 से 8:30 तक मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ, फिर 8:30 से 10 तक मैं थोड़ा होमवर्क वगैरह करती हूँ स्कूल और ट्यूशन का, फिर 10 से 11 एक बार रिवीजन करके फिर सो जाती
0: किसका
2: हूँ।
0: रिवीजन करते हैं आप 10 से 11?
2: नोट्स का, जो नोट्स
0: तो
2: बनाती
0: नीट
2: हूँ।
0: का या स्कूल का?
2: दोनों का सेम सिलेबस रहता है,
0: सेम ही सिलेबस।
2: बस
0: अच्छा।
2: थोड़ा नीट में थोड़ा डिटेल से और स्कूल वाले में थोड़ी ज़्यादा थ्योरी रहती है और नीट वाले में थोड़ा न्यूमेरिकल्स।
0: अच्छा, मतलब नीट के सिलेबस के हिसाब से आप रात में भी उसका रिवीजन करती हैं और फिर सोती हैं, है ना? अच्छा,
2: जी
0: ठीक है। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ दूसरे कोर्सेज की तैयारी करना आपको आसान लगता है?
2: हाँ, इजी है, दोनों का सिलेबस सेम ही है थोड़ा।
0: मतलब कोई स्टूडेंट चाहे तो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ दूसरे कोर्सेज की तैयारी कर सकता है?
2: हाँ, कर सकता है।
0: अच्छा,
2: हाँ, चाहे तो कर सकता है।
0: तो बाकी श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहती है जो आप ही की तरह अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं?
2: उन्हें मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप भी चाहें तो अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अपने एम के लिए टाइम दे सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं, तो आपको जो ड्रीम है वो भी पूरा हो जाएगा। सो और आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा इस टाइम में।
0: मतलब बाकी जो स्कूल के बाद बचा हुआ समय है उसको आप दूसरे कोर्सेज की तैयारी के लिए यूज़ कर सकते
2: हाँ
0: हैं, है
2: हाँ
0: ना?
2: हाँ
0: जी, बहुत अच्छा, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपकी पढ़ाई के लिए।
2: ठीक है, थैंक यू।
0: दोस्तों, अब हम सुनते हैं ये गीत दिल कबड्डी फिल्म से, राहत फतेह अली खान की आवाज़ में।

दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी धरोहर की ओर, जिसमें आज हम जानेंगे असम के चराईदेव मोईदाम के बारे में। ये अहोम राजवंश के शाही परिवारों और राजाओं के ऐतिहासिक समाधि टीले हैं। इन्हें अक्सर असम के पिरामिड भी कहा जाता है। ये स्थान अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है और इसे यूनेस्को द्वारा भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। दोस्तों, 1253 ईस्वी में अहोम राजा चाओ लुंग सिउ का फा ने इसे अपनी पहली राजधानी बनाया था। 600 वर्षों के अहोम शासन के दौरान चराईदेव मोईदाम को प्रतीकात्मक और पवित्र केंद्र माना जाता रहा। इन समाधियों में मृत राजाओं के नश्वर अवशेषों को उनकी संपत्ति, आभूषण और अन्य जरूरी चीजों के साथ गुंबद के आकार की तिजोरियों में दफनाया जाता था और ऊपर से मिट्टी का टीला बना दिया जाता था। दोस्तों, चराईदेव मोईदाम एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है जो असम के चराईदेव जिले में स्थित है, जो कि शिवसागर शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaadiriva@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपनी रेडियो दोस्त इशिका यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।

कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आपके

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 5:30 हुए हैं। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक, अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड न करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल। सूचना समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत फिल्म एक्शन रिप्ले से। सुनिधि चौहान और ऋतु पाठक की आवाज़ें हैं, इरशाद कामिल के लिखे बोल और संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं विशाल ददलानी की आवाज़ में, कुमार का लिखा गीत, संगीत है विशाल शेखर का। आइए सुनते हैं फिल्म आई हेट लव स्टोरीज़ का ये टाइटल ट्रैक।

शंकर महादेवन और अलाइजा मेंडोंसा की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना फिल्म कार्तिक कॉलिंग कार्तिक से। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आप सुनते हैं, जो हमने लिया है फिल्म बैंड बाजा बारात से। सलीम मर्चेंट और सुनिधि चौहान की आवाज़ें हैं। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत और संगीतबद्ध किया है सलीम सुलेमान ने।

फिल्म हाउसफुल से मीका, सुनिधि चौहान और साजिद खान की आवाज़ें हैं। समीर के लिखे बोल और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: श्रोताओं, फिल्म हाउसफुल के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।
1: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
2: सच?
1: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले

0: बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भूम।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, आपके लिए एक विशेष सूचना। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं समसामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फ़ोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए। दिनांक 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य, फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903, भोपाल का एसटीडी कोड 0755 है। सूचना संपन्न हुई।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5,000 युवाओं ने हिस्सा लिया। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 युवा कल्याण का वर्ष होगा। युवाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़कर प्रदेश के विकास और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में उनकी भागीदारी को सशक्त बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भिंड जिले के लहार से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियां और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व जनसंख्या दिवस पर सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव हैं। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज साउथ एम्पटन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6 बजने को है। अब प्रस्तुत है पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है सोनू सूद।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज विशेष मेहमान है आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। आशीष जी, सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं, सस्टेनेबिलिटी माइंडफुल कंजम्पशन अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग। ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सकें जो हमारे श्रोता सभी समझ पाए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसके पीछे की मूल सोच क्या है।
2: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूँ कि ये पूरा मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में तीन तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहाँ वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी। और हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी, हमारे एक्शंस इंप्रूव होंगे, तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे
1: जी।
2: जिसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहां पॉसिबल हो वहां एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR, कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और जिस भी पैरामीटर्स पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहां उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज को रेगुलेट करें। और ये एफर्टलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है। और सरल जीवन जहां आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
1: आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही अधूरी है आपके पूरे जो मुहिम की, उसको और गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाए कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
2: जो माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें तो जो नीड वर्सेस वांट जो बोलते हैं
1: जी,
2: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी ही है, लेकिन कई बार हमारी चाहते होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी जरूरत नहीं हो। और उस जर्नी में फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं। तो उस चीज को ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अनरियलिस्टिक जो हमारे एम्बिशन है उसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा बेहतर और मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफ स्टाइल की तरफ युवाओं का, हमारे जो भी ऑडियंस है उनका ध्यान लाया जाए।
1: तो आपने जो नीड्स और वॉन्ट्स की बात करी कि एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश,
2: बिल्कुल,
1: ये नीड और वॉन्ट का जो अंतर है, क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
2: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये हमारी जरूरत है, कब वो जरूरत वॉन्ट हो रही है उतना हमें अंदर से आवाज आ जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में, कि वॉन्ट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है, और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूँ, मुझे वहाँ 5x तक पहुँचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहाँ पर है, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूँ कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूँ कि मुझे 5x तक पहुँचना है, क्योंकि मेरे चाचा का बेटा या XYZ इन माई फैमिली इज एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीजें होती है, पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं 3x तक पहुंचा, तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी 3 गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, तुम उतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं, उस भड़ास को दबाने के लिए। किसी का वो भड़ास, फ्रस्ट्रेशन, वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं एक्स से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो बोलता है अब

0: तुम सिक्स फिगर सैलरी कमा रहे हो तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वेकेशंस होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूँ बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर
1: जी,
0: और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइस की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से।
1: जी, तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जब आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है, आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है, जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं?
0: तो कोई भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ, उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होता है दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग। तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट है, तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर चीज का इमिशन हो रहा है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन हर चीज का इमिशन हो रहा है तो वहां अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चूंकि सैकड़ों चीजें अपने दिन में कंज्यूम करते हैं, तो जहां जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम में से सब लोग भारत में है तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह एक कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए, तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं, तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम × 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे हजारों चीज हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग कंफर्टेबल हैं वहां अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
1: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हर एक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था, जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहां पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं।
0: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5R का यूज करूंगा, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल। तो 5R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है, तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी दे है कि अपने लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इमीडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज नहीं आई है। तो वैसे ही एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो मीट बेस्ड चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आ रही है, तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें, तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक 4 प्लास्टिक यूज हो जाता है, तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे तो साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती हैं। और वही वो प्लास्टिक भी जैसा हम लोग बोलते हैं ना, सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है, तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से, जो हमारे घर में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है, तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने फिर वापस लेने आऊंगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा। लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज का, अगर एनवायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए, तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा है उसको रिसाइकलिंग के लिए दें।
1: आशीष जी, युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न है उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा। तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं जो युवा है उनको इस दिशा में ले जाने की ओर।
0: थोड़ा चैलेंजिंग होता है बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट जहां पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है जिसको अब अपर मिडिल क्लास बोलते हैं उसके ऊपर फिर जो एलीट क्लास एफ्लुएंट क्लास होता है। तो आज के डेट में जितनी भी मॉडर्न एज बीमारियां हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इम्प्रूव होगी। और आपकी अगर वेलबींग इम्प्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने भी बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एन एविल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और सादगी को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
1: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरनमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जांपल्स देके?
0: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत मोटिवेटेड है, बहुत ब्लेस्ड भी है, और हमने देखा है कि दे वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई चीज पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, ये तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने कीप इट, तो उनका इमोशंस एक्शन की जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जींस बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज किए, यूज किए, धोए, यूज किए, धोए और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जींस के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं।
1: सो आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
0: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए तो ये एक इनिशिएटिव आया, प्रोजेक्ट 333, जहां पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
1: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते
0: हैं, जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रैवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिबरेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज, अगर अगेन 33 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पुटिंग सम फिगर इज इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जो इम्पॉर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीजें या 55 चीजें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है, तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस कर सके। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो दो तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रोसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी
1: जी।
0: और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से वेस्ट

0: मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज फूड, उसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो वन टाइम प्लास्टिक, वन टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है उसको रिसाइकिल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें, तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
1: तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एवरेज एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
0: तो इसमें दो तीन प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं या शॉपिंग करने का या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं, तो क्या हमें इसकी जरूरत है इमिडिएटली, अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। तो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है उससे आपको इमिडिएटली पता चल जाएगा कि ये रियल में नीड है या वांट है। तो एक बार नीड वर्सेस वांट की चीज हो गई, तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इम्पल्स है तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वांट है, और फिर नीड है कि वांट है फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूं या खरीदती हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा, तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, तो 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशंस इनडायरेक्टली बचे।
1: जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था वही वांट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कम्पीट करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वांट के, जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं, तो उससे हमें बचना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता ना, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है, और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है वो कभी खत्म नहीं होगा, और उससे स्ट्रेस ही होना है, जो पहले मैंने एक बार शेयर किया एक्स से 3x और 5x की बात, वो वही चीज है। तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी जर्नी अपनी अपनी है, और हमारे कैनवास पे जिस चीज की जहां जरूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम लोग,
1: हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे। और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है?
0: 100% मैम। तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड, लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहाँ के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको बनाकर वेस्ट की जो अच्छी चीजें हैं उसको इनग्रेन करनी है। तो बोलते हैं ना मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की जरूरत है।
1: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है जिसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं सबके बीच, सो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलत फहमियां क्या हैं मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं इस राह की ओर बढ़ने की तरफ।
0: तो जब भी हम लोग माइंडफुल और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आम तौर पे धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोला जाएगा
1: जी।
0: बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफस्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे 1 पे छोटे छोटे एक्शन लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो उस चीज को बताना कई बार होता है कि डे 1 पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए, और किसी भी चीज में वो हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है, एक छोटे सी चीज से शुरुआत करते हैं और वो चीज भी आपको डिसाइड करनी है। तो देयर इज नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो, ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड करे
1: जी,
0: कि वो सैकड़ों चीजें कंज्यूम कर रहा है उसमें कहां वो किस चीज को रेगुलेट कर सकता है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस, क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
1: हमारे जो श्रोता हैं जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ त्वरित ना हो, लंबे समय तक उसका पर्यावरण को फायदा हो, तो कोई ऐसी कॉमन चीजें बता सकते हैं जो हरेक के लिए लागू है, कोई सरल 2-3 ऐसे उपाय, ऐसी बदलाव अपनी जिंदगी में जो वो ला सकते हैं?
0: जहां जहां अगेन पॉसिबल हो, तो अगर हम लोग कार यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर एक बार कार पूल कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। महीने में मैं एक बार ट्रैवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रैवल, तो 12 एयर ट्रैवल करने से कम करके अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रैवल का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है।
1: Yes.
0: वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है, चाहे वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही है, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की तो उसका बहुत बड़ा इमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं, हमारे मेल्स में हम लोग बहुत सारे लोग को मैंने देखा है इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलती है वहां अनरीड दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम इमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे इमिशंस बच सकते हैं। तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशन्स हो रहे हैं तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रैवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
1: कुछ और एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
0: तो जैसे IIT बॉम्बे के एक सर है सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं, तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का एमिशन्स बहुत है, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में एमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ,
1: हाँ,
0: तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की
1: जी।
0: लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जांपल के लिए, तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो इमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो वो करने की जरूरत है, और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को एक कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है वो।
1: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है कि हम योगदान दें जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं, जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं।
0: सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030 तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है। क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो एनवायरनमेंट से अलाइंड होने चाहिए। ई एनवायरनमेंट, एस सोशल एंड जी इज गवर्नेंस, तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए। तो उस पर बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनीज पे फोकस कर रही है कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके। सेम चीज अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होता है ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, ए प्लस है, बी है, तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं।
1: आशीष जी, जो भी युवा चाहें कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ें एनवायरनमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डीक्लटरिंग जैसा आप कह रहे हैं कि जब डीक्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाएं, माइंडसेट अपनाएं, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाएं ताकि वो एक बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में?
0: तो इम्पॉर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते. या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है. इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है. किस मायने में कर सकते हैं? तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे, मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी एक्स वाई जेड का अलग हो सकता है, अपनी अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इम्प्रूव करने की जरूरत है, उस चीज को इम्प्रूव करें. जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा. किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा. किसी को लगता है कि उसको बहुत इंपल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की. तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है और उसका जज वो खुद ही होगा. तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की जरूरत है. जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना जरूरी है. जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बीइंग द चेंज वाला कंपोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है. तो हम लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं. तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इम्पोर्टेंट जरूरत है.
1: सो आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
0: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था स्टैब्लिश की, जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है. इट इज ए कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स. तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए. लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ है, हमारे सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो है, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे. वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2-4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं. तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में, फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे. और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया. तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहां 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, सोशल चेंज मेकर, सब से ये समझने की कोशिश किए कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा. तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज. तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार बन के निकला कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा. और इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया. और उस पर फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी. तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए. तो यहां से शुरुआत की और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुंचानी है. तो इसीलिए ब्रिज फॉर चेंज उस मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे ये बातें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से, गेम्स के तरीके से युवाओं तक पहुंचा सके.
1: आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हम सब उसमें अपना अपना योगदान करें, ये कितना जरूरी है. बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी.
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत. इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद. आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं. हमारे ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com.
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ.
4: पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ का प्रसारण अभी किया जा रहा था।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म कपूर एंड संस का ये गीत। अरिजीत सिंह, आशीष कौर की आवाज़ें हैं। इस गीत को लिखा डॉक्टर देवेंद्र काफिर ने और संगीत है अरमान मलिक का।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से। इस गीत को लिखा है, गाया है और संगीत दिया है अखिल सचदेवा ने। आइए सुनते हैं।

प्रिया सरैया का लिखा गीत आप सुन रहे थे फिल्म भूमि से। इस गीत को गाया था राहत फ़तेह अली खान ने और संगीत था सचिन जिगर का। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाज़ में, अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत फिल्म टू स्टेट से। इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

B2 से। जुनैद वासी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था चिरंतन भट्ट ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म राब्ता से। अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज़ें हैं, इरशाद कामिल और अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल, संगीत है प्रीतम का।

0: श्रोता, फिल्म राब्ता के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क

0: एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2,00,000 से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रथिका प्रदीप और चिकित्सा तनिपार्थी की तिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के 4थे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से 228-232 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रथिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक अपने नाम किया। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और इस समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा। 7:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात्रि 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।

0: फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:15 पर। कार्यक्रम संस्कृति भारती का प्रसारण 9:30 पर किया जाएगा और संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर आर माधुरी देवी का कर्नाटक वीणा वादन 10:00। श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी रविवार 12 जुलाई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, सुबह की शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे सुबह 8:30 पर। लोक संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे देवेंद्र सिंह और साथियों द्वारा गाए बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनिए सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण। 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम सामुदायिक गायन शिक्षण पाठ और फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 10:30 पर। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत किया जाएगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत का आनंद लीजिए सुबह 11:00। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय होगा 12:00 और 9:30। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक हंसना मना है कि 11:00 आप सुनेंगे 12:30 पर। 1:00 सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी के योगदान से प्रसारित किए जाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद पुनः लीजिए 2:00, शाम 5:33, शाम 6:00 और 8:30 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की होगी। कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत किया जाएगा और सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा का प्रसारण 7:30 पर होगा, जिसमें श्रोतागण डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा से बातचीत कर सकेंगे। विषय होगा धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं समसामयिक कार्य। 8:00 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। कार्यक्रम डगर विकास की आकाशवाणी गुना के योगदान से 8:15 पर प्रसारित किया जाएगा, जिसका विषय होगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। और अखिल भारतीय रविवासी संगीत सभा में कल सुनिए कुमार मरदुर का गायन, इसका प्रसारण 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। श्रोताओं, ये थे कल यानी 12 जुलाई 2026 रविवार को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार को हो जाएगा दोगुना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में मेरा युवा मेरा गौरव सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। विश्व जनसंख्या दिवस पर आज प्रदेश में भी जन जागरूकता रथ और रैली के साथ विश्व जनसंख्या सप्ताह की शुरुआत हुई और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा।
1: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अपनी 3 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद भारत के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में मेरा युवा मेरा गौरव सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राज्यभर से लगभग 5,000 युवाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 युवा कल्याण का वर्ष होगा। युवाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़कर प्रदेश के विकास और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में उनकी भागीदारी को सशक्त बनाया जाएगा।
2: 2027 हम युवा वर्ष मनाने जा रहे हैं। ऐसे में देश के अंदर सबसे युवा आबादी दुनिया की कहीं है तो भारत में है। हमारे राज्य में भी 2 करोड़ से ज्यादा युवा है। ऐसे में युवाओं को आने वाले समय में अपने प्रदेश की दशा क्या हो, उनकी सहभागिता क्या हो, उनके आइडिया क्या हो, शासन की सभी योजनाओं के पक्ष रखते हुए उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, पूरा अभियान चलाने के लिए जैसे बीते किसान वर्ष में भी हमने इंडस्ट्री के साथ किसानों की बात की थी, उसी तरह परिकल्पना के आधार पर यह वर्ष डिक्लेयर किया था।
0: वहीं महू के युवा किसान जितेंद्र पाटीदार ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती एवं पर्यावरण संरक्षण किसानों की आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार है। मार्केटिंग और डिजिटल तकनीक से प्राकृतिक उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंचाकर किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।
3: मैं जितेंद्र पाटीदार, निवास ग्राम सिमरोल, विकासखंड महू, जिला इंदौर का प्राकृतिक खेती करने वाला कृषक हूँ। प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण, भूजल संचय, जैव विविधता और प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम संतुलन और आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
0: सम्मेलन का उद्देश्य राज्य के विकास और नीति निर्माण प्रक्रिया में युवाओं को शामिल करना था। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह करते हुए कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि देश और उसकी जनता को समझने के लिए पढ़ने की आदत होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री शाह ने कहा कि पुस्तकालय राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है और इनके जरिए देश की संस्कृति और ज्ञान परम्परा की जानकारी लोगों तक पहुँचती है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को जिला भिंड के लहार में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की लगभग 1,25,15,000 से अधिक बहनों के खातों में सिंगल क्लिक से 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सीधा अंतरण करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को योजनाओं की शुरुआत से अब तक की 38वीं नियमित मासिक किस्त का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि शिक्षा ही समाज में परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा और सशक्त माध्यम है। हमारे सांदीपनी विद्यालय, पीएम श्री स्कूल और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में प्रदेश में शिक्षा की त्रिवेणी बन रही है। आज इंदौर में हिंद रक्षक पुण्योदय प्रकल्प के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ने प्राथमिक स्कूली शिक्षा स्तर पर ड्रॉपआउट दर को शून्य करने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। हमारे सांदीपनी विद्यालय मॉडल की पूरे देश में सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पित है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना। आज और भविष्य के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। इस अवसर पर प्रदेश में भी जन जागरूकता रथ और रैली के साथ विश्व जनसंख्या सप्ताह की शुरुआत हुई। इस दौरान 18 जुलाई तक विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में फिलहाल तेज बारिश से कुछ राहत मिलने वाली है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में आज मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व विभाग ने लंबित प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई की। खंडवा महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आगामी 13 जुलाई को आयोजित होगी। देवास जिले में डायरिया से होने वाली मृत्यु दर को शून्य पर लाने के उद्देश्य से स्टॉप डायरिया अभियान का संचालन किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में दस्तक अभियान 14 जुलाई से 31 अगस्त तक जिले भर में संचालित किया जाएगा। नर्मदापुरम शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी कंपनियों और स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ने के लिए 15 जुलाई को नर्मदापुरम में युवा संगम रोजगार और स्वरोजगार मेले का आयोजन होगा। जबलपुर में व्यापार और उद्योग जगत में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की वुमेन्स विंग का कार्यक्रम कल रविवार को आयोजित होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। किसान भाई सुने अब अपना कार्यक्रम चौपाल और उसके साथ साथ नन्हे मुन्ने कार्यक्रम फूल बगिया का आनंद उठाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम सभी चौपाल पर।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनवे वाले हमारे भैया हरन को भौजी बिन्ना हरन को आरती की राम राम। और भैया हरो कैसे हाल चाल हैं आप सबके? भगवान की कृपा से हम तो जाना था कि सभी और कुशल मंगल हुए। और अब तो भैया हमारे जो भैया हरे हैं उनके चेहरा पे कछु कछु मुस्कान सो आ गई, काहे से पिछले कछु दिना से बरसरानी मेहरबान है सो रोजी ना भैया के बरस जाते है ना। तो भैया रो जब पहली बिरिया पानी की जो बूंदे है तपती भई माटी पे गिरत है तो माटी में से जो सौंधी सौंधी महक उठत है बाको तो कौनो मोल नहीं है ना। जंगल पहाड़ बीहड़ बाकी रूखी सूखी माटी पाके जो अपना जो पौधा है जो हरिया जाते हैं जब उनमें से नई नई कोपल फूटे तो देख के मन कितो खुश हो जाते है ना। और बापे मोर की प्यू प्यू की आवाज़ कोयल की कूक से पूरा वातावरण गूंज उठते। तो देखी जाए भैया हरो आप और उनके लाने तो जो बरसात साक्षात भगवान को आशीर्वाद है ना। सूखी पड़ती जगह पे जब लहलाती फसल को तैयार करवे के लाने जब ज्योति जान लगाते हैं। और भैया हरो ई बखत तो देखो खेतन में यदि अपन और देसी खाद यानी कि जैविक खाद भी अगर डाल दें और बाकी फिर किसानी करें तो भैया फसल और भी मजे से लहलाते। तो सांची कहें तो बरखा रानी जो है उनको देख के खेतन में पानी देख के हमारे किसान भैया हरन को जो मन है बड़ो ही उल्लास से भर जाते और मन यही आस लगाओते कि चलो जा साल अपन औरन की फसल अच्छी हुई है। तो कहते ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम तो जो बात में तो भैया दम है ना। भैया रो जब फसल अच्छी होते है मुनाफा भी अच्छा होते है मुनाफा अच्छा मिलत है सबकी ज़रूरतें पूरी होते हैं और वो जो पैसा है वो सबकी तरक्की में काम आते हैं तो भैया जो तो सोचो कि जो तरक्की तभी फलित होत है जब घर बारे जो अपने मोड़ा मोड़ी हैं अपने काकी कक्का काकी हैं आजी दादी हैं जे सब उनकी ज़रूरतें भी टाइम पे पूरी होत रहे है ना। नहीं तो का होते भैया और कि परिवार बड़ो है ना कौनों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है ना पूरे दिन बस भोजन की पूर्ति में ही दिन निकल जाते। मोड़ा मोड़न की पढ़ाई लिखाई उनकी उच्च शिक्षा व्यापार बंज के लाने भैया खेती की नई नई तकनीक जो होते ऊके लाने भी देखो पैसा की जरूरती जो पड़ाते बाकी पूर्ति नहीं हो पाती। तो जई लाने कही जाते ना भैया रो कि छोटो परिवार जो होते वो सबसे सुखी परिवार होते। और देखो तो आज 11 जुलाई आए तो भैया आज के दिन पूरी दुनिया विश्व जनसंख्या दिवस वो मना रही। अब तुम और सोच रहे हो भैया कि जब जनसंख्या दिवस मनावे की कौन जरूरत पड़ गई? तो भैया हरो बात ऐसी है कि जितना तेजी से जो आबादी बढ़ती जा रही है तो वो अपने आप में बड़ी ही चिंता का विषय है ना। अब देखो जनसंख्या की दृष्टि की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से आज हम चीन को पछाड़ के पहले स्थान पे हम और अन्य चलांग सो लगा दी है ना। अब तनक सोचो तो अपने इतने अपने पास जमीन उतना ही है पानी के लाने कुआं नदी में पानी भी उतना ही है पन रेवे के लाने खावे वाले जो लोग हैं वो तो दिनों दिन बढ़ते जा रहे है ना। और घर में एक कमावे वारो हो और खेवे वारे भैया 10 हों तो कैसे भरण पोषण हुई है कैसे सवारे स्वस्थ रही है ना। तो बस जई हाल अपनी धरती माता को सो हो रहा है ना। बढ़ती आबादी के मारे देखो तो भैया दिनों दिन कितनी समस्याएं हो रही है ना। नई पीढ़ी को रोजगार नहीं मिल रहा है अस्पतालन में लाइनें लगी हैं खेती के लाने जमीन सिकुड़त जा रही है और जो खेती की जमीन है भैया बापे अपन और क्या कर

0: रहे, अपन और एक घर बना रहे, है ना, जंगल के जंगल काट रहे अपनी जरूरतें पूरी करवे के लाने, है ना। तो ऐसे में भैया का होते, जब जंगल ना हुई है तो भैया देखो बेमौसम पानी गिरते हैं या सूखो पड़ जाते हैं। तो जिस सब बढ़ती आबादी कोई तो असर है। अब देखो तो अपने पुरखा कह भी तो गए हैं कि छोटो परिवार सुखी परिवार होते, तो ये बात भी सोले आने सच है। जई लाने भैया देखो, यदि हम और तरक्की चाहते हैं तो अपने परिवार को अपन को छोटो रखना हुई है ना। और कहते ना कि बच्चा दो ही अच्छे होते, फिर चाहे वो मौड़ा हो या चाहे मौड़ी, है ना। ऐसे दो बच्चा हुई है तो भैया देखो अपन उनकी देखभाल अच्छे कर पाएँ, उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा सकें, उन्हें अच्छी नौकरी, अच्छो माहौल, अच्छो परवरिश दे पाएँ। और खान पान जब उनको अच्छो हुई है तो उनकी सेहत अच्छी रहे, और सेहत अच्छी रही है तो भैया वे देखो अपना जौन काम कर वो चाह रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर वो, चाहे किसानी को काम कर वे, चाहे व्यापार बंज कर वो, चाहे कछु भी कर पाएँ, वे जब वे अच्छे स्वस्थ हुई हैं तो देखो काम भी अच्छे से कर पाएँ। तो ये बात हम जई लाने कह रहे भैया कि हमको अपने परिवार को सीमित रख रहे हैं, और दूसरे हमें अपने बच्चन में भेदभाव नहीं करने हैं, है ना। चाहे बेटा हो चाहे बेटी, दोनों को बराबर से पढ़ाओ लिखाओ और उन्हें आगे बढ़ाओ। और भैया हरो परिवार को सीमित रखवे के लाने शासन भी देखो अपनी तरफ से क्या योजनाएं सो चला रही है ना, कितनी मुद की योजनाएं चल रही कि भैया जी हमारे भैया हरे हैं, हमारी भौजी बिन्ना हरे हैं, भी जाको लाभ उठाएं, है ना। तो ऐसी भैया देखो परिवार नियोजन से जुड़ी भी कई योजनाएं हैं, अस्पतालन में चल रही हैं, स्वास्थ्य सेवा केंद्र हैं उनमें चल रही हैं। तो हम तो यही कहें कि अस्पतालन में जाके भैया आप उनकी जानकारी लो और सुविधाएँ जो मुफ्त में मिल रही हैं उनको लाभ उठाओ। तो भैया अरे देखो परिवार को सुखी संपन्न हंसतो खेलतो छोटो परिवार हमको रखने हैं, और आज विश्व जनसंख्या दिवस है तो भैया हमारे जई संकल्प लें कि अपन अपने परिवार को पूरा पर उसके लोगन को सबको जागरूक करें और सबको छोटे परिवार के सीमित परिवार के फायदे बताएं, है ना। उनसे यही कहें कि भैया छोटो परिवार रखने जिससे अपन और अपने बाल बच्चन को भविष्य उज्ज्वल कर पाएँ और उन्हें अच्छा जीवन दे पाएँ, है ना। और जब भी पढ़े लिखे हुई हैं भैया तो उन सबकी तरक्की भी हुई है। और कहते हैं ना कि जब बच्चा पढ़ लिख जाए तो वो तरक्की भी करते है। अब देखो तो कई बच्चन को भैया विज्ञान विषय में कितेक रुचि होते है ना। और देखी जाए तो आज के युग में भैया देखो विज्ञान और नई नई तकनीक के दम पे तो हम और आगे बढ़ पा रहे है ना, तरक्की कर पा रहे हैं। तो जईला ने अपने मौड़ा मौड़न को अगर अपन विज्ञान में भी रुचि रखते हैं तो हम उन्हें आगे बढ़ाएं, है ना। अगर वे नई नई खोज करवे को उनको मन है तो उन्हें जब लाइन में आवे के लाने प्रेरित करें, जिससे उनको भी तरक्की मिले और संगे संगे अपनो देश भी आगे बढ़े। और इन सब बातन को ध्यान में रखत भाई देखो शासन ने किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना शुरू करी है भैया हरों, और जी उद्देश्य भी जो ही है कि जौन अपने मौड़ा मौड़ी हैं उन्हें अपन और विज्ञान से जोड़े। तो भैया किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना जी को अपन KVPY के नाम से भी जाना था, जी को मकसद भी जो ही है कि जौन अपने मौड़ा मौड़ी 11वीं 12वीं में या कॉलेज में BSc ले रहे हैं, बाकी पहले साल में वो विज्ञान विषय के साथ जुड़े। और भैया अगर वहाँ में उनको रुचि है, विज्ञान में रुचि है, खोजी प्रवृत्ति के हैं, उन्हें शोध अनुसंधान करने हैं, तो भैया जो एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत होते हैं तो वो बा परीक्षा को दें। और इसमें देखो जौन मौड़ा मौड़ी जो पास हो जाते भैया तो उन्हें फेलोशिप भी मिलते हैं, हर महीना पैसा मिलते हैं। और संगे संगे देश के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं भैया रहे तो उनके संगे काम करवे को सीखे को मौका भी मिलते। तो भैया रे देखो जा योजना के साथ शासन ने एक और बड़ी योजना इंस्पायर के नाम से जिखो अपन जानते हैं उखो जोड़ दो है। और इमें भी देखो भैया कहा है कि जो अपने मेधावी छात्र हैं वो विज्ञान के क्षेत्र में आगे जब बढ़े और उमें वो रुचि रखते तो उनमें उनको स्कॉलरशिप दी जाते और संगे संगे आर्थिक सहायता भी मिलते। तो हम तो अपने बच्चन को यही कहें कि भैया अपने छोटे छोटे जो मौड़ा मौड़ी हैं खोजी प्रवृत्ति के हैं उन्हें विज्ञान के लाने प्रोत्साहित करें और उन्हें बताएं कि विज्ञान केवल रखवे की चीज़ नहीं है, है ना, रटवे की चीज़ नहीं है, जे दुनिया को समझवे और नई नई खोज करवे को रास्ता है। उन्हें खूब सवाल पूछवे की छूट दें, हैं। अगर वे आपसे पूछें कि आसमान नीलो काय है, हरो काय नहीं, है ना जी, पेड़ पौधा कैसे बढ़ते हैं, तो उन्हें अपन खां डांटने नहीं है भैया रे, बल्कि उनके संगे जवाब ढूंढवे की अपन को कोशिश करने है। अब का पतो कि इनमें से ही कोनो अपने अब्दुल कलाम ने बन जाएं, तो कोनो विक्रम सारा भाई, तो कोनो भाभा, तो कोनो CV रमन, इन्हीं में सब छुपे हुए। तो भैया हरो अपने बच्चन के अंदर विज्ञान से जुड़ी खोजी प्रतिभा को पहचाने और उन्हें आगे बढ़वे के लाने प्रेरित करें और उन्हें किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना से जोड़ें। और भैया हरो अब अपन देखो बातन को देते हैं विराम, काहे से भैया टाइम हो गया है फुलबगिया में पहुँचवे को, तो चलो हम सब चलते हैं अपने नन्हे मुन्नों की फुलबगिया में। लेकिन बासे पहले सुन लेते हैं जे विज्ञापन।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: तो सभी बच्चन को आरती दीदी की तरफ से खूब ही लाड़ दुलार। और कैसे हाल चाल है बच्चे आप औरन के? बच्चों देखो, आज हम सभी विश्व जनसंख्या दिवस सो मना रहे हैं, तो हमने सोची काहे ना आज हम आपको देश की आबादी के बारे में, अपने भारत की जनसंख्या के बारे में तनक जानकारी दे दें। तो बच्चों देखो, आपको पता है कि आज अपन और दुनिया में आबादी के मामले में पहले नंबर पर पहुँच गए हैं, यानी अपने देश की आबादी बच्चों पता है कितनी है? 147 करोड़ के लगभग। और काहे इतनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के देख रहे? अब वो बात अलग है कि ज़्यादा लोग होवे से सबको ख्याल भी अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं हम, और है ना बच्चों, यदि हम बात करें तो देखो यूरोप महाद्वीप या फिर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के सभी देश इनको मिला दें तो भी अकेले भारत में उससे ज़्यादा लोग रहते। और आपको पता है कि अपने इतने जवान जौन हैं भैया, उनकी संख्या ज़्यादा है। यहाँ की लगभग आधी आबादी आप जैसे बच्चे और 25 साल से कम उम्र के युवाओं की है, और पूरी दुनिया में हर छठवां व्यक्ति अगर देखी जाए तो भारतीय है। और बच्चों इतने सारे लोग होवे के बाद भी हम और देखो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, रहन सहन अलग है, खान पान वेशभूषा अलग है, तीज त्यौहार अलग है, फिर भी मालूम है हम सब में एक विशेषता का है, एक खूबसूरती का है, अपने देश की खूबसूरती वो है अनेकता में एकता। यानी हम और विभिन्न भाषा भाषी होते हुए भी अपन एक साथ जो मिलकर रहते हैं, यही तो हम भारतीयों की सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी विशेषता है। तो बच्चों जनसंख्या की बात जो हम कर रहे हैं, तो हमने सोची काहे ना ऐसा एक मज़ेदार गाना भी आपको सुना दें, आपको मन खुश कर दें। तो चलो सुनाते हम ये गाना, जिसको हमने फिल्म मैं सुंदर हूँ से लिया है, और हमें उम्मीद है कि ये गाना आपको सबको खूब पसंद भी आए, और कछु मस्ती गुदगुदी वाली बात भी है तो वो भी सुन के आपको आनंद हुई है।
1: की तरफ लड़ रहे हो? देखो अगर मस्ती करोगे तो मैं तुम्हें भगवान के हवाले कर दूंगा। जैसे अपन नीचे जमीन पर राशन के लिए लाइन लगाते ना, वैसे लाइन लगाओ। शाबाश, राशन राशन जैसे चावल मांगते अपन। हाँ। कैसी औलाद है? हाथ,
2: अरे हाथ जोड़ो रे। प्रभु आज कैलाश में ये कैसी भीड़ है?

0: कि अम्मा
1: क्या?
0: ये तो बता,
1: ओए फीते मुँह,
0: तेरी फुटबॉल टीम का नाम क्या है? सच सच बता।

0: ये तो बता तेरी फुटबॉल टीम का नाम क्या है?
1: बोलो जोरू, सबके नाम।
2: प्रभु ये, अरे हटो ना बीच में से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर गोद में और दिसंबर पेट में।
3: अरे तुम्हारे एक परिवार में इतने सारे बच्चे?
4: क्या करूं भगवान, क्या करूं, ये सब तो आप ही की देन है, क्या करूं?

0: रूप तेरा मस्ताना पास मेरे ना आना भूल कोई फिर से ना खिल जाए ए रूप तेरा मस्ताना पास मेरे ना आना भूल कोई फिर से ना खिल जाए
1: क्या हुआ
2: और फूल नहीं खिलना चाहिए बाप
1: अच्छा प्रभु इस बढ़ती हुई आबादी की मुसीबत से हम लोग कैसे बचें आप ब्रह्मा जी से कहिए ना कुछ दिनों के लिए बच्चों की पैदाइश बंद कर दें
3: ये कैसे हो सकता है भक्त
1: तो फिर एक काम करिए प्रभु
3: वो क्या
1: प्रभु इससे आबादी भी कम हो जाएगी बच्चा बजाय 9 महीने के 18 महीने में पैदा हो क्यों रोती है
2: 18 महीने अरे हम औरतों का हाल क्या होगा ये बोझ तुम मर्द क्यों नहीं लेते
1: नको ये दर्द मेरे को नको प्रभु आप ही कुछ बताइए
3: देखो भक्त ब्रह्मदेव की सृष्टि को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि उन्होंने पहले ही मनुष्य को अनंत शक्ति का वरदान दिया है यदि मनुष्य सोच समझकर अपना जीवन बिताने का प्रयत्न करे तो उसे सुख और शांति अवश्य प्राप्त होगी
1: प्राप्त प्रभु मैं कुछ समझा नहीं
3: नहीं समझे बालक अच्छा अब तुम अभी समझ आओगे सोहम ये देखो इस आदर्श परिवार को देखो
1: अरे सिर्फ 2 बच्चे ये कैसे
4: ये निधि परिवार नियोजन
1: परिवार नियोजन जाओ प्रभु
5: ये तुम खुद भी समझ लो

ए भाई जरा देख के चलो, देखो तुम करो शादी भी, पैदा करो तुम बच्चे भी, कम हो तो लगे।

0: तो बच्चों देखो, बारिश को मौसम है तो हम तो यही कहें कि अपने आसपास हरियाली रखने हैं तो उखेलाने देखो पेड़ पौधा जरूरी लगाने हैं, है ना। और इन दिनों अगर अपन पेड़ पौधा लगाएं तो देखो वर्षा हो रही है तो भी अच्छे से पनप भी जाएं। बच्चों पेड़ पौधा लगाएं तो देखो एक बात को जो भी ध्यान रखने हैं कि लगा के अपन को नहीं छोड़ देने हैं, है ना। उनके चारों तरफ कांटेदार बाड़ बना दे, इसे कौनो जानवर उनको नुकसान ना पहुँचा पाए। और जब तक वो पनप नहीं जाए, खुद ही ना खड़े हो पाए अच्छे से वे, काहे से अबे जब पौधा छोटा होत है तो हम बाके संगे एक डंडी लगा सो लगा देते कि वो अच्छे से जमीन पकड़ ले, अच्छे से खड़ो रहे। लेकिन जब तक वो पनप नहीं पाए तब तक तो भैया देखो हमें बाकी देखभाल अच्छे से करनी है, जंगली जानवर से बचाने हैं और ऊखे अच्छे से देखभाल करें जिसे वो अच्छे से पनप जाए। और भाई देखो बच्चों, हम तो यही कहें कि जो पेड़ होते हैं वो देखो हम सब के लाने बड़े ही उपयोगी होते हैं, है ना। और उपयोगिता की अपन बात करें तो देखो जो मुद्रा होते हैं, है ना, जो रुपया पैसा होते हैं, बेबी हम और इनके लाने कितने काम आते हैं, है ना। हमारे सब काम तो जो रुपया पैसा से ही होते हैं। तो क्या आपने कभी सोची कि जो ना अपने भारत की मुद्रा है वो कैसी है, है ना। तो चलो वही के बारे में आज हम आपको जानकारी विस्तार से दबावे जा रहे हैं सुश्री ज्योति शर्मा दीदी से। वो अपन को बताएं कि जो अपनी भारतीय मुद्रा है वो कैसी है और कैसे काम कर रहे थे। तो चलो चलते हैं ज्योति शर्मा दीदी के पास और लेते हैं उनसे जानकारी।
1: बच्चों आज हम अपनी मुद्रा के बारे में जानेंगे कि मुद्रा क्या है और इसके उपयोग क्या है और विश्व के कुछ महत्वपूर्ण देशों में कौन कौन सी मुद्रा प्रचलित है। सबसे पहले हम अपने भारत की बात करते हैं। बच्चों रुपया तो आप सबने ही देखा होगा, एक का नोट होता है, दो का, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000। बाजार में जाते हैं तो इन्हीं नोटों को दुकानदारों को देकर सेवाएं प्राप्त की जाती हैं या सामान खरीदा जाता है, यानी मुद्राओं का प्रयोग ही सेवाएं और सामान खरीदने के लिए किया जाता है। तो बच्चों हमने जाना कि मुद्रा का हमारे लिए क्या उपयोग है और मुद्रा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मुद्रा के महत्व को जानने के बाद हम जानेंगे कि मुद्रा की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई। हमारे भारतीय रुपए शब्द का उद्गम हमारी ही भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा से लिया गया है। भाषा के रूप या रुपया शब्द से हुआ है जिसका अर्थ चांदी और रुपये का अर्थ चांदी का सिक्का है। रुपये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शेरशाह सूरी ने भारत में अपने शासन काल में सन 1540 से 1545 के बीच किया। शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल में जो रुपया चलाया वह चांदी का सिक्का था जिसका वजन लगभग 178 ग्रेन यानी 11.534 ग्राम था। उसके शासन काल में चांदी के सिक्के के साथ साथ दो और धातुओं का सिक्का चलाया गया जिसमें एक धातु थी तांबा, जिसके सिक्के को हम दाम के रूप से जानते हैं, और दूसरी धातु थी सोना, जिसके सिक्के को मोहर के नाम से जाना गया। पुराने समय में मुगल शासन के दौरान पूरे उपमहाद्वीप में मौद्रिक प्रणाली को एक मजबूती प्रदान करने के लिए तीनों धातुओं का प्रयोग किया गया था जिससे कि हमारी मौद्रिक प्रणाली काफी मजबूत हो जाए। शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया वह रुपया आज भी प्रचलन में है। जब भारत में ब्रिटिश शासन आया तब ब्रिटिश शासन काल के दौरान भी यह प्रचलन में रहा। उस समय सिक्के का भार 11.66 ग्राम था और इसमें 91.7% शुद्ध चांदी का समावेश होता था। बच्चों 19वीं सदी के आते आते चांदी से बने रुपए के मूल्य में काफी गिरावट आ गई। वह इसलिए क्योंकि उस समय सोने का मूल्य काफी होता था, उसे काफी बढ़ावा दिया गया था। दुनिया में सबसे सशक्त अर्थव्यवस्था स्वर्ण पर आधारित की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय उपनिवेशों में काफी अधिक मात्रा में सोना मिलने के कारण चांदी का मूल्य सोने की अपेक्षा बहुत अधिक कम हो गया, जिसकी वजह से सोने की प्रणाली काफी हद तक आगे बढ़ गई। बच्चों अचानक भारत की मानक मुद्रा जो कि चांदी थी वह इतनी कम हो गई जिससे हम बाहर के देशों से सामान खरीदने में सक्षम नहीं रह पाए, यानी हमारी मानक मुद्रा से बाहर की दुनिया से अधिक खरीद नहीं की जा सकती थी। इस घटना को हम रुपए की गिरावट के रूप में जानते हैं। उसे जाना जाता है कि उस समय की रुपए की गिरावट आज भी हमें प्रभावित करती है। भारतीय नोटों को कुछ पहचानने चिन्ह भी दिए गए हैं, जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को पहचानने के लिए कोई चिन्ह अंकित कर देते हैं, ऐसे ही हमारे भारतीय नोटों में भी सरकार द्वारा कुछ ऐसे चिन्ह अंकित किए गए हैं जिससे हम उन्हें आसानी से परख सकें कि वह असली है। जैसे केवल 10 के नोट को छोड़कर सभी नोटों के वाटरमार्क विंडो की बाईं ओर उठे हुए रूप में एक विशेष विशिष्टता डाली गई है। जो अलग अलग नोटों में अलग अलग होती है, जैसे 20 की नोट में ऊर्ध्वाधर आयताकार बना हुआ होता है, इसी तरह 50 की नोट में भी वर्गाकार आयताकार बना हुआ होता है, 100 में त्रिकोणाकार और 500 में वृत्ताकार और 1000 में समचतुर्भुजाकार होता है। ये सारी पहचान दृष्टिहीन लोगों की सहायता के लिए बनाई गई है। उसको जब छूते हैं तो उन्हें ऊपर से एक उभरा हुआ सा कुछ दिखता है जो उसकी पहचान के रूप में उन्हें दिया गया है। इसके साथ ही बच्चों और भी लोगों के लिए पहचान चिन्ह बनाए गए हैं, जैसे कि हम हैं, आप हैं, वो और नोटों को कैसे पहचान सकते हैं। इसके साथ ही नोटों की संख्या को प्रतिदीप्त रिफ्लेक्शन स्याही में मुद्रित किया गया, साथ ही नोटों में प्रकाशित तंतु भी डाले गए। ये दोनों केवल पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट लैंप के सामने लाने पर ही देखी जाती है। जब हम किसी नोट को, आजकल सरकार ने जो मशीनें बनाई हुई हैं, टॉर्च भी बनाई हुई हैं जिसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिसको जब हम नोट को उसके सामने लाते हैं या उस टॉर्च को उस पर जब डालते हैं तो उसमें उभरे हुए तंतु दिखाई देते हैं, जिससे पहचान होती है कि वह नोट असली है। बच्चों नवंबर 2000 में इसमें और बदलाव किया गया, जिससे कि और अधिक ऐसा संशोधन उसमें किया गया जिससे नोटों को पहचानना और आसान हो जाए। जिस संशोधन को किया गया वह संशोधन था रंग योजना। यह संशोधन केवल 500 और 1000 के नोटों के लिए किया गया था। इस संशोधन के अनुसार 500 और 1000 के नोटों की संख्या प्रकाश में रंग बदलती है। जब हम नोट को देखते हैं तो उसको देखिए, उसका कलर और रंग दोनों ही बदलते हैं, या फिर जब उस नोट को सीधा देखते हैं तो वह हरे रंग का दिखाई देता है, पर जब उसी नोट को तिरछा करते हैं तो वही नोट का रंग नीला हो जाता है। तो यह रंग बदलने का जो संशोधन किया गया है वह हम सबकी सहूलियत के लिए ही किया गया है। इसी तरह नोटों के अंक को समझने के लिए भी काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं। नोटों में विशेष प्रकार की पहचान है। बच्चों नोटों में एक वाटरमार्क होता है, उस वाटरमार्क के समीप ऊर्ध्वाकार पट्टी के बीच में नोट के सामने खाली भाग और पृष्ठ भाग यानी भरा हुआ भाग दोनों तरफ मुद्रित एक पुष्पित अंकित किया गया है। इस स्वरूप को दोनों तरफ अंकित किया गया है। हम इधर से देखते हैं तो भी वह दिखता है और हम पीछे की तरफ से देखते हैं तो भी वह दिखाई देता है, जो कि प्रकाश में देखने पर साफ दिखाई देता है। जिसे हम जब प्रकाश में देखते हैं तो वो चीज़ हमें साफ दिखाई देती है जो हमें अंकित किए जाते हैं। तो ये तो है हमारे नोटों की पहचान। इसके साथ साथ बच्चों इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन और किया गया था, जिसके अनुसार हमारे भारतीय नोटों में, चाहे वह सिक्के के रूप में हो या नोटों के रूप में हो, उस पर अशोक स्तंभ भी अंकित किया गया है। इसके अलावा नोटों में हिंदी के अलावा 14 और विभिन्न भाषाओं अंकित किया गया है, जो प्रतीक है हमारी देश की अनेकता में एकता का। बच्चों भारतीय रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। बच्चों हम जानेंगे कि इसके अलावा भी और भी ऐसे देश हैं जहां हमारी मुद्रा का कुछ और नाम दिया गया है। भारतीय रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है, इसका जारीकर्ता रिजर्व बैंक है, यानी भारतीय जो मुद्रा है उसको भारतीय रिजर्व बैंक से जारी किया जाता है। नए प्रतीक चिन्ह आने से पहले रुपये को हिंदी में दर्शाने के लिए रुपये यानी र और उ रुपये में प्रतीत किया गया था, और अंग्रेजी में दर्शाने के लिए आर ई बाद में वह आर एस भी हो गया था। आधुनिक भारतीय रुपये को 100 पैसे में विभाजित किया गया, बांटा गया। सिक्कों का मूल्य रखा गया, 1, 2, 5 और 10 रुपये भी मूल्य रखा गया। बैंक नोटों का मूल्य 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रखा गया। भारत के अधिकांश भागों में रुपयों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बच्चों अब हम आपको ये बताएंगे कि भारत के अधिकांश भागों में रुपयों को किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी में रुपया, हम जानते ही हैं हिंदी में रुपया कहते हैं। इसके साथ ही गुजराती में हम इस रुपये को रुपयू कहते हैं, रुपयू के नाम से जाना जाता है। तेलुगु में तुलू के नाम से जाना जाता है, और कन्नड़ में रुपाई, तमिल में रुबाई और मलयालम में रूपा, मराठी में रुपए। ये सारे नाम अलग अलग भाषा के हिसाब से अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। भारतीय रुपए को जापानी येन और यूरोपीय संघ के

यूरो के बाद पांचवी ऐसी मुद्रा माना गया जिसे उसके प्रतीक चिन्ह से पहचाना जाए। इसके लिए एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। बच्चों, हमने देखा कि हमारी

0: भारत की मुद्रा को जानने के बाद अब हम बात करते हैं विश्व के देशों की मुद्रा के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिकी मुद्रा के बारे में। अमेरिकी मुद्रा को हम डॉलर के नाम से जानते हैं। डॉलर विश्व की सर्वमान्य मुद्रा है, यानी डॉलर को सभी देशों में मान्य किया गया है। बच्चों, आपको यह भी बता दें कि डॉलर के मूल्य घटते बढ़ते रहते हैं, और जब डॉलर के मूल्य घटते बढ़ते हैं तो उससे हमारे भारत के मूल्य, भारतीय मुद्रा को भी प्रभावित होना पड़ता है, उसके मूल्य भी घट बढ़ जाते हैं। तो बच्चों, अब आपने जाना कि हमारे भारत की मुद्रा क्या है, उसे हम कैसे उपयोग में लाते हैं, और उसी रुपए को हम बाहर अलग अलग देशों में किन किन नाम से जानते हैं।
1: तो बच्चों देखो, अब हम सभी ने आओ जाने अपनी मुद्रा जा विषय पर सुश्री ज्योति शर्मा से कितेक नौनी जानकारी ली। तो देखो, उनने अपन को अपने इते की मुद्रा तो संगे संगे बाहर के देशन की मुद्रा के बारे में भी जानकारी दी, और हम उम्मीद है कि आप सभी को जो जानकारी अच्छी भी लगी हुई है। और बच्चों देखो, बरसात को मौसम है तो देखी जाए तो जब काले काले बादल आसमान में छा होते हैं, है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रहते हैं, झमझम बारिश होते हैं, तो कितना तो अच्छा लगते हैं, है ना। और फिर जब पानी भरो होते हैं बारिश को, तो बामे कागज़ की नाव बनाओ, है ना। और फिर जब बारिश हो रही है तो अम्मा से मनुहार कर रहते हैं कि अम्मा तनक पकौड़ा बना दो, सो हम खा लें चाय के संगे संगे, बड़े अच्छे लगे हैं। लेकिन बच्चों, कभी कभी आपने जो सोची है कि जो बारिश कैसे होती है ना, आसमान में इतने सारे पानी कहाँ से आते हैं? तो चलो, आज जई रहस्य से हम पर्दा उठावे जा रहे हैं और आपको प्रकृति के जादू को समझा रहे हैं। बच्चों देखो, जो अब सूर्य की जब गर्मी तेज पड़ती है तो क्या होता है कि धरती के जो समुद्र है, नदी है, झील, तालाब, उनको पानी गर्म होने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अपनी अम्मा जब पानी गर्म कर रहे थे तो उसमें से भाप निकलती है ना। तो जब पानी भाप बन के ऊपर जब उड़ते हैं, तो जब प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में वाष्पीकरण कहते हैं, और ये भाप बहुत हल्की होते हैं, इसलिए हवा के साथ ऊपर आसमान में उड़ जाते हैं। और बच्चों, जब आसमान में ऊपर जाके बहुत ठंडी होते है और ये हवा जो भाप है वहाँ जाकर जब पहुँचाते तो वो ठंडी हो जाते और पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाते। और जब ये बहुत सारा पानी जो आपस में जब मिलत है तो वो मिलके बनाते हैं बच्चों बादल। और जब इन बादलों में पानी की बूंदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बादल भारी हो जाते हैं, तो हवा उन्हें और ज़्यादा देर तक नहीं उठा पाती, तब जई पानी की जो बूंदें हैं वो धरती पे टपकने लगे, है ना, टपकती हैं, पानी बरसाते हैं, और हम और खुशी से चिल्लाते, ओ भाई बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश, तो देखो हम सभी को पसंद है ना। तो विज्ञान की जो पूरी कहानी को बच्चों जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल कहते हैं। बच्चों देखो, बारिश का मजा तो हमने ले लिया, लेकिन तनक सोचो तो कि बारिश के बाद कभों कभों आसमान में आपको कोई बहुत सुंदर सी चीज़ दिखाई देती है, सात रंग वाली यानी कि इंद्रधनुष, है ना। तो ये इंद्रधनुष कैसे बनाता है? तो ये कहानी तो बच्चों और भी रोचक है, और भी मज़ेदार है। इंद्रधनुष हमेशा बारिश के ठीक बाद सूरज के निकरवे पर बनाते हैं। अब बच्चों, होता है कि बारिश के बाद भी हवा में पानी की कछु बूंदें, छोटी छोटी बूंदें लटकी रह जाते हैं, और सूरज की जो रोशनी हमें सफ़ेद या पीली दिखती है, असल में वे सात रंग में छुपे होते हैं। और जब सूरज की किरणें हवा में लटकी इन पानी की बूंदों से होके गुजरती हैं, तो पानी की जो बूंदें जो कहाँ हैं, एक शीशे यानी कि प्रिज्म की तरह काम करते हैं। बच्चों आपने प्रिज्म देखा है ना, तो ये प्रिज्म की तरह काम करती हैं, और ये सूरज की सफ़ेद रोशनी को अपने अंदर छुपे सात रंगों में बिखेर देती हैं, और आसमान में एक सुंदर सी सतरंगी पट्टी है वो बन जाती है। और आपको मालूम है ये सात रंग कौन कौन से हैं? कोई बात नहीं, चलो हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले तो देखो, विवग्योर जी को कहते हैं, है ना, विवग्योर यानी कि वी यानी कि बैगनी, है ना, आई यानी कि इंडिगो यानी कि जो है जामुनी, और जी यानी कि बी यानी कि ब्लू यानी कि नीला, और जी यानी कि ग्रीन हरा, वाई येल्लो यानी कि पीला, ओ ऑरेंज यानी कि नारंगी, और आर रेड, है ना, यानी कि लाल। तो बच्चों, अब आपने जाना इंद्रधनुष कैसे बनाता है। तो प्यारे बच्चों, जब भी बारिश होगी आसमान में इंद्रधनुष निकलेगा, तो आप अपने दोस्तों को जरूर ये बताना कि बारिश, जादुई बारिश कैसे होती है, सतरंगी इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो बच्चों, हमें अब उम्मीद है कि आपको इंद्रधनुष और बारिश कैसे होती है, इन सब के बारे में जानकारी हो गई होगी। और चलिए, अब हम आपको एक प्यारा सा गीत सुनाते हैं, तो चलो हम सब मिलके सुनते हैं ये गीत।

0: अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा से प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: अम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार अनुभा जी।
1: त्रिगुनायत जी, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड का 2 दिन का दौरा 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का उस देश का पहला आधिकारिक दौरा है। इसे एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। आप इस दौरे के महत्व को कैसे देखते हैं?
2: अनुभा जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले कार्यकाल में 12 साल के जो हमने देखा है कि जो एक हाई लेवल एंगेजमेंट या विजिट डेफिसिट भारत से होता था देशों के साथ, वो कहीं के भी हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो दूसरे नेबरहुड में हो या लैटिन अमेरिका में रहे,

0: ये सब चीजों को काफी अच्छी तरह से ब्रिज किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी जाते हैं, राष्ट्रपति जी भी जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं, मिनिस्टर्स भी जाते हैं जगह जगह। अब बहुत सी जगह हमने देखा है, खासतौर से आपने देखा होगा कि वेस्ट एशिया वगैरह में
1: जी
0: जो हमारे सबसे बड़े नेबर है वहां पे 3 दशकों तक कोई विजिट नहीं हुई। तो अब आज देखिए 40 साल के बाद प्रधानमंत्री का पहला दौरा हो रहा है यहाँ पर, तो ये मैं समझता हूँ अपने आप में एक बड़ी बात है। कारण सीधा यह है कि हर एक देश इंपॉर्टेंट होता है, और इंडो पैसिफिक के अंदर में जो उसमें भारत का एक बड़ा स्टेक्स भी है, वहां पर जो ये रिलेशनशिप है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, इंडोनेशिया के साथ हो, चाहे वो न्यूजीलैंड के साथ में हो। तो जैसा आपने देखा कि हमने अभी उनके साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने की कोशिश करी,
1: जी
0: तो भारत है वो जो स्मॉल पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं उनके साथ भी अपनी मित्रता काफी बढ़ा रहा है, उनको काफी असिस्टेंस दे रहा है। उसमें भी इन सब देशों का एक बड़ा रोल है क्योंकि वो वहीं पर है, और इंडियन ओशन में इनके साथ में हमारे कोलैबोरेशन जो बढ़ने से, चाहे वो मैरिटाइम में हो, ट्रेड में हो, इन्वेस्टमेंट्स में हो या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो,
1: जी
0: तो ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो हमने डिसाइड किया कि हमारे रिश्ता जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील हो जाए, ये एक इस बात को बताता है कि दोनों के लिए ही कितना इंपॉर्टेंट है। और जैसा आप जानती हैं कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ में बात किया तो उन्होंने कहा ये विनिंग पार्टनरशिप है,
1: जी
0: तो दोनों के लिए विन विन पार्टनरशिप है।
1: जी आपने अभी जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कही, तो एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दें कि नई दिल्ली और वेलिंगटन ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाया है, जिसमें अगले 4 वर्षों में संबंधों को बढ़ाने का रोड मैप शामिल है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे अभी आप बता रहे थे, अगर उस पर और आप थोड़ा सा जोड़ सकें कि ये अपग्रेड जो हुआ है दोनों देशों के संबंधों के बीच में, ये इन संबंधों को नया रूप कैसे देगा?
0: देखिए, दो तरह के रिश्ते होते हैं, एक तो कि नॉर्मल चलते जाएं जिसको आप कह सकते हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होती है कि आपने हमें कुछ दिया, हमने आपको कुछ दिया, कभी कभार हम कोऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड के साथ हमारा कोऑपरेशन नहीं रहा है या ट्रेड नहीं है, लेकिन जब हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उस चीज को तब्दील करते हैं तो उसमें और बहुत सारी चीज आ जाती है, जैसे डिफेंस है, सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, इन्वेस्टमेंट्स है, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हो, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को शेयर करने के बारे में हो,
1: जी
0: तो ये सारी चीजें उसके अंदर में आ जाती है। इसीलिए जो रोड मैप तैयार हुआ है, चाहे उसमें हमने ट्रेड को 2030 तक डबल करने की बात हो, या हमारा इन्वेस्टमेंट हो, या जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन
1: जी
0: हो, या किस तरह से हम मैरिटाइम एरिया के अंदर में और ज्यादा अपना कोलैबोरेशन को बढ़ाएंगे, तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं आज की डेट में, क्योंकि दुनिया का जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की एक अनसर्टेनिटी है, उसमें वैल्यू सप्लाई चेन्स के लिए इस तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत आवश्यक है।
1: भारत और न्यूजीलैंड ने 2030 तक गुड्स एंड सर्विसेज में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके लगभग 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, और दोनों देशों ने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए थे। आइए पहले सुनते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
1: अम्बेसडर त्रिकुणायत, जैसे भी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने एफटीए पर जो बयान दिया, तो ये जो फैसले हुए हैं आज, जो एक ट्रेड को डबल करने का फैसला और जो हमने एक एफटीए साइन किया है, ये जो फैसले हैं दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने में कितनी अहम भूमिका निभाएंगे?
0: श्रीमती, अगर आप देखें तो मार्च में 2025 में आई थिंक उनके जो ये
1: जी
0: प्रधानमंत्री थे भारत आए थे, और जब वो भारत में आए थे उस वक्त ये डिस्कशन हुआ था कि भाई हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं आपके साथ। आप सोचिए कि तब से लेकर के अब तक एक रिकॉर्ड टाइम में ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है, उसका रेटिफिकेशन होने वाला है, उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि फ्री ट्रेड में दोनों देश एक दूसरे को एक स्पेशल डिस्पेंसेशन देते हैं, तो ये खाली ट्रेड में नहीं है, ये सर्विसेज सेक्टर में, क्योंकि भारत की जो सर्विसेज हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, चाहे वो टेलीकॉम सर्विसेज हो, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, उस सब में भारत का एक काफी नाम है दुनिया के अंदर, हमारे लोग जो है जगह जगह जाते हैं। इसी तरह मोबिलिटी एक एग्रीमेंट होता है उसका पार्ट, कि किस तरह से हमारे प्रोफेशनल्स ट्रेवल कर सकते हैं, और इसी तरह से उनका भी है कुछ हिस्सा भारत के अंदर, किन चीजों में उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में, इससे आपको एक आशा बंधी है कि आपका जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड एटलीस्ट गुड्स एंड सर्विसेज में, वो डबल हो जाएगा।
1: जी
0: तो ये मैं समझता हूं कि इस सिचुएशन में इससे कई तरह का डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, और जो डिपेंडेंसीज ऐसी जगह हैं जहां पे बड़ी फ्रजाइल सप्लाई चेन्स हैं उनको भी एड्रेस करने में मदद मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री के इस दौरे का एक और महत्वपूर्ण जो नतीजा है वो रक्षा और समुद्री सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: त्रिगुणायन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो मैरिटाइम और डिफेंस में जो हमारा कोऑपरेशन कोलैबोरेशन बढ़ाने की बात हो रही है, ये जो सहयोग है इसके लिए क्या नए मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं, और ये जो बदलती इंडो पैसिफिक सुरक्षा स्थितियां हैं उसके बीच में इस सहयोग का क्या महत्व है?
0: आपको पता ही है कि दोनों ही मैरिटाइम पावर्स हैं, मैरिटाइम नेशंस हैं, और दोनों के सामने बड़े चैलेंज है। और चैलेंज आजकल दो तीन तरह का है। एक तो ये कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ देश फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को नहीं मानते हैं और उस बात को पूरी तरह नकारा करते हैं, लेकिन भारत इस बात को मानता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सिक्योर इंडो पैसिफिक जो है वो ट्रेड हो या इन्वेस्टमेंट्स हो या आपका मैरिटाइम कनेक्टिविटी हो, उन सबके लिए बहुत आवश्यक है। और जिन देशों ने ये अनक्लॉज जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन द लॉ ऑफ द सीज को साइन किया हुआ है उनको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि भारत मानता है कि ये ग्लोबल कॉमन्स और ग्लोबल गुड्स के रूप में है। तो इसलिए यही न्यूजीलैंड का भी मानना है इस बारे में। एंड देयरफॉर हम लोगों का जो भी कई सारे एमओयू जो हमने साइन किए हैं इसके बीच में, डिफेंस के अंदर में हो, चाहे मैरिटाइम सिक्योरिटी में हो, हाइड्रोग्राफी होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में है, मैरिटाइम हेरिटेज के बारे में है, तो ये सारे एमओयू जो है यही बताते हैं कि हमारा जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी में कॉपरेशन है या इंटेलिजेंस कॉपरेशन है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। और इसी तरह से ओशन जो है उनका पॉल्यूशन कैसे कम किया जा सकता है, किस तरह से जो ब्लू इकोनॉमी है उसको हार्नेस कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूँ इसके अंदर में आती हैं और उससे काफी बड़ा फायदा होता है दोनों देशों को।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज घोषणा की कि भारत और न्यूजीलैंड भारत के यूपीआई और न्यूजीलैंड के पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और हमने देखा कि सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान भी एक ऐसा ही समझौता किया गया था। तो फिनटेक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नई दिल्ली और अन्य देशों के बीच ये इस तरह का जो सहयोग बढ़ रहा है इसे आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, दुनिया में हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जो युद्ध हुए हैं इतने सारे, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, इसके समय पे हमने ये देखा है कि ज्यादा से ज्यादा जो देशों को एक ऐसा आपस में ट्रेड करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए कोई थर्ड कंट्री की करेंसी की आवश्यकता ना हो। और इसी तरह आजकल कोऑपरेशन फिनटेक एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ मीडियम बन गया है और टेक्नोलॉजीज हैं जिसके जरिए दो देश काफी कुछ कर सकते हैं आपस में। और भारत ने जो अपना यूपीआई डेवलप किया है, यूनाइटेड पब्लिक इंटरफेस, उसको आप सोचिए कि कम से कम 25 देशों के साथ में हमने एग्रीमेंट साइन किया है। इसका मतलब है कि हम उस देश की करेंसी के साथ डायरेक्टली बिना किसी थर्ड कंट्री की करेंसी के जाए बिना व्यापार कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, टूरिज्म में लोगों को बड़ा फायदा होता है, बड़ा आसानी होती है जाने में, ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर रिमिट करने में एक क्लिक के ऊपर आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें दुनिया ने देखा है। और आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने भी भारत के यूपीआई को बहुत सराहा है
1: जी।
0: आपने देखा पीछे जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ आए थे तो जब उन्होंने चाय पी और क्यूआर कोड के जरिए वो दिया, तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि किस तरह भारत का यूपीआई ज्यादा से ज्यादा देशों में एक्सेप्ट हो रहा है, और ये दोनों के ही भले की बात है।
1: आज न्यूजीलैंड में जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात की कि कैसे न्यूजीलैंड और भारत दोनों महिलाओं के लिए अवसर पैदा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लीड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: अम्बेसडर त्रिगुणायत, बात चाहे महिलाओं के योगदान की हो या जिस देश का भी दौरा प्रधानमंत्री करते हैं वहाँ भारतीय मूल के जो लोग रह रहे हैं उनके योगदान की बात करते हैं वो हमेशा, तो जब प्रधानमंत्री इस तरह की बात करते हैं अपने दौरों के दौरान भारतीय मूल के लोगों की उस देश के विकास में, तो ये कितना बड़ा एक मोराल बूस्टर होता है और दो देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने में कितना महत्वपूर्ण है।
0: यहाँ तक हमारा इंडियन डायस्पोरा है वो 10,000 करीब लोग वहाँ पर थे जिन्होंने उनको सुना, और आपने देखा कि वहाँ के प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में गए और यही दर्शाता है। और ऐसे ही हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, इंडोनेशिया में आपने देखा कि वहां पे तो उन्होंने कहा कि डीएनए ही है हमारे अंदर उनके राष्ट्रपति। तो जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं भारतीय मूल के लोग जो वहां पर हैं या एनआरआईज हैं, वो किस तरह वहां के लोगों के साथ मिलजुल करके उनके देश के डेवलपमेंट के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो उसको वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। भारत ये अप्रिशिएट करता है कि हमारे भारतीय लोग या भारत मूल के लोग जो हैं वो एक लिविंग ब्रिज की तरह हैं दोनों देशों के बीच में। और रही बात जहां तक वुमेन लेड डेवलपमेंट की, तो आपको याद होगा जब हमने G20 समिट की थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री ये नहीं कहे वुमेन एम्पावरमेंट को छोड़ के उसकी जगह एक नया एक मंत्र दिया था जिसको कहते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट, मींस हर क्षेत्र में स्त्रियों को और से ज्यादा सुविधा मिले और उनको उस तरह का। तो ये जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती है दोनों देशों के बीच में, उनको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक दूसरे को बढ़िया बना सकते हैं, तो उसका मतलब मैं समझता हूँ इस बारे में था। और जहां तक हमारे जो डायस्पोरा है, मैं कहूंगा कि वो तो हर जगह कहीं पर भी जाते हैं तो उनकी एक तारीफ होती है और उनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन उस देश की बढ़त के लिए होता है उसको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं।
1: कृषि के क्षेत्र में दोनों देश हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी उद्योग में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए हैं। इन क्षेत्रों में न्यूजीलैंड की जो एक्सपर्टीज है और भारत का एक जो बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार और एग्री टेक टैलेंट है, वो एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक दूसरे को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं?
0: देखिए, जैसा हम हमेशा से सुनते आए हैं, भले ही हम टेक्नोलॉजी में, आईटी में और सब चीजों में काफी प्रोग्रेस कर गए हैं, लेकिन आज तक हम यही कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है
1: जी।
0: ये तो बात सब जानते हैं इस बारे में। और भारत में भी बड़े रिवोल्यूशन हुए हैं, चाहे ग्रीन रिवोल्यूशन हो, चाहे वो येलो रिवोल्यूशन हो या व्हाइट रिवोल्यूशन हो। तो न्यूजीलैंड के बारे में अगर देखें, उनकी इकोनॉमी में भी डेयरी और एग्रीकल्चर का बड़ा योगदान है, लेकिन उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को, एग्रीटेक जिसको बोलते हैं, उसमें रिसर्च करी है। तो ये जो हमारा एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच में, ये हमारे बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने में और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस के एक्सचेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंजेस हैं, उस सब में और भी ज्यादा बढ़ावा देगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट एक मैकेनिज्म बनाई गई है और इसीलिए ये जितने भी इनिशिएटिव लिए गए हैं रोड मैप के अंदर में, उनको मॉनिटर करने के लिए एक फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे एक बड़ी कमिटी का गठन किया गया है दोनों देशों के, जो उसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि भाई खाली बोलने के बाद ही नहीं है कि हम चले गए, विजिट खत्म हो गई, लेकिन यह है कि इसके बाद क्या प्रोग्रेस हुई हर चीज के ऊपर में। और मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को बनाना एक अच्छी बात है।
1: लोगों के स्तर पर, यानी कि पीपल टू पीपल लेवल पर सहयोग के वो कौन से क्षेत्र हैं जिन पर आज दोनों देशों ने एक सहमति बनाई है और वो कितने महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, जहां तक पीपल टू पीपल है तो टूरिज्म एक बड़ी चीज है, तो उसमें अगर फैसिलिटेशन होता है हमारा वीजा के ऊपर में। दूसरा चीज ये है कि भारतीय लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा सर्विसेज इंडस्ट्री में हैं, वो वहां पर जाते हैं। कल्चरल कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें, एक दूसरे के जो कल्चर को जाने वहां की माओरी जैसे है ट्रेडिंग, उनको बुलाया जाए, उनको यहाँ पर किया जाए, उस तरह बहुत सारे हर एक देश की अपनी अपनी प्रोजेक्शन होती है। तो भारत की जो है जैसे अब योगा है वो वहां बड़ा पॉपुलर है, तो ये सब चीजें होने से जो है पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस तभी बढ़ेंगे जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे कल्चर को देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। और उसमें भी जो हमारा जो डायस्पोरा है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है।
1: अम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा से प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: सुर्खियों में
5: कार्यक्रम सुर्खियों में का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं मजरू का लिखा और लता मंगेशकर का गाया ये गीत फिल्म कारवां से। इसे संगीत दिया है R.D. बर्मन ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म घर से। गुलजार के लिखे बोल और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

Gaudi, look at

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
1: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
0: फिर ना कभी कहना।

आनंद बख्शी का लिखा गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था अजनबी और इस गीत को संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं फिल्म हमजोली से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है दो कलियाँ।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ों में। साहिर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है ओ पी नैयर ने। फिल्म का नाम है नया दौर।

0: श्रोताओं, फिल्म नया दौर के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए

0: मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436789155237142 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी

से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा

0: शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है माँ और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
2: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में

0: एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora,

0: जना मोदी के इस दौरे की एक बड़ी खासियत ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में कम्युनिटी का प्रोग्राम था जिसमें भारतीय बिरादरी के 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए जना मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का मुस्तकबिल एक दूसरे के साथ मुंसलिक है और दोतरफा तिजारत के समझौते से एक तरक्की याफ्ता मुल्क की समत भारत के सफर में तेजी आएगी।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत को एक भरोसेमंद दोस्त करार दिया और न्यूजीलैंड की तरक्की में भारतीय बिरादरी के लोगों के रोल की सताइश की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत को सराहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब क्रिस्टोफर लक्सन की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए तशक्कुर का इजहार किया और कहा कि भारत न्यूजीलैंड ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज हुआ है। किसी भारतीय वजीर आजम के गुज़श्ता दौरे के बाद से 40 साल के वक्फे का तस्करा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि अगले दौरे में इतना वक्त नहीं लगेगा।
1: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
0: आज वियतनाम के फू क्वोक जजीरे के नजदीक एक कश्ती के डूब जाने से 15 भारतीय सैयाहों की मौत हो गई है। वियतनाम में भारतीय सिफारतखाने ने तस्दीक की है कि महलुकीन में 13 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सिफारतखाने ने महलुकीन की वो फहरिस्त पोस्ट की है जो वियतनाम के अहलकारों ने फराहम की थी। सिफारतखाने के मुताबिक हलाक होने वालों में से 10 का ताल्लुक तमिलनाडु से, 3 का आंध्र प्रदेश से और 2 का केरलम से था। इस कश्ती में 36 लोग सवार थे जिनमें 32 भारतीय सैयाह, अमले के 3 अफराद और 1 अटेंडेंट शामिल था। 17 मुसाफिरों और अमले के 4 अफराद समेत 21 अफराद को बचा लिया गया और अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जिंदा बच जाने वालों में से 2 की हालत नाजुक है और इंतहाई तिब्बी निगहदाश्त में उनका इलाज चल रहा है। बचाव मिशन के दौरान वियतनाम के साहली गार्ड रीजन 4 कमांड ने अपने अहलकार तैनात किए और बचाव से मुतालिक सामान का इस्तेमाल किया। मुतासर कुनबों को मालूमात और मदद फराहम करने के लिए हो ची मिन शहर में भारतीय कौंसल जनरल में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इसके नंबर इस तरह से हैं +84362107930 +84915527314 और +84334520414। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सिफारतखाने ने कहा है कि हनोई में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है और उसका नंबर है +84913089165। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू क्वोक जजीरे के नजदीक कश्ती के अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है जिसमें भारतीय शहरी भी शामिल हैं। हादसे पर रंजोगम का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सोगवार कुनबों से ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में सभी जख्मियों की जल्द और मुकम्मल शिफायाबी की दुआ की। वजीर आजम मोदी ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। उन्होंने कहा कि वियतनाम में भारतीय सिफारतखाना और कौंसल खाना सभी जरूरी मदद फराहम कर रहा है और वियतनाम के ओहदेदारों के साथ करीबी रबते में है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत के लिए यकसा सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने के लिए

9 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन पहले ही शाया कर दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई इस कमेटी की चेयरपर्सन होंगी। मेघालय के साबिक गवर्नर तथागत राय कमेटी के अरकान में शामिल हैं। यकसा सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने की खातिर कमेटी तश्कील देने के बारे में इस महीने की 2 तारीख को काबीना की मीटिंग में फैसला किया गया था। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जमहूरियत में इख्तलाफ राय एक फितरी अमर है, लेकिन आईन और अवामी बहबूद के तई अहद मुकदम रहना चाहिए। गया जी में बिहार कानूनसाज असम्बली के अरकान के लिए तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो जमहूरी अकदार, शफाफियत और अवाम के तई जवाबदही को अव्वलीन तरजीह दें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एक फर्द की शख्सियत निखारने में लाइब्रेरियों के नुमाया रोल को उजागर करते हुए नौजवानों से अपील की है कि वो लाइब्रेरियों के साथ मुंसलिक हों। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक अजीम मुजाहिद आजादी, मुफक्किर और ऐसे कौमी रहनुमा थे जिन्होंने मुल्क के लिए काबिल कद्र खिदमात अंजाम दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क और उसके अवाम को समझने के लिए पढ़ना जरूरी है। जनाब अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर जोर दिया कि वो शहर में सभी लाइब्रेरियों को बाहम मुंसलिक करे और स्कूलों के साथ उन्हें जोड़ने का एक जामिया मंसूबा मुरतब करे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन मेंबर पार्लियामेंट पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से हुक्मरानी मुस्तहकम होगी, अखराजात कम होंगे और मुल्क की मईशत को फायदा होगा। गोवा में नामानिगारों से खिताब करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि सभी बड़ी सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करने वाली 41 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर रही है ताकि सरकारों, सियासी पार्टियों, आईनी माहिरीन, सिविल सोसाइटी और दीगर मुतालिका अफराद की राय मालूम की जा सके। इस सिलसिले के तहत गोवा ऐसी नवी रियासत है जहां कमेटी के अरकान दौरा कर रहे हैं। छोटे फूड प्रोसेसिंग इदारों को बाजाब्ता शक्ल देने की प्रधानमंत्री स्कीम ने पूरे मुल्क में 2 लाख से ज्यादा छोटे फूड प्रोसेसिंग इदारों के लिए कर्जे मंजूर करने का संगे मील हासिल कर लिया है। मजकूरा स्कीम के तहत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोजेक्ट सरमायाकारी की गई है और रोजगार के तकरीबन 11 लाख बराह रास्त और बिलवास्ता मौके पैदा हुए। आज नई दिल्ली में एक खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए खुराक को डिब्बा बंद करने की सनअतों के मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा कि ये कामयाबी महज जश्न मनाने का एक संगे मील नहीं बल्कि फूड प्रोसेसिंग के फरोग के भारत के सफर के अगले मरहले की एक मजबूत बुनियाद है। जनाब पासवान ने अपना कारोबार करने वाली खवातीन की शमूलियत को उजागर करते हुए कहा कि इससे खवातीन की जेरे कमान तरक्की के हकीकी जज्बे की अक्कासी होती है जो विकसित भारत की बुनियाद भी है। जुनूबी भारत की सरकर्दा गुलकारा एस जानकी का कर्नाटक के मैसूरू में इंतकाल हो गया। वो 88 साल की थीं, वो ज़ईफ़ुल उम्री से वाबस्ता बीमारियों में मुब्तला थीं। एस जानकी ने 60 साल से ज्यादा के अपने करियर में मुख्तलिफ ज़बानों में तकरीबन 48,000 नगमे गाए, इनमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी जबान शामिल हैं। एस जानकी को पद्म भूषण अवार्ड से सरफराज किया गया था, उन्हें 4 नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सरफराज किया गया। इसके अलावा उन्हें 33 स्टेट फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवाः, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, तो कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं, समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है। उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहां आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं।
1: यो यो यो यो नाथो चोही नोंदी।
0: इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देह, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देह पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नवदिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्नवेदी को छोड़कर पुरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेवतु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ठ संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार की सेवाएं कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भूरी सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हम एक कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्रीगुंडीचा के पहला दिन नेत्रोत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी। फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है, फांसी। इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार सेवक के द्वारा यह रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से

0: भगवान जगन्नाथ जी का एक रथ का कार्य शुभ दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम सुर होता है, इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्ज। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना चतुर्थ तिथि से, जो भोर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहिया में एक अक्ष संयोग किया जाता है प्रभु के आज्ञामण आने से बाद। हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारंभ करो, इसके बाद रथ का कार्य शुभ किया जाता है। भौरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो, इसके बाद दोनों पहिया में एक अक्ष संयोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ, आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे के पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई का रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
1: त्रिखेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती है, पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
2: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का 12 ग्रही दैतापति हूँ। प्रभु स्नान का बाद में अंदर जाते हैं, हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, वेश करते हैं, रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है, ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनुसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जी की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेदिक तो ये पक्षी पांचन होता है, आम, केला, पनस, सपुरी, कपटा, ये पांच प्रकार फल भोग होता है, पक्षी होता है। मुख और नारियल का पूरा जल, लवंग, जायफल दे के, चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का, भजन का, जो बाजा सब गाना होता है मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने के बाद में रथ यात्रा होगा, द्वितीया तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
1: अणसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अणसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा। ताल ध्वज, देवदलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
3: रथ खला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और शिव मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निष्कलानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जा करके अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा फोरा करते हैं और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है पर प्रभु की अनंत लीला सिमंदर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। सिमंदर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कभी इस दृश्य को शब्दवद करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की। आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास है।
2: मैं डॉक्टर एके सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों से एक दूसरे को एक मिठास के रूप में परिचित करा सके। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेकर सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियाँ उगाई जाती है। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे और 6 पार्टिसिपेंट ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कंप्लीट कवर किया।
3: डॉक्टर नितिन विक्रम सिंह प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई है आम की। उषा सूर्या है, उषा अरुणिमा, उषा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में है। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने दीपशिखा भी रिलीज की है। मोस्टली अम्रपाली और संकरण के संकरण से बना है पर कुछ किस्में जिसमें दशहरी और लाल सिंदूरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखे थे आम महोत्सव यहाँ चल रहा है और आम के नाम से देखे दिल्ली एक जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए, आंध्र में चले जाए तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। ऐसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
4: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कठियोरा से आया। ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है और ये हमारे कठियोरा में होता है हमारे गांव में। और भी बहुत सारी वैरायटीज है लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इसी लेके आए।
5: मेरा नाम राम किशोर मौर्या है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए जिसमें खट्टे मीठे हैं और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेष कर जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है।

0: लोगों को, कई लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। तो हमारी पुरानी हमारे पैतृक वैरायटियां है वो जीवित रहने अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
1: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलियावाल लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है। मेरा पुरखों से काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, राम केला है, चन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है। तमाम सी वैरायटी, इतनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर की तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती
2: है। ये आम कुछ खास हैं। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

ఏదైన హమద్రు ఉహే కి దేన మేము ఉసి దిన హమన్ అటారీ మే రహెన్ ఫిర్ హమలా छोटपन में पकड़ के गनियारी मिले वहाँ हमारा लालन पालन हुई हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छुनुक लाल रही से छह भाई बहनी रहे हैं दो भाई चार बहनी गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग लेकर ला छोड़ के चल देवे भाई बहनी बन के पूरा देखभाल ला मैं करूँ हमन छह भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं है हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेत रही हूँ माँ गावे आरू

0: आया जनकारी राम राम आहो लाला सोला चेली के झूमी जाए हो।
1: बाटी भौरा भी अब्बड़ खेलत रहे हो, कबड्डी खेलत रहे हो, सूर खेलत रहे हो, खो खो खेलत रहे हो, तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के जनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, तेमे भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से, बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम, और वो हम ऐसे टेर लगाई द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गई। अरे बाप रे, हाथ कतेक सुंदर एक आवाज और कतेक बढ़िया भगवान ल पुकारा थे, और एला लोग मन हा बिजलाल नाम रही से, पर भगवान के नाम जपे ना तो ओला जपरी कहा भी। 11-13 के लगभग में रही हूँ मैं, तो ये बच्चा कतेक सुंदर।

पर एक दिल में लगाओ है तो सुने बरा थे कि ये वो छोटे से चटाई निकाली सो कथे में बैठ बेटा में बैठ अकतका कन सुने ऐसे कि कही तो एक हफ्ता के जत का कहानी सुनाए रहे से नहीं तेला 5-10 मिनट में।

धरती बनी कि स्वर्ग में हम का ऐसे लागते मो मन लागते भाई जब अच्छा कथा में हम डूब के उन मन ल सुनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए के बात है उन मन रोना शुरू कर देते हम उतका सम्मान पाके अपन आप ला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देथन ते हमला कई कौन सी मिट्टी बना के हमला भेजी घर से हमला सब लोग के सम्मान और प्यार मिला थे ये में अब बड़ा आनंद आते आज भी वही है अब आगे बढ़ मालिक के हाथ।

0: मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तब दो गुना आनंद आते। मैं अपन आप लग, मैं भीम समझे लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जो शिला पकड़ के रिंग था तेकर कारण वही है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम की रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते। कहते हैं तो मैं पंडवानी ला आजकल के आधुनिक युग में आधुनिक रूप से काम कर सकत रहे हूँ, ओला ऐसी तेती बहका सकत रहे हूँ, वो मैं अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखती, वो तो बर्बाद हो जाती ना, फिर नाम कहाँ होती। तो ये चीज बचाए के खातिर हम ला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे माँ, हमन ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मन ला फायदा है, सिखाए में जो आनंद आते मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे। कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाते तो बोले भूर यारो चुचकारो ये गाड़ रही ते गाड़ रही बेटा बहुत सुंदर गाले था, बोले बढ़ावा भी दो, तो ये में बड़ा आनंद आते मैंने गुरु बन के काम करो तो आपके समय में मुला बहुत है अच्छा लागते, लेकर मुला सिखा के दे दो।
1: तपी करत मैं धुरुला भेटे और नरसिंह ला भेटे खंभा भूर बिनत सौरी ला भेटे क्योंटल भेटे गंगा माँ।
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
3: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की लेकिन वहां से वो मेन स्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेन स्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
2: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो

हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यही संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी है। नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामावरपू माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामावरपू माधुरी देवी।
0: डॉक्टर रामावरपू शरत बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती रामावरपू विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामावरपू माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।
1: बॉर्न टू डॉक्टर रामावरपू शरद बाबू एंड लेट श्रीमती रामावरपू विजय लक्ष्मी, डॉक्टर माधुरी देवी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। She began her training in Veena at an early age under the guidance of her mother, a well-known Veena guru, and even gave her first presentation at the age of 8. She later honed her skills under the tutelage of the renowned Veena artist, late Dr. ई मणि शंकर शास्त्री. Dr. Madhuri Devi has earned her PhD degree for her thesis on the rasa elements in Telugu musical compositions of the prominent composers since Annamacharya up to 19th century. As an artist, she has performed extensively in respected platforms all over the globe and is the recipient of a number of awards, titles and felicitations. Her music has been appreciated for expounding the rasa and bhava aspects of melody, manodharma and her command over laya. She also has a number of compositions to her credit.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर रामावरपू माधुरी देवी की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद।
1: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट डॉक्टर रामावरपू माधुरी देवी इज अकंपनीड बाय श्री महादासु येडकोंडलु ऑन द मृदंगम एंड श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद ऑन द घटम।
0: डॉक्टर आर माधुरी देवी, आज के कार्यक्रम का आरंभ नाटराग में मुत्तैया भागवतार की रचना शक्ति गणपतिम से कर रही हैं, जो कि रूपक ताल में निबद्ध है।
1: डॉक्टर रामावरपू माधुरी देवी बिगिन्स हर कॉन्सर्ट विद शक्ति गणपतिम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तैया भागवतार इन नाटरागम रूपक तालम।

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नु विड़ची कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है.
1: She next presents a composition of Saint Tyagaraja in Reethi Gaula Ragam, Triputa Talam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमाली या जीआर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो की आदि ताल में निबद्ध है।
1: यू हैव बीन लिसनिंग।

0: कन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येड़ुकोंडलू ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ने। डॉक्टर रामवर्पु माधुरी देवी, आज के कार्यक्रम का समापन बिहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Thaniyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Surya Prasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behagragam Aditalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this, we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर समय होगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं, अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:51 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।